एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में रिले होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। उसके बाद 6:05 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं।

0: नहीं अपनाई जा सकती। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल ट्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला ट्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी

दी जा सकती है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 203। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 7वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप 6:45 पर 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष सुनिए।

कार्यक्रम का भाग 30। लेखन है मिलिंद सबनीस का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर पर, प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश, संवादन है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की।

उमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश। संवादन है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे आज सुनिए हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम में संवादन होगा चंचल वर्मा का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी। कहानी है रिश्ते, लेखन है विधि जैन का, संपादन है काजल भद्रगी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी एक दिन का प्यार। लेखन है V.M. आनंद का, निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है ज्योति गौर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। कल आपने सुना था राग दरबारी, आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: संगीत सरिता के श्रृंखला में आपका एक और बार स्वागत है। आजकल मैं बता रही हूँ हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल की कुछ कृतियाँ, जिनमें उत्तर और दक्षिण का संगम है। स्वाति तिरुनाल थे दक्षिण के केरला प्रांत के, और इन कृतियों को गाने की विधि कर्नाटक पद्धति से जुड़ी हुई है।

लेकिन साहित्य है हिंदी में और राग हैं हिंदुस्तानी पद्धति के। मैं राग वृंदावनी सारंग, दरबारी और धनाश्री में कृतियाँ पेश कर चुकी हूँ, तो लीजिए आज सुनाती हूँ भैरवी राग में एक रचना। उससे पहले महाराजा स्वाति तिरुनाल के बारे में दो चार शब्द और भी कह दूँ। स्वाति तिरुनाल और संत त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते थे, सब समकालीन वाग्गेयकार थे। स्वाति तिरुनाल तिरुवांकुर प्रांत के महाराजा थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने शिष्य नहीं तैयार किए। महाराजा थे तो शिष्य नहीं ले सकते थे शायद, लेकिन उनकी रचनाएं उतनी ही श्रेष्ठ माने जाते हैं जितने त्रिमूर्ति वाग्गेयकारों का। कहा जाता है कि वे अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसमें स्वाति तिरुनाल का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में काफी रुचि और पांडित्य दिखाई। उत्तर के तीन मशहूर संगीतकार स्वाति तिरुनाल के दरबार में यानी कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जुड़े हुए थे। वे थे ग्वालियर के अलाउद्दीन और लक्ष्मण दास और पंजाब के सुलेमान। यह था सन 1829 से 47 तक की बात। स्वाति तिरुनाल ने शास्त्रीय संगीत के बारे में एक पुस्तक भी लिखी, खास करके मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य के लिए इन्होंने काफी बंदिशें बनाई हैं। हाँ, यह बताना भूल गई कि स्वाति तिरुनाल ने न केवल ध्रुपद बल्कि टप्पा भी कंपोज किए थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं आजकल। तो आज आपको सुनाना चाहती हूँ भैरवी राग में एक कृति जो कहरवा ताल में है। एक और बात यहाँ बताना चाहूंगी कि भैरवी जो दक्षिण में गाते हैं वो उत्तर भारतीय भैरवी से एकदम अलग है। कर्नाटक पद्धति में जो भैरवी गाते हैं उसमें काफी ठाट के स्वर लगते हैं। मैं अब तो कृति जो पेश करने जा रही हूँ वह उत्तर भारतीय पद्धति के भैरवी राग में रचित है, तो सुनिए रामचंद्र प्रभु राग भैरवी में।

0: फिल्म आलाप का ये गीत राग भैरवी पर आधारित था। आवाजें थीं लता मंगेशकर और दिलराज कौर की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का कम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

चलो आओ बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। एक था राजे का बेटा, बैठे बैठे उसके दिल में शहर की धुन समाई, चढ़ बैठा उड़ने घोड़े पर और उसको एड़ लगाई। वो थका जब उड़ते उड़ते, तब घोड़े का मुंह फेरा, घनी छाओ देखी जिस जा, उस जा पर डाला डेरा। इतने में एक परियों की शहजादी उस जा आई, राजे के बेटे संग खेले यही उसके मन भाई। अच्छा, अब यही कहानी गाकर तुम्हें सुनाता हूँ।

0: अच्छा बच्चों, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक आपस में दोनों जी भर कर खेले। दोनों ने खाए मिलजुल कर सेब, अनार और केले। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें वो शहजादी मिल जाए तो उसके साथ खेलोगे? वो बच्चों को बड़ी उम्दा उम्दा चीजें खिलाती है। कहो हाँ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आज पृथ्वीराज कपूर की याद का दिन है। अभी आपने उनके द्वारा अभिनीत फिल्म रुस्तम सौराब का गाना सुना। इस गाने को गाया था सुरैया ने, कमर जलालाबादी के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे हरीश चंद्र तारामती। इस फिल्म से ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से बना ये गाना, बोल थे प्रदीप के।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी, जो

शमशाद बेगम और मुबारक बेगम की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना युगेश के बोल रॉबिन मुखर्जी का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में इस अंतराल के पहले आप सुन रहे थे मार्वल मैन फिल्म से गाना।

आप सुन रहे थे फ्लाइंग सर्कस फिल्म से ये गाना, कमल बुरात की आवाज़ में, योगेश के बोल रॉबिन मुखर्जी का संगीत। आज गीतकार योगेश की याद का दिन है। इन्होंने हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन गाने लिखे। अगला गाना सजा है गीतकार योगेश की बोलों से, टार्जन और डेलिरे फिल्म से, महेंद्र कपूर और कमल बुरात की आवाज़ों में, रॉबिन बनर्जी के बोल।

0: अभी आप सुन रहे थे टार्जन और डलाई लॉ फिल्म से ये गाना। और अब एक बहुत ही अहम सूचना।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा ये हुस्न मुजस्म तब तेरा इस रंग पे आया होगा सौ बात बना कर।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे एक रात फिल्म से ये गाना, योगेश के बोल उषा खन्ना का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
2: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कुमार और आशा भोसले की आवाजों में योगेश के बोल, राजेश रोशन का संगीत।
5: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा,
6: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा
5: के धूप में खिला।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: प्यार की मिला के सुने ही बात हो गई।
0: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम सजा है योगेश के बोलों से। गीतकार योगेश को याद कर रहे हैं छोटी सी बात इस फिल्म के इस गाने के साथ। येसुदास की आवाज, सरिल चौधरी के बोल।

0: येसुदास और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गाना, योगेश के बोल सलिल चौधरी का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

सखी रॉबिन फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, योगेश के बोल रॉबिन बैनर्जी का संगीत। इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट
5: एक्सप्रेस के यात्री तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना।
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
9: RBI कहता है
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में रिले होंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति

0: वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीक

0: कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में

0: हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया, किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना,
4: रिमूविंग इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द

0: फूलों की मुस्कान में बसी धरती की अनमोल कहानियाँ, हर पंखुड़ी में छिपी हुई प्रकृति की प्यारी सी नादानियाँ, सवेरे की शीतल बयार में खिलते हैं ये हमारे सपने, जिन्हें पूरा करने संग चलते हैं हमारे अपने।
1: बिल्कुल, और आज के सफर में संग चलने के लिए अपने श्रोताओं के साथ लेकर आ गए हैं हम कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ मीनाक्षी।
0: और मैं हूँ संतोष।
1: तो श्रोताओं, आज बता दें कि डिजिटल और फन फ्राइडे में क्या कुछ खास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो दिन की शुरुआत कैसे होगी?
0: दिन की शुरुआत होगी आज के दिन विशेष के साथ, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे और विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। संयुक्त

0: राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की भी हम बात करेंगे और हम उन्हें याद करेंगे जिनकी है आज पुण्यतिथि, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। साथ ही आईपीएल अपडेट और स्थानीय सूचनाएं भी हम हमारे श्रोताओं को बताएंगे।
1: और स्मार्ट जीवन में आधुनिक समय में नौतपा के दौरान खान पान दिनचर्या कैसी हो, इस पर बात करेंगे। फिल्मी शुक्रवार का दिन है तो इस सप्ताह रिलीज हुई फिल्में, कारोबार, महिला मुद्दों पर केंद्रित फिल्में और उनकी बातें, और इसी विषय पर यानी महिला मुद्दों पर जो केंद्रित फिल्में हैं उनमें आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है, महिला सशक्तिकरण की फिल्मों पर आप अपनी राय हमें दे पाएंगे श्रोता संवाद के अंदर। और हमारे व्हाट्सएप मैसेज उस के लिए रहेंगे जिसमें आप मैसेज कर सकेंगे, नंबर रहेंगे 9462697568। तो कार्यक्रम जैसे जैसे चलता रहेगा और बातें करते रहेंगे। फिलहाल शुरुआत
0: एक अच्छे से गीत के साथ।

0: और देखो अब दिन की शुरुआत कर ही लेते हैं, क्योंकि गीत की शुरुआत तो हो गई, कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई, लेकिन खास दिन आज क्या है तो एक कहता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ये दिवस सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन उन सभी महिलाओं पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। और वर्षों से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने दुनिया की सबसे नाजुक राजनीतिक और सुरक्षा स्थितियों में जीवन को बचाने और बदलने के लिए काम किया है। चुनौतियों के बावजूद शांति रक्षक कई साझेदारों के साथ शांति की सामूहिक खोज में लगे रहते हैं और ये दिन शांति रक्षकों की सेवा, बलिदान, श्रद्धांजलि देता है, शांति सैनिकों का सम्मान करता है जिन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
1: बिल्कुल, यह दिवस उन लोगों की स्मृति को सम्मान देने के लिए ही मनाया जाता है मीनाक्षी, कि जो शांति के लिए काम करते आए। और इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें तो शांति में निवेश, इन्वेस्ट इन पीस, ये इस वर्ष की थीम है।
0: और इससे जुड़े लोग जो है ना वो नीले रंग की कैप लगाते हैं, नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं, एक उनकी पहचान होती है। और ज़्यादातर उनके पास उनके वाहनों पर, कपड़ों पे एक जो फ्लैग टाइप लगा होता है उस पर UN कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा लिखा होता है। और एक और ख़ास दिन आज है संतोष, वो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, हमारे डाइजेशन के लिए खास जो है, क्योंकि पाचन तंत्र हमारे शरीर का बहुत ही जटिल हिस्सा होता है, भोजन को ऊर्जा में

0: बदलता है, शरीर के लगभग 2/3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है।
1: बिल्कुल, खाना मात्र ही काफी नहीं होता, भोजन का अच्छे से पाचन भी हो, अवशोषण भी हो और शरीर से निष्कासन भी हो, ये सारी चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं मीनाक्षी। पाचन संबंधी रोगों और विकारों की रोकथाम, प्रसार, निदान व प्रबंधन और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है क्रॉनिक डायरिया, लक्षणों को न करें अंदाज
0: अनदेखा। और बिल्कुल स्वस्थ पाचन के लिए हमें अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में फाइबर, फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करने चाहिए और दिन भर में भरपूर पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और पाचन क्रिया सुचारू रूप से चले।
1: ये क्रोनिक डायरिया जो दीर्घकालिक दस्त की जो बात हो रही है ना, इसमें 4 सप्ताह से अधिक समय तक अगर लगातार पतले या पानी जैसे मल त्याग हो रहा हो यानी दस्त हो रहे हैं तो इसको क्रोनिक डायरिया में माना जाता है। ये सारे लक्षण चेतावनी देने वाले संकेत हमें करते हैं।
0: और संतोष देखो, इनमें ना अपने हमें बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों में अच्छा पोषण और उनके ऊर्जा और पोषक तत्व क्योंकि प्रदान होते हैं खाना जैसा खाएंगे, उनको आवश्यकता भी होती है ताकि वो ठीक से बढ़ें, विकसित हों और उनका वजन जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि वजन भी मैटर करता है एज के साथ साथ।
1: बिल्कुल, दस्त होने पर वजन सबसे जल्दी तेजी से कम होने लगता है। जब भी आपको संदेह होने लगे तो अंतर्निहित स्थितियां जो होती हैं, हमारी बॉडी किसी भी बीमारी के प्रति रिएक्ट करती है तो हमें तुरंत शरीर के अलग से होने वाले प्रभाव को जानने, समझने और ध्यान देने की जरूरत बन पड़ती है।
0: बिल्कुल, और साथ ही आज दिवस है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। यह विशेष दिन न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेन सिंह नॉर्गे को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1953 में इसी दिन पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर की है, उस पर सफलतापूर्वक कदम रखा। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में नेपाल सरकार ने साल 2008 में हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था।
1: और इस दिवस को कैसे मनाया जाता है इसकी हम बात करें तो काठमांडू में तेनजिंग हिलेरी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते हैं, एवरेस्ट अभियानों की परेड प्रदर्शनियां होती हैं, फोटो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और प्रसिद्ध पर्वतारोहियों और शेरपा समुदाय के नेताओं के भाषण ये सब आयोजित करवाए जाते हैं।
0: संतोष, तुम्हें बताए कि जो जिन लोगों को इन ऊंचाइयों से प्यार होता है ना, वो कितने भी कैसा भी वहाँ का वातावरण खराब होता है, ठंड होती है, गलाने वाली ठंड होती है, तो भी वो कभी हिम्मत नहीं हारते। और ऐसा ही कुछ जो चमत्कार कर दिखाया उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का, राजस्थान का और अपने शहर का, परिवार का नाम उन्होंने विश्व पटल पर चमकाया। और सामान्य नागरिक श्रेणी की राजस्थान की वो पहली महिला एवरेस्ट फतह करने वाली बन गईं। उनकी सफलता युवाओं में, खासकर बेटियों के हौसले और सपनों को के लिए नई मिसाल बनी है। और तुम्हें पता है जो उनका दल गया था ना, 8 सदस्यों का दल था, लेकिन असाध्य परिस्थितियां थी, खराब मौसम था, तेज बर्फीली हवाएं थी, जो तापमान था -45 से -50, तो उनके 2 साथी काल का ग्रास भी बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कदम नहीं रोके और रच दिया इतिहास।
1: बिल्कुल, मनस्वी अग्रवाल का यह कहना था मीनाक्षी कि एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के लिए केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, मानसिक मजबूती भी ज्यादा काम आती है।

0: बिल्कुल, और इस धुन को अब कुछ दिन और सुनेंगे हमारे श्रोता, क्योंकि आईपीएल 19 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। टूर्नामेंट अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। फाइनल में जगह बनाने के लिए जंग तेज हो चुकी है। क्वालिफायर वन में जीतकर आरसीबी ने फाइनल में प्रवेश तो कर ही लिया है, और कल जो है टीमों के लिए आराम का दिन रहा।
1: बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर टू में जगह बना ली है, और आज शाम 7:30 पर न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में मैच खेला जाएगा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और गुजरात फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करने वाली हैं।

0: और देखो हमारे उदयपुर में क्या क्या चल रहा है, संतोष ये भी श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए उदयपुर ज़िले में आज से 50वां विटामिन ए अभियान शुरू हो रहा है, जो 29 जून तक चलेगा। इस अभियान में ज़िले के स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर 9 से 12 माह तक के बच्चों को 1 ml और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 ml विटामिन ए की खुराक दी जाएगी।
1: बिल्कुल, आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चूके न और विटामिन ए का घोल जरूर से पिलाएं। वैसे मीनाक्षी, पुरुषोत्तम मास के चलते शहर के वैष्णव मंदिरों में विशेष मनोरथों का और भागवत कथाओं का दौर जारी है। विशेष मनोरथों की कड़ी में गुरुवार को जगदीश मंदिर में भव्य अंगूर बंगला झांकी सजाई गई। कहीं पर आम की, कहीं लीची से, ऐसे विभिन्न मोगरे की कलियों से बंगले सजाए जाते हैं। अधिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरे माह में विशेष सेवा, पूजन और झांकियां सजाई जाती हैं।
0: बिल्कुल, कल ईद उल अजहा का त्यौहार भी समुदाय ने अच्छे से मनाया और पूरे देश में अमन चैन खुशहाली की कामना की।
1: बिल्कुल, शहर के प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा करके शहर में, मुल्क में अमन खुशहाली तरक्की की दुआएं मांगी और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। त्यौहार को लेकर शहर के बाजारों में देर रात तक रौनक बनी रही और शहर के कई सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंद परिवारों को

0: खाद्य सामग्री और मिठाइयाँ वितरित की।
1: बिल्कुल, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे। और देखो, आज पुण्यतिथि है भारत के किसान नेता, जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, भारत रत्न से सुशोभित पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। दो बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री चुने गए। कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य करते हुए उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया और गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के सम्मानित पदों पर भी वे विराजित रहे।
0: बिल्कुल, परिवार में शैक्षणिक वातावरण में पले बड़े चौधरी चरण सिंह के पिता की, यानी चौधरी मीर सिंह जी की, प्रबल इच्छा थी कि उनका जो पुत्र है वो जनता का कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करे और सेवा करे देश की।
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को भारत की प्रगति की रीढ़ मानते थे वे, और भारत वर्ष में उनकी जो जन्म जयंती है उसको राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। स्वयं का बचपन खेती की धूल मिट्टी फसलों के बीच गुजरा, क्योंकि कृषि परिवार में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए ग्रामीण समाज के दर्द को बखूबी जानते थे, महसूस करते थे। BSc की, MA की और फिर LLB की डिग्री प्राप्त की। गांधी जी और सरदार पटेल के विचारों से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वाधीनता की खातिर जेल भी गए, पर हौसला कभी नहीं डगमगाया।
0: कृषकों के कल्याण के लिए बहुत कार्य उन्होंने किया और अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा के लिए समर्पित रखा। वो किसानों के नेता माने जाते रहे। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। प्रतिभाशाली व्यवहारवादी श्री चरण सिंह चौधरी अपनी वाक्पटुता और दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं,
1: और दिल्ली में यमुना तट पर किसान घाट नाम से उनकी स्मृति में समाधि स्थल भी बनाया गया।

0: हरी भरी खेती की राम करे रखवाली। राम तो हरी भरी खेती की रखवाली करेंगे, पर हमारे शरीर की रखवाली तो हमें ही करनी होगी, क्या
1: और
0: कहते हो?
1: बिल्कुल संतोष। और इस गीत में देखो ये ना बात भी ऐसी ही की गई कि जो खेत है वो धूप से जल रहे हैं और बादलों को इनवाइट किया जा रहा है कि अब कब आओगे, कब बरसोगे, लेकिन अभी समय है। फिलहाल देखो आपने कल नोटिस किया होगा, थोड़ा शाम से हवा चलने लगी थी, लेकिन गर्मी जो है वो तो अपना प्रचंड रूप दिखा ही रही है। जो गिरावट थोड़ी तापमान में हुई भी है, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं सिद्ध हुई है। तो ये जो चल रहा है नौ तपा का दिन, यानी कि नौ दिन जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और भीषण गर्मी पड़ती है।
0: बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों में इतनी मतलब कि तेज और प्रचंड गर्मी पड़ती है कि सामान्य जीवन जीना भी हमें थोड़ा दुष्कर सा लगता है।
1: तो ऐसे में आधुनिक समय में जब हमारा ज़्यादातर वक्त एसी, कूलर और बंद कमरों में बीतता है, तब हमें अपनी दिनचर्या और खानपान में खास बदलाव करने की ज़रूरत होती है ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे और हम हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकें।
0: बिल्कुल, खानपान में बदलाव तो निश्चित ही हमारे श्रोताओं ने किया ही होगा कि गर्मी के हिसाब से वो अपने आहार विहार को व्यवस्थित कर रहे होंगे। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं, जैसे दोपहर में आप 10 बजे से 4 बजे तक धूप में जाने से बचे रहें, अगर जाना भी पड़े तो कैप, सनग्लास, सनस्क्रीन लगा कर बाहर निकलें और लिक्विड डाइट पर जोर रखें कि ताकि शरीर में आपके पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे।
1: बिल्कुल, जो तरल पदार्थ है उनमें नींबू पानी, नारियल का पानी, छाछ, मट्ठा जिसे कहते हैं, पुदीने का रस और ORS, ये भी पीते रहना चाहिए। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी। मौसमी फल सब्जियां हैं जैसे अभी तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फलों को का सेवन करते रहना चाहिए।
0: अगर एक एक पदार्थ की हम बात करें जिनका नाम आपने लिया, तो पुदीने के पानी से अपच में भी ये लाभकारी होता है। वैसे ही बेल का शरबत पेट में ठंडक पहुंचाता है, आम का पन्ना लू से बचाता है और तरबूज तो पानी की कमी दूर करता ही है। नींबू पानी से विटामिन सी भी भरपूर हमें मिल पाता है और सत्तू का अगर सेवन करें तो एनर्जी और हाइड्रेशन और ठंडक हमें भरपूर देने में सत्तू अपनी एक अच्छी भूमिका निभाता है। छाछ हमें दोपहर के भोजन में लेनी है जिससे कि पाचन क्रिया में वो सहायक रहे, और नारियल पानी शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखता है, और सादा पानी तो बार बार पीते रहें, प्यास लगने का इंतजार
1: नहीं करें। और चाय, कॉफी, पैक जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे बचें, और ज्यादा तीखा, तला, भुना मसाला और बासी खाना खाने से भी बचें। देखो ना, नौतपा में ना नींद भी बहुत जरूरी होती है संतोष, क्योंकि क्या होता है कि भारी गर्मी और उमस के कारण रात में पसीना आता है जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, बार बार रात को प्यास लगती है, बेचैनी रहती है, नींद टूटती है, और दिन भर की जो झुलसाने वाली गर्मी होती है ना वो मानसिक रूप से थका भी देती है। एक चिड़चिड़ापन हमारे व्यवहार में महसूस हम करते हैं जिससे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, और लेटने के बाद भी आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दिमाग शांत नहीं रहता।
0: बिल्कुल, इतना सब ध्यान रखते रखते भी अगर आपको डिहाइड्रेशन के लक्षण लगे जैसे चक्कर आना, कमजोरी होना, सूखा मुंह होना, तो उसको नजरअंदाज ना करें और तुरंत से चेतन हो जाए कि अब हमें क्या करना है। और जब आप एसी और कूलर का यूज करते हैं और आपको उससे एलर्जी होती है तो क्या कुछ हमें करना चाहिए?
1: बिल्कुल, और नींद अच्छी लें उसके लिए भी ज़रूरी है कि कमरे में वेंटिलेशन प्रॉपर हो। सोते समय भी, बाहर निकलें तब भी ढीले ढाले और सूती कपड़े पहने, सोते समय भी ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, और शरीर का जो तापमान है उसको ठीक रखें। आप चाहें तो हल्का गुनगुना और सामान्य पानी से एक बार शावर भी ले सकते हैं सोने से पहले।
0: बिल्कुल, एसी से डायरेक्ट बाहर नहीं जाएं, पहले रूम टेम्परेचर पर खुद को लाएं और बाद में ही आप बाहर जाएं। बगैर पानी के कूलर को थोड़ी देर चलाएं जिससे ह्यूमिडिटी जो होती है वो दूर होती है।
1: तो ज़्यादा थके नहीं, अपने दिमाग को भी ठंडा रखने की कोशिश करें और स्वयं को भी, और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं गीतकार योगेश का लिखा गीत उनकी पुण्यतिथि पर, और अब समय हो चला है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चार जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत

0: 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांव तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झावर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
2: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अब यह तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे, ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुँचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
3: धूप के पार सितारों का नगर लगता है, उस पहाड़ी पे ये चांद का घर लगता है। चांद मेहराब पे सोई हुई ये कहत है, बेवजू आंखें हैं, पड़ते हुए डर लगता है।

0: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर और मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। समय हो गया है 9:10। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर में।
2: और एक बार फिर मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी।
1: और मैं हूं संतोष।
2: और देखो, हम फिल्मी फ्राइडे की भी बात करेंगे संतोष आज के कार्यक्रम में, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। तो आज इस शुक्रवार थिएटर्स में छोटे और मध्यम बजट की कई हिंदी फिल्में एक साथ दस्तक दे रही हैं, जिनमें फैंटेसी से लेकर सस्पेंस थ्रिलर शामिल है। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, एलियंस का आगमन, जैकी श्रॉफ, प्रतीक बब्बर, भाग्यश्री कॉमेडी के स्टारर, ये जो है फिल्म है कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है और एक दादा और उनके पोते के बीच के प्यारे रिश्ते की कहानी है, जहां बच्चा मानता है कि उसके दादा के पास सुपर पावर्स हैं, वो दुनिया को एलियन से बचाएंगे। कृष्णा और चिट्ठी, ये भी दर्शील सफारी, अरुण गोविल, मीर सरवर की फिल्म आ रही है। और कृष्ण भक्त पंडित, तो उनके 16 साल के बेटे जो कि सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन हैं, उनकी कहानी पर ही आधारित है। बंदर, बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा और राज बी की ये फिल्म, ये भी रिलीज़ होने वाली है। डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप। और इसके अलावा जो फिल्म आ जा रही है वो जीना दिल से, कृति वर्मा की म्यूजिकल रोमांस ड्रामा फिल्म, आज के युवाओं और दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी जो शादी की भागदौड़ और एक खोई हुई हार्ड ड्राइव को ढूंढने के लिए मजेदार रोड ट्रिप पर निकलते हैं। साथ ही एक और फिल्म आ रही है ओप्सीज, और ईशा सिंह और पीटर विल्सन इसमें नजर आएंगे। ओटीटी की बात करें तो मई के इस आखिरी वीकेंड पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कुछ समय पहले सिनेमा घरों में आ चुकी फिल्मों के डिजिटल प्रीमियर और नई वेब सीरीज हमें देखने को मिलेंगी। कर्तव्य, जो सैफ अली खान की है, क्राइम थ्रिलर, और मई की शुरुआत में रिलीज हुई रितेश देशमुख की राजा शिवाजी, जुनैद खान, साई पल्लवी की एक दिन, ये भी इसी वीकेंड के आसपास ओटीटी पर आने वाली है।
1: बिल्कुल। और मीनाक्षी,
2: जो कारोबार रहा इन फिल्मों का पिछले हफ्ते रिलीज हुई,
1: हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं हमारे श्रोताओं को। सिनेमा घरों में इस समय

0: नई रिलीज और पुरानी फिल्मों के बीच दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। पिछले हफ्ते 22 मई 2026 को रिलीज हुई नई फिल्म नई हिंदी फिल्म के साथ साथ उससे पिछले हफ्ते आई फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चांद मेरा दिल, अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी स्टारर यह रोमांटिक ड्रामा को मिक्स रिव्यूज मिला है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने की कोशिश कर रही है, इसने दुनिया भर में ठीक ठाक पकड़ बनाई है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर 11 करोड़ बटोरे थे, सोमवार को 2.25 करोड़ और मंगलवार को 2.10 करोड़ का कलेक्शन रहा, जो यह दिखाता है कि वीकडेज में गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। पति पत्नी और वो, इस फिल्म की जब हम बात करें तो आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान स्टारर यह सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में चल रही है और यह फिल्म चांद मेरा दिल को कड़ी टक्कर दे रही है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 29 करोड़ कमाए थे, दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने 7.35 करोड़ जोड़े और 12वें दिन मंगलवार को फिल्म ने 1.40 करोड़ का कलेक्शन किया और अब यह वर्ल्ड वाइड 55 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है।
1: बिल्कुल संतोष, और देखो हमारे श्रोताओं के संदेश भी शामिल करेंगे हम क्योंकि आने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले एक बार फिर से श्रोताओं को बता दें हम महिला मुद्दों पर केंद्रित फिल्मों की बात भी करेंगे, एक गीत पहले सुनवाएंगे। और 9462697568 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आपकी पसंदीदा महिला सशक्तिकरण महिलाओं पर केंद्रित फिल्म कौन सी है और आप हमसे ये अपनी वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों के बारे में बातें साझा कर सकते हैं।

0: तो देखो ये हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं। पहले तो जो हमने कार्यक्रम में पहले बातें की उस पर जो हमारे श्रोता हैं वो कहते हैं ये धारावती जतिन सुहालका हितेश विष्णु जी चौधरी चरण सिंह जी को वो याद कर रहे हैं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं। गानों का चुनाव इन्हें ठीक लग रहा है। एवरेस्ट दिवस नौतपा में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो पेय पदार्थों की जानकारी है वो भी इन्हें पसंद आई। इसके साथ ही ये परमानंद जी कुमावत इनके साथ इन्हें फिल्मों से जो जानकारी मिली अच्छी लगी है। मूवी मसाला फ्राइडे है और नरोत्तम जी भी इनके साथ में है। बशीर बद्र साहब के निधन पर दुख भी जता रहे हैं रेडियो श्रोता संघ के सदस्य उदयलाल चेलर कवि श्याम मठपाल ज्योति पुंज और ये हैं हमारे श्रोता। इसके अलावा जो दिवस था शांति के लिए उसको भी इन्होंने पसंद किया है। नीले कपड़े वस्त्र टोपी पहनने की जो बात हमने की उसका भी इन्होंने जिक्र किया है अपने संदेश में।
1: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता हैं जो हमें सजीव रूप से सुन रही हैं। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए हमें लिखा है कि हमारे उदयपुर की तो बात ही निराली है। जो हमारे अधिक मास में मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं, कथा भागवत का जो प्रसंग चल रहा है वो सभी अपडेट जानकर हर्षित हैं। वहीं विटामिन ए के गोल की जो हमने जानकारी दी वो उन्हें अच्छी लगी है। नौ तपा की जानकारी के विषय में ये कह रही हैं कि हम पानी पीते रहते हैं और हम भी पानी पीने का बराबर ध्यान रखते हैं। नींबू पानी, बेल शरबत, पुदीना पानी और छाछ, दही, मट्ठा, इन सभी का सेवन हम कर रहे हैं और आपने हमने जो जानकारी यहाँ से उन्हें दी है वो उनके लिए उपयोगी है, ऐसा उनका कहना है।
0: तो देखो संतोष, अभी जो महिला ओरिएंटेड फिल्में हैं उनका जिक्र हमारा बाकी है और श्रोताओं से भी एक बार फिर से यही कहेंगे कि जो हमें व्हाट्सएप मैसेज अब करें तो वो महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों के बारे में करें। तो नंबर 9462697568। एक और गीत सुनवाते हैं फिर जिक्र करेंगे
1: बिल्कुल
0: फिल्मों का।

0: संतोष, हिंदी सिनेमा में महिलाओं के किरदारों की बात करें ना, तो सच्ची भारतीय नारी त्याग सहनशीलता की मूर्त से बदलकर जो आज के युग में एक आत्मनिर्भर, मजबूत और अपने हक के लिए लड़ने वाली आधुनिक महिला का हो गया है। और ये जो बदलाव है ये रातों रात नहीं आया, बल्कि दशकों के सफर का नतीजा है। शुरुआती दौर में जहां महिलाएं अक्सर मुख्य नायक के सहारे चलती थी, वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा।
1: बिल्कुल, हिंदी सिनेमा हमारे समाज का आईना रही है मीनाक्षी। समय के साथ महिलाएं सजावटी किरदार से आगे बढ़कर मजबूत, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं का किरदार भी निभा रही हैं। महिलाओं के संघर्ष, साहस और सफलता की कहानियों को बड़े पर्दे पर जीवंत किया है फिल्मी सिनेमा ने।
0: देखो, कहीं तो ना बायोपिक फिल्में भी ऐसी महिलाओं के ऊपर बनी भी हैं, है ना। मदर इंडिया की बात करें तो नरगिस द्वारा निभाया गया राधा का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे मजबूत महिला किरदारों में गिना जाता है। गरीबी और समाज से लड़ती है और अपने उसूलों से लेकिन कभी समझौता नहीं करती। बंदिनी, सुजाता, विमल रॉय की इन फिल्मों ने महिलाओं के आंतरिक संघर्ष, उनके आत्मसम्मान और सामाजिक भेदभाव को बहुत गहराई से दिखाया। 70 और 80 के दशक में महिलाएं अक्सर सिर्फ गानों या नायक के प्रेरणा के रूप में सिमट गई थी, लेकिन इस कमर्शियल दौर में भी भूमिका, अर्थ जैसी पैरेलल सिनेमा की फिल्मों ने एक महिला की अपनी पहचान और वैवाहिक जीवन से अलग उसकी आज़ादी की वकालत की थी। 2000 के दशक में भी हिंदी सिनेमा में एक बड़ा बदलाव आया और कुछ ऐसी आधुनिक फिल्मों को देखा गया जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को एक नए सिरे से गढ़ा। और आज की फिल्मों की सबसे अच्छी बात यही है कि अब महिलाओं को परफेक्ट नहीं दिखाया जाता, तो ग्रे शेड्स में भी नजर आती हैं और यही उनकी जो रियलिटी है वो दर्शकों को पसंद आती है। जैसे कि हमने गाना सुनवाया टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का, तो ये जो फिल्म है ये केवल शौचालय बनवाने की कहानी नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा, बुनियादी हक की लड़ाई को दिखाती है। खुले में शौच एक सामाजिक अभिशाप है। घर में आलीशान चीज़ें होना बेकार है अगर महिलाओं को बुनियादी ज़रूरत के लिए भोर में खेतों की तरफ भागना पड़े। ये केवल स्वच्छता का नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान का मुद्दा भी है।
1: बिल्कुल, हमारी एक श्रोता हमें श्रोता संवाद के सेक्शन में बता रही हैं अपने विचार कि सभी तरह की फिल्मों में मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी मूवी की जो शूटिंग हुई है वो इन्हें प्रभावित करती है। खून भरी मांग रेखा अभिनीत जो फिल्म है उसमें इनको रेखा का जो रोल है वो बहुत पसंद आया है। और इसी कड़ी में हम कहना चाहें मीनाक्षी, तो महिला सशक्तिकरण की प्रभावशाली कहानी है मिर्च मसाला फिल्म। महिलाओं का अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की अनूठी मिसाल पेश करती है मिर्च मसाला फिल्म, जिसमें साधारण गांव की महिला शक्तिशाली अधिकारी की बुरी नज़र से बचने के लिए ना कहने का विकल्प चुनती हैं। यानी हमें समय पर ना कहना भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल, और जो पैडमैन फिल्म रही ऐसे प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया मासिक धर्म पीरियड्स के बारे में, इससे जुड़े सामाजिक संकोच और अंधविश्वासों को तोड़ती है। मासिक धर्म कोई शर्म या बीमारी नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पीरियड्स कोई अपवित्र या शर्मनाक बात नहीं है। इसके दौरान गंदे कपड़ों का, राख का इस्तेमाल महिलाओं को जानलेवा बीमारियों की तरफ धकेलता है। और फिल्म पुरुषों को भी यह समझाने की प्रेरणा देता है कि अपनी पत्नी, माँ, बहन के स्वास्थ्य की रक्षा करना उनकी भी जिम्मेदारी है। एक अभी वेब सीरीज भी आई थी, संतोष तुमने देखी हो कभी, चिरैया। ये सीरीज उस गंभीर विषय को उठाती है जिसे हमारे समाज में अक्सर पारिवारिक एक मामला कहकर दबा दिया जाता है, मैरिटल रेप। चिरैया बहुत ही मजबूती से यह संदेश देती है कि शादी के साथ फेरे लेने का मतलब यह नहीं कि पति को अपनी पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार मिल गया है। सहमति यानी कंसेंट शादी के बाद भी उतना ही जरूरी है जितना कि पहले।
1: हमारी महिला श्रोता हमें मैसेज के माध्यम से लिख रही हैं कि उन्हें लज्जा फिल्म भी बहुत आकर्षित लगती है और फूलन देवी के जीवन पर आधारित बैंडिट क्वीन भी उनकी पसंदीदा मूवी में से एक है।
0: इनके श्रोताओं के नाम भी बताओ।
1: हाँ, इनका नाम है किरण कुमावत।
0: और इससे पहले जो तुमने संदेश पढ़ा था वो कौशल्या और रेखा सुहालका और डिम्पी सुहालका ने भेजा था।
1: बिल्कुल,

भाग जॉनी फिल्म के इस गीत के साथ ही मीनाक्षी अब हम इस प्रोग्राम से इजाजत लेना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं उन श्रोताओं का जो हमारे साथ श्रोता संवाद में जुड़े रहे, और आप सभी को आप सभी हमें दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से जिसका नाम है नमस्कार उदयपुर।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fuck.

0: वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एफएम रेडियो लेक सिटी की आज की लोकल विंडो में आप सभी का स्वागत। आज है आप मीनाक्षी के साथ। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और ऐसे में उम्मीद की किरण लेकर आता है फ्राइडे स्पेशल हेल्थ ओरिएंटेड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीबीएच जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल बेड़वा उदयपुर।
2: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच जीबीएच,
3: क्योंकि जीबीएच अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरो सर्जन डॉक्टर एस आर चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।
2: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है जीबीएच,
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरो सर्जन डॉक्टर एस आर चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।
0: तो श्रोताओं, आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक आमेचा, और आपसे बातचीत कर रहे हैं विनोद शर्मा।
4: हेलो डॉक्टर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज डॉक्टर दीपक आमेटा हमारे साथ हैं। आप महाराणा भोपाल चिकित्सालय जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज

है, इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और हम आज हृदय रोग के संबंध में, जो खान पान के संबंध में बहुत सी जो चर्चा हमारे यहाँ होती है घरों में भी और घरों के बाहर भी, जब भी हम मिलते हैं तो कई चीज़ों के बारे में हम एक दूसरे को एडवाइज़ करते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इनको लेकर के डॉक्टर दीपक से हम बात शुरू करेंगे। इसके बाद अन्य जो समस्याएं हैं उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्योंकि लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पे हमें संदेश भेजें।

0: भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्योंकि लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप पे हमें संदेश भेजें और आप हिस्सा बन सकते हैं। बहुत से लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, कई लोगों को संदेह होते हैं, तमाम तरह की जो भी आपकी हृदय रोग संबंधी या दिल की बीमारियों के संबंध में कार्डियक प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे या बूढ़े जो भी, वो तमाम हमसे साझा करें। व्हाट्सएप थोड़ा सुगम है और व्हाट्सएप पे आप अपना नाम लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप समस्या बताएं, उम्र बताएं, वजन बता दें और वो समस्या हमें लिख भेजें। डॉक्टर दीपक लगभग 1 घंटे हमारे साथ हैं, ये आपके साथ ऑनलाइन एक तरह से ओपीडी है, दवा नहीं बताएंगे, सिर्फ हम आपको जो जनरल गाइडेंस है वो देंगे। और जो फोन नंबर है हमारा व्हाट्सएप का वो है 9462697568, 9462697568। और एक तरीका इसका और भी है, अगर आपके पास आजकल जो स्मार्टफोन सभी के पास है वो भी है, तो उसमें भी एक एप्लीकेशन है, छोटा सा ऐप है, न्यूज ऑन AIR, ये ऐप आप डाउनलोड करें और उसमें FM लेक सिटी आप सेलेक्ट करें, दुनिया के किसी भी कोने में आप इस प्रोग्राम को इस समय सुन सकते हैं और अपनी समस्याएं डॉक्टर दीपक आमेटा से बांट सकते हैं। डॉक्टर दीपक, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद आकाशवाणी।
0: डॉक्टर दीपक, आपसे जब चर्चा हुई तो आपने कहा कि खान पान एक ऐसा विषय है जिस पे हम अक्सर चर्चा करते नहीं हैं और जब भी कहीं मिलते हैं तो खान पान को अक्सर पेशेंट अक्यूज करते हैं या उनके रिश्तेदार अक्यूज करते हैं कि साहब ये तो बहुत ज़्यादा तेल खाते थे, या तो ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, जो आजकल हमारे बात होती है सेहत से रिलेटेड, जो मोटापा है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर और ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए एक्सरसाइजेज और डाइट्स, तो शारीरिक कार्यक्रम जो है हमको चलना फिरना है और हमारा जो डाइट है, खान पान की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो खान पान का महत्व मेरा मानना है कि 50% है, 50% आपका एक्सरसाइज है, तो मैं मानूंगा कि उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा।
0: खान पान ऐसा है, हम शुरू से मान लीजिए कुछ गलत चीज़ें खाते आ रहे हैं जी, गलत इन द सेंस कि जो कार्डियक एंगल से या अदरवाइज आप उनको अप्रूव नहीं करते, तो वो तो अक्यूमुलेट होते होते टाइम लग जाएगा ना, जब रिफ्लेक्ट होंगी आपकी बीमारियों में। मान लीजिए मैं शुरू से ही तला हुआ खाता आ रहा हूँ, या मान लीजिए शुरू से ही कुछ इस तरह की चीज़ें खाता आ रहा हूँ जो कि आपका कार्डियक एंगल से या डायबिटिक एंगल से आप अप्रूव नहीं करते, तो कितने समय में ये खान पान रिफ्लेक्ट होने लगता है? चलिए एक्सरसाइज में नहीं कर रहा हूँ।
1: देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल ही कुछ वर्कशॉप में एक बात हो रही थी कि शुगर की बीमारी, जब शुगर की बीमारी डायग्नोस होती है तो ये मान के चलिए कि जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं आपकी 50-80% खराब हो जाती हैं। अच्छा। तब जाके वो आपको 50-80% का तो पता ही नहीं पड़ता है,
0: तब तो तक आपको रिफ्लेक्शंस नहीं आते, रीडिंग्स भी आपकी प्रॉपर आती रहती
1: है, रीडिंग्स भी प्रॉपर आ रही हैं, बस आपकी बॉडी में एक डिसफंक्शन शुरू हो गया है। वही ब्लड प्रेशर का, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर 150-100 लेके आते हैं तो 110-70 से चलते चलते 120-130-140 वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो एक हम लंबा हमारे पास महीनों सालों का एक फेज होता है जो एक इंटरमीडिएट फेज है जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल
0: प्री डायबिटिक कंडीशन
1: जिसे कहते हैं 80% बीटा सेल्स डिसफंक्शन होने के बाद, फिर आपको तो वो 80% में प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने उस टाइम पे खान पान में, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, बीपी ठीक आ रहा है, शुगर ठीक आ रहा है, बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है, शुगर भी ठीक चल रहा है, लेकिन मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो वो मोटापा अंदर आपके प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमको उसी प्रिवेंशन मोड में, बीमारी होने के बाद तो ट्रीटमेंट आसान है, सब आपको सब कर ही रहे हैं, लेकिन बीमारी को रोकना, उसके लिए ये जो चीज़ें हैं रोकथाम, तब ये चीज़ें काम आती हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप, मैं कह रहा हूँ, आप काफ़ी डैमेज होने के बाद हमारी बीमारी इफेक्ट होती है, तो इस डैमेज से बचने के लिए हमको, आपको बहुत पहले, महीनों सालों पहले आपको अपना प्रिवेंशन, रोकथाम, जिसमें ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
0: अच्छा, एक बात और है डॉक्टर दीपक की, एक हम बहुत ज़्यादा अलर्ट अगर किस एज में शुरू कर दें, ताकि, और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको ये काम करना चाहिए, जैसे हर आदमी तो कार्डियक एंगल से परेशान है नहीं, तो हमको ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन का कौन सा हिस्सा है जिसको राय देनी है, या जनरल राय है आपकी?
1: जनरल राय तो नहीं है हमको, जैसे हम लोग एक तरीके से बनाते हैं कि 20 साल से ऊपर अगर आपके घर में हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली हिस्ट्री
0: ब्लड लाइन में
1: ब्लड लाइन में प्रॉब्लम्स

0: और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो एक बार 20 साल के बाद में एक बार आप जांच करा लीजिए, और अगर वो जांच ठीक है तो आप ये जांच को 3 से 5 साल में रिपीट कर सकते हैं। और आम जनता में प्रिवेंशन के लिए हमें मानते हैं कि 40 ईयर्स के ऊपर आजकल बीमारियां स्पीड से बढ़ रही हैं, तो 40 ईयर्स के बाद आप साल में एक बार आप चेकअप करवा लीजिए।
1: अच्छा, एक बार चेकअप किस तरह का चेकअप करा लें? जैसे कार्डियक में तो कई तरह की आप करते हैं, ECG से लेकर के फिर TMT और फिर आगे का।
0: TMT तो सिम्टम पर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे हम लोग खाली रोकथाम की बात करें तो हम लोग बेसिकली हमारा पैनल में 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें हम लोग शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, थायराइड, चीज़ ब्लड टेस्ट,
1: उससे वो चल जाता है,
0: उससे काम चल जाता। अगर आपको सिम्टम्स कुछ नहीं, आप कह रहे हो कि मैं चलता फिरता हूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा, खाली मुझे चेक करना है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है।
1: कौन कौन सी चीज़ें चेक करवा लें? एक तो आपने कहा शुगर
0: हो जाता है,
1: तीनों शुगर,
0: फास्टिंग
1: पीपी और HbA1c भी ले लें।
0: हाँ,
1: तीनों ले
0: लें, बिल्कुल ले सकते हैं।
1: ठीक है,
0: एक कंप्लीट ब्लड काउंट लेते हैं हम लोग, जिसमें हीमोग्लोबिन CBC होता है। एक हम लेते हैं लिपिड प्रोफाइल,
1: तो इसमें क्या क्या कोलेस्ट्रॉल
0: लेते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, चारों चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक हमारा आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, किडनी कैसे काम कर रही है। और एक पांचवी चीज हम लेते हैं थायराइड प्रोफाइल,
1: थायराइड भी ले लेते हैं।
0: तो ये
1: एक एक करके इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। हालांकि खान पान पर बिंदु छिड़ा था, डायबिटीज आपने सबसे पहले ऊपर लिया था नाम, तो इसका कार्डियक प्रॉब्लम से डायरेक्ट कनेक्शन बताया जाता है। थोड़ा आम आदमी को समझाओ कि कैसे, मतलब कहते हैं कि साहब जो डायबिटीज है वो बाद में जाके कार्डियक पेशेंट बनने के चांस हैं।
0: देखिए, हम ये मानते हैं कि बीमारी आपके हार्ट में बीमारी शुरू हुई है, ब्रेन में हुई, किडनी में शुरू हुई है, उसके पहले एक लंबा अरसा है जिसमें जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, या हम लोग जैसे स्मोकिंग है, या कोई आदमी जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो एक लंबा अरसा है जिसमें आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ रहा है, वो ब्लड में वो जाके लीवर में जाके पैनक्रियाज में जाके किडनी में, तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो कोई एक ऑर्गन आपको जल्दी डैमेज होता है, जिसमें अगर पैनक्रियाज में हो गया तो आपको जैसे शुगर हो गया है, किडनीज में हो गया तो किडनी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में हो गया तो हार्ट के ब्लॉकेजेस हो गए। तो एक ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें शुगर की वजह से एक कोलेस्ट्रॉल डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से जल्दी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है। वैसे आम तौर पे मान के चलें तो 20 साल की उम्र से ही, जो हमारे स्टडीज़ में लिखा हुआ है कि 20 साल की उम्र से ही लोगों में नसों में थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है,
1: जमा होना शुरू हो जाता है
0: 20 साल की उम्र से, फैटी स्टिक जिसको बोलते हैं।
1: ये कि उसकी लोकेशन कहाँ है, इस पे डिपेंड करता है
0: लोकेशन ज़्यादातर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि हृदय की नलियाँ घुमावदार हैं, सबसे पहले ब्लॉकेजेस वहीं शुरू होते हैं। जो स्ट्रेट आर्टरीज है वहाँ यूजली ब्लॉकेजेस, क्योंकि वहाँ ब्लड लीनियरली फ्लो करता है तो वहाँ ब्लॉकेजेस कम होते हैं, लेकिन चूंकि नस हार्ट की नसें घुमावदार है तो वहाँ जल्दी ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि उथल पुथल ज़्यादा है, इसको कहते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ जल्दी ब्लॉकेजेस होते हैं। तो 20 साल की उम्र में हल्के हल्के ब्लॉकेज होना शुरू होते हैं, और ये हल्के हल्के बढ़ते रहते हैं। ये बढ़ते कब हैं? स्पीड से, जब आपके कॉम्प्लिकेशंस, आपके रिस्क फैक्टर्स आते हैं, जिसमें शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, मेंटल स्ट्रेस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, मोटापा है, अनिद्रा है, एक्सेसिव अल्कोहल है। तो जब ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं तो वो जो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है वो स्पीड से बढ़ता है और जल्दी बीमारी में कन्वर्ट होता है।
1: कई बार सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मामूली ब्लॉकेज है, कोई चिंता की बात नहीं है और मैनेज हो जाएगा, इसके ना तो सर्जरी की ज़रूरत है और मेरे को दवाइयाँ भी ज़्यादा नहीं दी, ये क्या फिनोमिना है?
0: ज़्यादातर क्या होता है सर कि हार्ट के जो मैक्सिमम अटैक होते हैं वर्ल्ड में वो हल्के ब्लॉकेज से होते हैं, 20% ब्लॉकेज, 30% ब्लॉकेज, जो मैक्सिमम हार्ट अटैक हो रहे हैं दुनिया में वो 20-30% ब्लॉकेज से हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अंदर हमारा एक पर्दा होता है एंडोथीलियम,
1: अच्छा।
0: वो फटता है, फटने से अंदर का जो गंदा मटेरियल है वो बाहर आता है ब्लड में और खून का थक्का बनता है, वो थक्का बन के नस को पूरा ब्लॉक करता है, हार्ट अटैक होता है या एंजाइना होता है। दवाई देने से कभी कभी वो थक्का घुल जाता है और रह जाता है हमारे पास वो 20% ब्लॉकेज।
1: अच्छा,
0: तो जब हम एंजियोग्राफी करते हैं कभी कभी तो क्या थक्का दिखता है तो हम दवाई देते हैं, थक्का घल गया आपने एंजियोग्राफी करने से पहले ही तो 20% ब्लॉकेज मिलता, तो हम कहते हैं कि आपने हार्ट कुछ हुआ था और अब तो ब्लॉकेज कम हो गया है। ब्लॉकेज कम नहीं हुआ, उसमें थक्का कम हो गया है, ब्लॉकेज आपको 20% रह गया, तो उसका दवाई से काम चलना है आपका।
1: तो उसको आप फिर जो 20-30% है उसको दवाई से,
0: वो आजीवन दवाई है, उसका ब्लॉकेज 80% हो, 20% हो, दवाई आजीवन,
1: मतलब 18 की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि 20 से 25 पे जाने में उसको टाइम लगेगा।
0: अगर आपने इसको सब चीज़ कॉम्प्लीट रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया तो वो 20 से जो 30-40 में जा रहा है वो उसकी स्पीड, उसकी जो गति है वो गति कम हो जाएगी।
1: तो डायबिटीज़ का एक तरह से कहें तो ये है कि पूरा आपका जो नर्व सिस्टम है या जो दूसरी है वहाँ पर डिपोजिशन की जो रेट है वो बढ़ा देती है।
0: डायबिटीज़ के लिए बोलते हैं कि एक सिस्टमिक डिजीज़ है, इसका मतलब होता है कि पूरे शरीर की
1: पूरे तंत्र में, शरीर
0: तंत्र में है, जो नर्व सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, कोलेस्ट्रॉल
1: को भी करती है, किडनी को भी करती है,
0: आंखें, किडनी, ब्रेन, ये तो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं,
1: फिजिकल ऑर्गन तो है ही, पैर वगैरह तो करती हैं,
0: कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है, इंसुलिन ढंग से काम नहीं करता, मोटापा जो है लीवर में

0: फैट जमा होता है, जिसको हम आजकल नैश या लीवर में जो फैटी लीवर जमा हो
1: फैटी
0: जाता है
1: लीवर
0: वो हो
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं।
0: तो कोलेस्ट्रोल डायबिटीज़ ये आपस में लिंक्ड हैं, तो लिंक होने की वजह से लीवर, पेनक्रियाज, किडनीज, इन सब में फैट डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से डिसफंक्शन अर्ली एज में शुरू होता है और हमको धीरे धीरे बाद में पता पड़ता है, लेकिन ये प्रोसेस कई कई सालों का पहले शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज़ को इसलिए हम सिस्टमिक डिजीज़ बोलते हैं एक।
1: तो डायबिटीज को जितना अच्छा मैनेज करेंगे
0: बिल्कुल,
1: कार्डियक प्रॉब्लम से आप बचे रह
0: जितना
1: सकते
0: जल्दी जितना इफेक्टिव मैनेज करेंगे उतना उतना ही
1: हैं।
0: अच्छा रहेगा।
1: और आपने पांच में से और क्या क्या बताए थे, दूसरे नंबर पे क्या लिया
0: एक तो
1: था?
0: हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, वो तो
1: सीबीसी।
0: हम
1: हाँ
0: जनरल काउंट करते हैं
1: हाँ
0: उसका, के अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही थी, हीमोग्लोबिन ठीक है नहीं है,
1: हाँ
0: दूसरी चीज़
1: हाँ
0: ठीक है नहीं है, एक
1: हाँ
0: जनरल उसकी वेलबींग के लिए।
1: अच्छा, तो उसमें भी कुछ इंडिकेशंस आ सकते हैं सीबीसी में भी? या
0: ज़्यादातर महिला आती हैं कि चलने में सांस फूल रही है, कभी कभी कुछ एटिपिकल पेन जो होता है, हीमोग्लोबिन करते हैं तो 8-9 मिलता है, आपने हीमोग्लोबिन इंप्रूव किया तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं काफ़ी कुछ।
1: और कार्डियक प्रॉब्लम्स ना भी हों तो भी ये प्रॉब्लम सीबीसी में एबनॉर्मल रीडिंग्स आ जाती हैं?
0: बिल्कुल, जैसे आपको एंजाइना की प्रॉब्लम्स हैं या बेसिकली हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, हार्ट फेलियर कहते हैं उसमें, अगर हीमोग्लोबिन आपका कहते हैं 8-9 है, तो वो इस और एक जिनका हीमोग्लोबिन 14-15 है उसके कंपैरिजन में उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी चलने फिरने में, काम में, उनकी डेली लाइफस्टाइल ज़्यादा ख़राब होगी एज़ कम्पेयर टू जिनका हीमोग्लोबिन 14-15 चल रहा है। तो हम
1: तो
0: चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन भी हार्ट फेलियर वाले मरीजों में 14-15 तक रहे।
1: एक मेरा सामान्य सवाल है, बिल्कुल देसी, कि साहब आप कह रहे हैं कि खून गाढ़ा होगा, जमेगा और उससे प्रॉब्लम होंगी, तो खून कम होना तो उल्टा फायदेमंद होना चाहिए
0: खून कम होना, खून कम होने का
1: ना
0: सर
1: सर?
0: वॉल्यूम, खून कम होने में लाल कण कम कम हो गए आपके,
1: अच्छा
0: लाल कण में हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन ले जाता है,
1: हाँ
0: अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं जाएगी बॉडी में तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है।
1: ओके, मतलब वो
0: हाँ
1: ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जो आरबीसीज हैं वो लाल
0: आरबीसीज
1: कण
0: हैं,
1: जो
0: लाल
1: हैं
0: कण हैं,
1: वो जरूरी
0: वो तो
1: हैं और
0: जरूरी
1: वो
0: हैं,
1: आपके कम हो गए।
0: वो आपके कम हो गए। तो खून ऐसे पतला गाढ़ा तो उससे कुछ नहीं होता है, खून गाढ़ा ज़्यादातर लोग बोलते हैं सर मैंने पंक्चर किया ब्लड के लिए सैंपल आई नहीं, मेरा खून बहुत गाढ़ा है, तो
1: हाँ
0: ये एक भ्रांति है। खून गाढ़ा तो खून तो कोलेस्ट्रोल से ऐसा नहीं होता कि खून बहुत गाढ़ा हो जाएगा, ये हमको खाली एस्टिमेशन से पता पड़ता है कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, बाकी अब देख के कि मेरा खून पतला है मेरा खून गाढ़ा है ये संभव नहीं कहना,
1: ये संभव ही नहीं
0: नहीं
1: है
0: है।
1: फिजिकल, मतलब आंखों से
0: हाँ
1: देख करके। अच्छा, किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, 20+ है या 16-17 है, ये भी कुछ दिक्कत कर सकता है?
0: हाँ ज़्यादा हीमोग्लोबिन में भी फिर वही वाली बात आती है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं कि ये जो कण होते हैं वो कण आपस में एक वो कहते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं, क्लम्प बना लेते हैं और छोटी छोटी नसों में फंस जाते हैं, तो इसकी वजह से नसों जो ब्लड का प्रवाह है वो
1: हाँ,
0: छोटी छोटी नसों में कैपिलरीज में डिस्टर्ब होता है,
1: तो इसकी भी कुछ दवा देनी पड़ती
0: इसकी
1: है?
0: भी दवाई देनी पड़ती है। ज़्यादातर 16-17 तो आजकल लोगों में मिल जाता है हमको,
1: अफोर्डेबल
0: और कुछ
1: है 16-17?
0: सिक्सटीन
1: ठीक है,
0: 16.5-17 तक तो हम एक्सेप्टेबल मान लेते हैं, 17 तक कई सारे लोगों को मिल जाता है हमको,
1: ये
0: सिक्सटीन
1: क्या
0: सेवनटीन
1: हेडिटी है क्या कुछ?
0: डाइट पे भी
1: या
0: डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ढंग से डाइट लेते हैं और आयरन कंटेनिंग फूड्स और सब चीज़ें एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आप एक आपको एक ढंग से
1: मतलब
0: एक
1: इसका
0: बंदा आएगा तो
1: पैसिव
0: उससे
1: लाइफस्टाइल से तो कोई लेना देना नहीं
0: नहीं,
1: है,
0: उससे लेना देना नहीं।
1: एक्टिव जिसकी ज्यादा होगी उसको आएगा।
0: हाँ उसको है
1: अच्छा, कह रहे हैं आयरन रिच डाइट अगर ज्यादा लेता है कोई?
0: आयरन, आयरन वो उसकी डाइट है प्लस वो बैलेंस डाइट ले रहा है, तो जो हमारे पास एक्टिव लोग आते हैं उनको जो वो अपने डाइट में ध्यान रखते हैं उनका हीमोग्लोबिन कितने बार हमको 16-17 मिलता है, 16-16 के
1: मिलता है और
0: आसपास,
1: वो ओके है,
0: वो ठीक है ओके।
1: चिंता की बात कब है?
0: चिंता की बात ये होती है जब हमारे कुछ हार्ट की मरीज होते हैं जिसमें भी हीमोग्लोबिन 20-21 पहुँच जाता है, वो तो खैर अबनॉर्मल है ही है, कभी कभी बिना किसी बीमारी के बाद भी हीमोग्लोबिन 20-21 के ऊपर जाता है, तो वो इसके लिए एक
1: उसका
0: बार,
1: क्या कारण हो सकता है?
0: उसके लिए आपके बोन मेरो में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसमें एक्सेस लाल कण बन रहे हैं, जैसे कि वो भी एक प्रकार का जिसको कहते हैं कि बोन का डिसफंक्शन, एक प्रकार का बोन कैंसर मान लीजिए कि आपको जो नहीं बनना चाहिए वो एक्सेस बन रहा है या कुछ चीज़ें कम बन रही है, तो वो भी आपका बोन मेरो में जहाँ खून बनता है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
1: तो ब्लड एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके
0: बिल्कुल
1: कार्डियक, उसमें लगभग मेरे को लगता है वही है सब कुछ है जो,
0: ब्लड को सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हार्ट फेलियर से
1: और
0: लेके
1: वो
0: एंजाइना से
1: उसका
0: लेके,
1: पंपिंग स्टेशन है, खराब ब्लड वहां से निकलना है और अच्छा ब्लड प्योर करके वो बाहर देगा बॉडी को, तो वहां सबसे पहले एक तरह से केंद्र हो सकता है वो एबनॉर्मलिटीज का। डॉक्टर साहब, और भी दो तीन जो पॉइंट है ये भी डिस्कस करूंगा, थायराइड का आपने बोला और कोलेस्ट्रॉल का तो आप बार बार बोल ही रहे हैं। एक सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि नमस्कार सर, मेरी उम्र 42 साल है, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मेरा वजन 70 किलो के आसपास है और मेरा BMI 24 के आसपास है, मेरे पिताजी को कई बार स्ट्रोक हुआ है और मेरा लाई प्रोटीनिन केवल लेवल लगभग 130 है, मुझे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे अपना LDL लेवल कितना रखना चाहिए?

0: ये पूछ रहे हैं
1: नाम। लाइपोप्रोटीन आजकल वो भी रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। लाइपोप्रोटीन भी हमें ज़िंदगी में एक बार कराना चाहिए। 130 तो काफ़ी बढ़ा हुआ है तो, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अभी हमारा ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट वो यही है कि रिस्क फैक्टर्स प्रिवेंशन और कोलेस्ट्रॉल का हम 100 के आसपास रखें इंडियन पॉपुलेशन में। गाइडलाइंस में अभी भी नहीं है, लेकिन ये लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है तो इसकी दो ही चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में क्या हर जाए, अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो हम मान के चलते हैं एलडीएल 100 के आसपास रखें और दूसरे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें, यही इसका इलाज है अभी फिलहाल।
0: दूसरा आपने एक चीज़ जो बोली थी बीच में कि थायराइड का भी आप ध्यान रखते हैं जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, थायराइड किस तरह से रोल प्ले करती है? शुगर और ये है सब हार्मोनल डिसऑर्डर हैं एक तरह से, ये भी सिस्टमिक प्रॉब्लम है।
1: थायराइड भी एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है बिकॉज थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। हमारा बॉडी का जो सेल का मेटाबॉलिज्म है, हर सेल कैसे मेटाबोलाइज कर रहा है वो सारा थायराइड हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो थायराइड हार्मोन्स के डिसफंक्शन के साथ कोलेस्ट्रॉल जुड़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये थोड़ा सा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको हमेशा
0: वेट गेन भी करती है,
1: वेट गेन भी करता है। तो ये एक थायराइड, वेट गेन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कोलेस्ट्रॉल का एबनॉर्मलिटीज, तो ये आपस में ये भी कनेक्टेड है। तो ये भी हम एक बार ऐसे स्क्रीनिंग जब पहली बार किसी करते हैं तो थायराइड साथ में जरूर करा देते हैं उसका।
0: एक कल परसों अखबार में खबर थी, आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि सब अब एक ऐसा कोई दवा विकसित करने की संभावना है या अमेरिका में कर ली गई है कि एक डोज देने पर आपका एलडीएल कम हो जाएगा उससे कोलेस्ट्रॉल, परसों के अखबारों में थी खबर। मैं कोलेस्ट्रॉल पर आना चाह रहा था बेसिकली, कोलेस्ट्रॉल का क्या तो रोल है और क्या इस तरह की कुछ संभावनाएं हैं क्या फ्यूचर में?
1: कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बहुत सारी इम्प्रूव हो गई हैं, अभी एक इंजेक्शन आ रहा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल,
0: बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है और इसके क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बता दो, कहीं तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बताते हैं और कुछ बुरा भी बताते हैं।
1: अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल का एक क्लासिफिकेशन था जो आजकल बंद हो गया है।
0: अच्छा,
1: कोलेस्ट्रॉल को अच्छा बुरा नहीं माना गया, कोलेस्ट्रॉल को आपने अलग अलग, कोलेस्ट्रॉल का बेसिक काम है कि आपकी बॉडी में अगर आप जो खाना खा रहे हैं या लीवर से जो फैट बन रहा है, ग्लूकोज आ रहा है अपटेक, तो वो ब्लड में कितना रहेगा, ब्लड से लीवर में कितना जाएगा, कितना मेटाबॉलिज होगा और लीवर से अभी कितना ब्लड में आएगा, इस पूरा सिस्टम को एक, क्योंकि एक पूरा एक बैलेंस्ड ऑर्गन, एक बैलेंस सिस्टम है कि आप जो ले रहे हैं, जो लीवर से बन रहा है वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आएगा, ब्लड से मेटाबॉलिज होकर बाहर कितना निकलेगा, कितना ब्लड में रह जाएगा, तो ये पूरा कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल के साथ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं कि आपके सारी सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं, सारा सेल का मेटाबॉलिज्म है, सेल के फंक्शंस हैं, न्यूरॉन्स के फंक्शन हैं, हॉर्मोन्स हैं, वो सब कोलेस्ट्रॉल पर डिपेंड करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो ही है,
0: जरूरी है, तो
1: जरूरी तो ही है, वाइटल है। कोलेस्ट्रॉल के आपके हर चीज़ में कोलेस्ट्रॉल काम आता है,
0: ब्लड फैट है ये पूरा,
1: एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो हमको रिकमेंडेड चीज़ें हैं उतना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और इसलिए कोलेस्ट्रॉल इसलिए बनाया गया है बॉडी में ताकि आपके जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल के फंक्शंस हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो भी ब्रेन हार्ट के फंक्शन, सब में सेम कोलेस्ट्रॉल काम आ रहा है, एक्सेस नहीं हो, हमारा ध्यान उस पर है कि ये चीज़ें जो हमारा रिकमेंडेड जो जो हमारा लेवल से उस तक रहे ताकि आपकी बॉडी में एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन नहीं हो और आप स्वस्थ रहें।
0: अब कितनी के एडवांस दवाइयाँ आ गई, पहले तो इसी पे कितनी के एडवांस चीज़ें आ गई हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा चैलेंज रह गया, क्या हेरिडिटी है?
1: कोलेस्ट्रॉल बेसिकली मेरा बाजी मानना है कि आपका एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो क्योंकि कितने बार कोलेस्ट्रॉल लोग ले जाते हैं जिनका 80 कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, किसी का 110 है, किसी का 190 है, तो ये ड्रिवन ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से अनुवांशिक है।
0: अच्छा।
1: और कुछ फैक्टर इसका डाइट पे भी है, लेकिन मेरा मानना है कि जितने भी स्टडीज़ बहुत सारे में है कि ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल आपका अनुवांशिक है और डाइट से आप 10-15-20% कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इफेक्टिवली कम करना है तो आपको दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ता है उसमें।
0: जैसे डाइट ही है या लाइफस्टाइल का भी कुछ रोल है?
1: लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज एंड डाइट, इन दोनों चीज़ों का, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, आप जितना चलेंगे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होगा, उतना फैट कम होगा, प्लस आप डाइट से कम ले रहे हैं तो आपका एक कोलेस्ट्रॉल आप बैलेंस रहेगा, आप ले भी कम रहे हैं कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो एक वो बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस बना रह जाता है।
0: जी, कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा समझा दो आप, ये 3-4 तरह का बताते हो आप लोग, कहते हैं कि एलडीएल, एसडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और फिर ट्राइग्लिसराइड, ये क्या है पूरा थोड़ा सा आम आदमी की,
1: आम आदमी के लिए इसे कोलेस्ट्रॉल के कई प्रकार के कंपोनेंट हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ऐसे ट्रांसफर तो नहीं हो सकता, तो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन और कुछ मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो किस पार्टिकल में कितना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कितना प्रोटीन ज़्यादा है, उस हिसाब से उनको डिवाइड कर रखा है कि लो डेंसिटी, जिसको हम आजकल जो ज़्यादा लोग एलडीएल मानते हैं,
0: बुरा
1: कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एलडीएल, तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है और दूसरी चीज़ें कम है।
0: ये कितना को तो चलेगा, 40-45 तक ठीक है?
1: नहीं, 40-45 तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम मानते हैं ज़्यादातर आम इंडियंस में 100-120 के आसपास होता है,
0: 100-120 के आसपास हो सकता है, और उस पर वहाँ तक दवाई नहीं दोगे,
1: वहाँ की जरूरत नहीं है। और इंडियन गाइडलाइन

0: थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, 130 तक तो अगर कोई बीमारी नहीं है, 130 तक तो एक्सेप्टेबल है।
1: अच्छा,
0: 130 के नीचे आप अगर हैं तो ठीक है, अगर कोई बीमारी नहीं है। बीमारी होनी शुरू हो जाए तो आपको कभी 100 के नीचे आना पड़ता है, कभी 70 के नीचे आना पड़ता है, और बार बार हार्ट की प्रॉब्लम या बार बार ब्लॉकेज की समस्या आ रही है तो आपको 50-55 के आसपास ही रखना पड़ता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को।
1: एलडीएल के बढ़ाने वाले जो कारक हैं उन पे भी बात कर लें। आपने कहा था कि साहब डाइट की बात करेंगे आज,
0: अनुवांशिक तो हम लोग छोड़
1: अनुवांशिक, हाँ ठीक है,
0: अनुवांशिक तो है ही है
1: अब, क्योंकि एलडीएल आप करेंगे साहब जिसको हो गया उसको तो 50-60 पे आप मैनेज करोगे दवाइयां दे करके, लेकिन 130 तक चल सकता है कोई। अपने हाथ में क्या क्या है, मेरे हाथ में क्या क्या है जिससे मैं इस एलडीएल को 70-80 या 50 के आसपास ला सकूं?
0: एक तो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज, व्यायाम जो है वो हम एक अलग चीज़ है। इसमें हम बेसिक मिनिमम बात है कि आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज का मतलब होता है 30 मिनट का एक्सरसाइज, इसमें आप फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क जॉगिंग, स्विमिंग कुछ भी कर सकते हैं। हफ्ते में 150
1: फूलनी चाहिए थोड़ी, या क्या थ्योरी क्या है इसके पीछे?
0: थ्योरी ये है कि एक ब्रिस्क वॉकिंग है, आप इतना तेज चलें ताकि आसपास के लोगों से बात नहीं कर पाएं।
1: अच्छा।
0: आपको इतना होना चाहिए, इतना कंफर्टेबल हो कि आपको बहुत ज़्यादा सांस भी नहीं फूले और इतना स्लो भी नहीं चले कि आप कम से बात कर पाएं। तो बेसिक बात ये है कि आप इतना तेज चल पाएं कि आप लोगों से बात नहीं कर पाएं और अपने 30 मिनट में घूम फिर के आ जाएं। तो एक बेसिक एक्सरसाइज है फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग। एक हम लोग खाना खाने के बाद बोलते हैं कि धीरे धीरे चलिए। धीरे चलने का मतलब ये होता है कि आप बात कर सकें आसपास वालों से खाना खाने के बाद, जो
1: वो भी फायदेमंद है।
0: खाना खाने के बाद में लोग ज़्यादातर वॉकिंग खाना खाने के बाद भी करते हैं कि सर मैं तो शाम को
1: करते
0: लेकिन
1: ही
0: है। हाँ, लेकिन शाम का खाना खाने के बाद की वॉकिंग थोड़ी धीरे होनी चाहिए। धीरे का मतलब होता है एक आप जब टहल के आ रहे हैं, टहलने का मतलब है कि धीरे धीरे चल लिए, आसपास से बातें कर ली, ताकि आप अपने पेट में जब आपके ब्लड प्रवाह की जरूरत पेट को ज़्यादा है क्योंकि खाना पच रहा है
1: जी,
0: तो अननेसेसरी आप उसको डाइवर्ट नहीं करें ब्लड को, क्योंकि तेज चलेंगे तो ब्लड आपको मसल्स में जाना पड़ेगा तो वो पेट में ढंग से पाचन नहीं होगा। इसलिए सारा ब्लड पेट में जाए उसके लिए है कि आप धीरे चलें, टहलें बस, और खाना खाने से पहले वॉक करके आएँ तेज।
1: तो खाना खाने के टाइम ही आईपीएल आता है सर आजकल। इशारा आ रहा है मीनाक्षी करिए, गाना सुना देते हैं। चलिए गाना सुना।

0: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
1: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
0: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
1: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में डॉक्टर दीपक आमेटा हमारे साथ हैं। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और आज खान पान और जो सामान्य जो समस्याएं हैं दिल की, उनके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आमेटा, एक सवाल आया है, उससे पहले मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये लाइव प्रोग्राम है और लगभग आधे घंटे डॉक्टर दीपक आमेटा हमारे साथ रहेंगे। अगर दिल के संबंध में या हृदय रोग या कार्डियक प्रॉब्लम्स कोई आपकी है, कोई समाधान चाहते हैं, तो हमें आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं नंबर बोल रहा हूँ एक बार आपके लिए, 9462697568, 9462697568। डॉक्टर साहब, एक मैसेज है, ये गिरीश जोशी हैं उदयपुर से ही, ये कह रहे हैं कि BP कम होने अर्थात 110/70 होने पर रेगुलर दवा बंद करनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए। और एक इन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा है, हालांकि ऑडियो जनरली हम एंटरटेन करते नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ये आपको
3: ये कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है और हाइपरटेंशन की गोली चल रही है, लेकिन कुछ समय बाद बीपी कंट्रोल होते हुए कम हो जाता है 110/70, 100/65, तो हाइपरटेंशन की गोली खानी या बंद कर देनी
2: जी।
4: तो ये वाली बात है कि हो सकता है कि ब्लड प्रेशर आपका दवाई की वजह से कंट्रोल है, तो इस कंडीशन में अगर बीपी कम हो रहा है तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे दवाइयों को आधा या धीरे धीरे कम करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि एक दवाई कम करी तो कितना हुआ, एक दवाई कम करी तो धीरे धीरे करके उसको, तो उसको कहते हैं ना ग्रेजुअल विड्रॉल, धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम दवाइयों को कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अचानक से नहीं कम करना चाहिए हमें।
2: कई बार लो बीपी चैलेंजिंग होता है डॉक्टर साहब, कई बार इवन नॉर्मल केस में जो कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं है, फीमेल्स में कॉमन है, और आपके पास जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी कोई दवा लेने की जरूरत है नहीं, तो ऐसे में पेशेंट करे क्या, वो लो फील करता है, कब लो बीपी डेंजर जोन में आ जाता है और कब तक इग्नोरेबल है?
4: लो बीपी की ऐसे अचानक से कोई बीमारी तो नहीं, हम ये मानते हैं हर बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से कभी कभी बीपी 90/60 करके, लेकिन अगर आप बिल्कुल आपको कोई लक्षण नहीं है तो वो मानता हूँ, जैसे 90/60 करके भी कोई फीमेल आई हमारे पास, कोई लक्षण नहीं है, देखा तो 90/60 है, तो बीपी कम है? नहीं, कम नहीं, आपकी बॉडी को 90/60 चाहिए और ठीक चल रहा है।
2: अगर
4: लक्षण है,
2: कई बार लक्षण आ जाते हैं,
4: लक्षण है तो फिर
2: सुस्त है, लो फील कर रही हैं, इरिटेटिंग कई बार होता है कि वो अपना एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हैं।
4: ज़्यादा समस्या ये होती है कि जैसे मैं बैठ के उठी तो मुझे चक्कर आ रहे हैं,
2: हाँ
4: तो ये कॉमन है, तो उनके लिए सबसे पहले हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा अपना पानी, नमक, क्योंकि गर्मी का मौसम है,
2: दवा नहीं देंगे,
4: दवाई है हमारे पास
2: है,
4: लेकिन दवाई है, दवाई बढ़ा बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ हैं, लेकिन उसकी जरूरत मान के चलिए कि मुझे,
2: अच्छा घर पे आजकल बीपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस बीपी लेवल पे आपके पास भाग के आना चाहिए? लोअर साइड में?
4: लोअर साइड में मेरा मानना है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो कोई चिंता का विषय नहीं है।
2: तो मान लीजिए किसी का 40 ही आ रहा है?
4: नहीं नहीं, वो तो फिर हम एक मान के चलिए कि अगर सिम्टम किसी के हैं, जैसे बीपी जैसे का 90/60 हम मान के चलते हैं कि ये 90/60 के नीचे, तो हमें एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में प्रॉब्लम कुछ क्या हो रही है, 80/60 आ रहा है, 80/60 क्यों आ रहा है। अगर कोई कारण नहीं आया, खाली ये है कि उसका वो शायद उसने नमक वमक कम लिया तो हम उसको बोल देते हैं, लेकिन एक बार उनका एवोल्यूशन चाहिए। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आपने आपने आप उसको इंटेक को ढंग से लिया नहीं है।
2: अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सिकंजी या जो इस तरह के पेय पदार्थ हैं ये ले लें, नमक,
4: लेकिन 110/70 ब्लड प्रेशर किसी सबका आइडियल नहीं है, लोगों को 90/60 में भी लोग कंफर्टेबल रहते हैं, तो हर बॉडी का अपना बीपी अलग रहता है।
2: अच्छा, इसी तरह जैसे पल्स है, ये 72 आप कहते हैं कि साहब बेहतर ही होनी चाहिए, एक मिनट में 72 बार पल्स आनी चाहिए, किसी की 60 आ रही है

0: और कंटिन्यू 60 आती है,
1: तो 60 से 100 का तो रेंज है,
0: रेंज
1: आइडियल है 72, लेकिन 60 से 100 का रेट है। लेकिन 60 तो यह है कि हम जग रहे तो भी 60 है, जब आप रात में सोते हैं तब कितनी बार ये पल्स 35-40 तक भी पहुंच जाती
0: चलता
1: है, जो भी नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म कुछ है ही नहीं, आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो बॉडी अपने हिसाब से उसको स्लो कर लेती है,
0: तो कोई टेंशन की बात
1: कोई
0: नहीं,
1: टेंशन नहीं। जब लोग बहुत ज्यादा से साइकिलिंग करते हैं, बहुत तेज चलते हैं, तो उनकी हार्ट बीट 150-160 पहुंच जाती है।
0: अच्छा, जैसे कुछ लोग थायराइड के पेशेंट है, क्रोनिक जिनको डिसऑर्डर्स हैं, इनकी हाइपो खास तौर से, दवा लेने से क्या पल्स रेट पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है मेटाबॉलिज्म?
1: हाइपोथायरॉइडिज्म, तो जैसे मेटाबॉलिज्म कम हुआ, उनकी पल्स रेट यूजुअली लोगों की कम मिलती
0: लो
1: है,
0: लोअर
1: लो
0: साइड में
1: मिलती है।
0: जाएगी,
1: जब आप हॉर्मोन देंगे, नॉर्मल हो जाएगा थायरॉइड, तो अभी पल्स रेट नॉर्मल हो जाती है
0: नॉर्मल
1: उनकी।
0: हो जाए। इसी तरह हाइपर वाले के,
1: हाइपर वाले उल्टे हो जाते हैं, उनकी हाई उनकी हार्ट रेट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हॉर्मोन्स मेटाबॉलिज्म वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो टेकीकार्डियाज हो गए थे ना, फास्टर हार्ट रेट्स, 120-130, 140 मिलती है। जब सो रहे होंगे तब भी उनकी 120-130 मिलेगी, जब
0: धड़क
1: आपको
0: और धड़कन महसूस
1: धड़कन
0: होगी,
1: धड़कन धड़कन, फिर आप दवाई देंगे कंट्रोल करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा।
0: स्वेटिंग आएगी।
1: वो तो हाई मेटाबॉलिज्म, जैसे कि बहुत तेज मेटाबॉलिज्म हो रहा था, उसके सब सारे वही
0: डॉक्टर दीपक,
1: सिम्टम्स है।
0: क्या ये इस तरह के पेशेंट, एक हाइपर वाले या हाइपो वाले जो भी हैं, क्या कार्डियक प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाइपर वाले खास तौर से?
1: हाइपर वाले भी हो सकते हैं। हाइपर में कॉमन है जिसको कहते हैं ना हार्ट बीट के डिसऑर्डर्स, जिसको कहते हैं हम लोग एरिथमिया जिसको बोलते हैं, जैसे एट्रल फिब्रिलेशन है, टेकीकार्डियाज हैं, तो वो
0: हाँ,
1: बड़े कॉमन है।
0: एरिथमिया मतलब जो हार्ट बीट है वो
1: हार्ट
0: कभी
1: बीट
0: कम कभी
1: कभी
0: ज्यादा।
1: ज़्यादा, कभी एट्रल फिब्रिलेशन बड़ा कॉमन है, जिसमें हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, जिसमें कि एक हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है, और कंटिन्यूसली तेज हार्ट बीट होने से भी हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है, जिसको हम लोग
0: तो
1: टेकीकार्डियोमायोपैथी
0: इसलिए
1: बोलते
0: जो
1: हैं।
0: भी थायराइड है, भले हाइपर है या हाइपो है, उसको दवाइयाँ जरूर लें आप
1: दवाई तो
0: टाइम टू
1: चाहिए
0: टाइम,
1: उसके
0: और
1: लिए बिल्कुल,
0: डॉक्टर्स के संपर्क में रहें, अदरवाइज ये छोटी सी प्रॉब्लम आपको बड़ी
1: हाँ
0: समस्या
1: बड़ी
0: दे
1: समस्या कर सकती
0: सकती
1: है
0: है।
1: बिल्कुल।
0: एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि हितवर्धन जी हैं, कह रहे हैं कि मेरी उम्र 41 है, मेरे पिताजी का बाईपास हुआ था, इस कारण मैंने वंशानुगत कारण की संभावनाओं को देखते हुए रेगुलर हेल्थ चेक करवाना शुरू किया, और पाया कि मेरा ट्राइग्लिसराइड हमेशा बढ़ा रहता है, और कई बार हेल्थ चेकअप कराया, हमेशा गुड कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, लगभग 240 लेवल पर है, कई बार चेकअप करवा चुका हूँ, सीटी एंजियोग्राफी भी करवाई, नो कैल्शियम डिपॉजिट इन आर्टरी आया, फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सांस फूल जाती है, क्या अन्य कोई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या चिंता की कोई बात नहीं? मेरी लाइफस्टाइल ठीक ठाक है, वजन 78 किलो है और हाइट 5 फुट 11 इंच है, BMI लेवल में है, किसी तरह की कोई बीमारी है नहीं, 41 साल के हैं। काफ़ी डिटेल दे दिया
1: काफ़ी
0: आपको।
1: डिटेल दे दी है, उनका BMI भी ठीक है, 41 साल के हैं और 78 हाइट भी अच्छी है। तो अगर आपने सीटी कोरोनरी एंजियो करा लिया है, उसमें ब्लॉकेज नहीं है, तो चांसेस यूजुअली कम हो जाते हैं। तो चलने फिरने पे जो सांस फूलने की बीमारी है, वो ज़्यादातर तो ये हम कहते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो अपना थोड़ा सा चलने फिरने की प्रैक्टिस बढ़ाइए, जैसे हमने वॉकिंग के बारे में बोला वो कीजिए। और वंशानुगत वाली बात है, ट्राइग्लिसराइड तो अगर आजकल हम कहते हैं 150 के ऊपर है, तो वो भी इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट चल रहा है, तो उसको भी आपको, अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है 150 से ऊपर है, तो आपको इसके भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
0: तो थोड़ा बहुत अवेयर तो रहना पड़ेगा,
1: अरे बिल्कुल
0: क्योंकि
1: रहना पड़ेगा,
0: पेरेंटल हिस्ट्री
1: पेरेंटल
0: है।
1: हिस्ट्री है तो उनको तो बहुत ज़रूरी है, आप हर साल में एक बार चेकअप कराते रहें, देखते रहें लेवल्स कैसे बढ़ तो नहीं रहे, कम तो नहीं हो रहे,
0: अच्छा,
1: एक साल।
0: पेरेंटल हिस्ट्री कैसे फिक्स करते हैं आप? फादर को बाईपास हुआ हो, एंजियोप्लास्टी हुई हो, या वो दवाओं पे रहे हों, ऐसा
1: कोई भी अगर
0: मतलब
1: आपको,
0: मदर या फादर,
1: हाँ कोई भी
0: या
1: अगर
0: इवन
1: जैसे,
0: आपके ननिहाल पक्ष में नाना
1: हाँ वो भी आपकी, क्योंकि वो नाना से मदर से होते हुए आपके अंदर आ ही रहा है,
0: और दादा भी हो सकते
1: दादा
0: हैं।
1: भी हो सकते हैं, तो मैटरनल पैटरनल दोनों ही, मातृत्व पितृत्व दोनों तरफ से आपको कुछ हो रहा है, तो वो दोनों ही आपके रिस्क फैक्टर्स में हैं। और उनके अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज आया है, जैसे किडनी में या हार्ट में या ब्रेन में,
0: अच्छा,
1: तो
0: और कहीं भी अगर आया
1: दूसरी
0: तो?
1: जगह भी, जैसे कितनी बार क्या होता है, वैसे यूजली मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा कॉमन तो हार्ट में ही आता है,
0: जी
1: हार्ट और
0: जी
1: ब्रेन में,
0: जी
1: लेकिन कभी कभी एओर्टा से मिल जाता है, दूसरी दूसरी नसों में मिल जाता है,
0: या
1: तो
0: अगर ब्रेन में भी आया है, स्ट्रोक
1: हाँ
0: टाइप
1: स्ट्रोक
0: की
1: में भी
0: कुछ,
1: आया है,
0: तो भी आप कार्डियक रिस्क पे हैं
1: तो भी
0: पेरेंटल लाइन में।
1: पेरेंटल लाइन में, क्योंकि वो आपके हार्ट ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, ब्लड वेसल्स ब्रेन की हो या हार्ट की हो
0: तो आपकी
1: या पैरों की
0: प्रॉपर्टीज
1: भी
0: बता
1: हो,
0: रहा है, वो बॉडी की
1: हाँ बता रहा है
0: विशेषताएं
1: कि
0: बता रहा
1: आपके
0: है।
1: यहाँ कहने के ब्लॉकेज के डिपोजिशन चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो हम मानते हैं कि अगर ये मेल में 55 साल से पहले हो गया है, फीमेल में, तो ये एक एज लिमिट भी है, तो इसमें अगर देखते हैं इससे कम एज में अगर हुआ है, तो ये हम फैमिली हिस्ट्री को मानते हैं, और फैमिली हिस्ट्री में जैसे कि 60-70 साल में हुआ, तो वो तो एज रिलेटेड भी हो जाता है। किसी फादर मदर को कम एज में अगर हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसको फैमिली हिस्ट्री में काउंट करते हैं।
0: एज का कितना संबंध है? आजकल यंगर पॉपुलेशन में बहुत कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई लोग इसको कोविड से भी जोड़ रहे हैं, कई तरह की चीज़ों से जोड़ रहे हैं, क्या एज के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ता जाता है?
1: इसलिए हम लोग जैसे, क्योंकि अगर मेरे

0: मदर को 80 ईयर्स में कुछ हुआ है तो वो फैमिली हिस्ट्री में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि विद एज आपका बॉडी में मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने कहा ना 20 साल की एज से फैटी स्ट्रिक्स जो जमा होने लग जाती है तो धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो एक लेकिन आपको अगर जैसे 40-50 साल की अगर एज में कुछ आ रहा है ब्लॉकेज तो वो फैमिली हिस्ट्री में काउंट हो जाता है, तो एज साथ बढ़ता है सर। बिल्कुल
1: सत्यनारायण जी हैं ये कह रहे हैं कि, सत्यनारायण वारी हैं ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है और थोड़ी देर में सांस फूल जाती है तो इसको क्या समझें, अस्थमा या फिर कोई कार्डियक
0: ये तो
1: प्रॉब्लम्स?
0: सर देखने से पता चलता है अस्थमा तो, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादातर चलने फिरने में जो सांस फूल रही है वो यही है कि मैं मानता हूँ कि आपका कंपेंसेटेड जो होता है ना, आपको अपने मांसपेशियों को ट्रेन करना पड़ता है, अनट्रेंड मसल्स की वजह से और अनट्रेंड हार्ट की वजह से आपको चलने फिरने में सांस फूलती है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे चलने फिरने की तो अगर आपको दूसरी अस्थमा और चीज़ें नहीं है तो आपके जो सांस फूलने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर कोई दूसरी बीमारी नहीं आ रही है और आपको चलने में सांस फूल रही है तो आप चलते रहेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें कंपेंसेट होती रहती है, ट्रेनिंग चलती रहती है मसल्स की, हार्ट की ट्रेनिंग, तो
1: कुछ
0: धीरे धीरे
1: दिनों बाद
0: चीज़ें
1: आपको उतनी सांस नहीं
0: बिल्कुल नहीं
1: फूलेगी
0: फूलेगी, बिल्कुल नहीं
1: जितनी
0: फूलेगी,
1: शुरुआत में फूली थी,
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो,
0: अगर दूसरी प्रॉब्लम अस्थमा नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है तो
1: जो
0: आपको,
1: कुछ भी मतलब अगर,
0: हाँ कुछ
1: और
0: भी
1: वो
0: नहीं
1: तो
0: है,
1: जांचने से ही पता
0: हाँ जी
1: चलेगा कि आपको अस्थमा है या कार्डियक एंगल से कोई दिक्कत
0: बिल्कुल सर। जैसे हम कह रहे हैं आप रोज़ 1 किलोमीटर चल रहे हो पैदल, किसी ने आपने अगर 3 किलोमीटर पैदल चल लिए तो आप सांस फूलेगी फूलेगी आपको,
1: फूलेगी।
0: लेकिन आप रोज़ अगर 5 से 7 किलोमीटर चल रहे हो पैदल तो उस दिन आपको 2 किलोमीटर में आपको कुछ नहीं होगा, तो ये ट्रेनिंग की बात है।
1: कार्डियक जो प्रॉब्लम्स में सांस फूलती है, क्या उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है या जस्ट जैसे आपने कुछ भारी काम किया और सांस फूल गई, और फिर विड्रॉल भी होता है उसका?
0: विड्रोल भी होता है सर, क्योंकि पंपिंग अगर वीक है हार्ट की, पंपिंग वीक है तो हार्ट की पंपिंग, जैसे मैं बैठे बैठे जैसे मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेरी हार्ट की पंपिंग जो कम है तो उससे भी मेरा काम चल रहा है, जितना ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरे मांसपेशियों को ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ज़्यादा ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट से आएगा, हार्ट पंप करेगा। अगर हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा है तो मुझे वो ब्लड नहीं पहुँच पा रहा, ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुँच पा रही है, तो मुझे कैसा लगेगा कि मुझे सांस फूल रही है,
1: बेचैनी
0: जितना
1: भी होगी साथ में।
0: जितना ऑक्सीजन चाहिए मुझे वो मिल नहीं पा रही है मुझे, क्यों जितना, तो मुझे बैठना पड़ेगा। मुझे बैठने से वापस मेरा मेटाबॉलिज्म कम हुआ, मेरी रिक्वायरमेंट कम हुई, वो रिक्वायरमेंट आती है मेरा वापस सांस फूलना ठीक हो जाएगा,
1: आपको रिलीफ मिलेगा
0: रिलीफ
1: और
0: मिल
1: आप
0: जाएगा
1: ठीक हो
0: आपको
1: जाओगे।
0: बिल्कुल।
1: ये लेकिन एक हेल्दी पर्सन है, बिना कार्डियक प्रॉब्लम्स वाले को भी यही होगा, उसको भी तो यही होगा ना, क्योंकि जब अगर वो रेस्ट करेगा तो रिलीफ
0: बिल्कुल
1: मिलेगा और हार्ड वर्क करेगा तो उसकी सांस फूलेगी, तो उसके साथ में कुछ और बेचैनी वगैरह भी महसूस होती है।
0: हाँ, उस उनके साथ तो उनको बेसिकली अगर पंपिंग कमज़ोर है तो उनको सांस के साथ बेचैनी, घबराहट और सब चीज़ें, पसीना पसीना आना, वो सब
1: बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा
0: बहुत
1: कि
0: ज़्यादा, हाँ कि बहुत इतना एबनॉर्मल दूसरे को नहीं लगे, दूसरा वाला तो कंफर्टेबल लगे कि सांस फूली, रिलैक्स हुआ, वो ठीक हो जाएगा
1: दो
0: आराम से।
1: आदमी अगर एक साथ काम कर रहे हैं, एक हेल्दी है और एक
0: हाँ
1: कार्डियक प्रॉब्लम वाला है, तो कार्डियक वाला देर तक अनईजी फील
0: देर तक
1: करेगा।
0: अनईजी फील करेगा, उसके बेसिक सिस्टमिक सिस्टम वो भी शुरू हो जाएंगे, पसीना आना, घबराहट, बेचैनी, बहुत तेज़ सांस फूलना, बहुत लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में उसको।
1: एक सवाल हो रहा है, ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र 43 वर्ष है, वजन 90 किलो है, 5 पॉइंट हाइट जो है 5 फीट है, और बीपी की प्रॉब्लम है, क्या मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जगदीश जी हैं वसीटा, ये कह रहे हैं।
0: ये ब्लड प्रेशर सर एक रिस्क फैक्टर्स में आता है, बीपी, शुगर, स्मोकिंग, ये रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, तो अगर लंबे टाइम तक अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहता है तो उसका असर हार्ट, किडनी, ब्रेन पे पड़ता है। तो ये कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जो कहते हैं ना कि लंबे टाइम से जो लोग जानते हैं कि हाँ ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स ये हैं स्ट्रोक में, ब्लड प्रेशर एंड शुगर एंड स्मोकिंग।
1: एक सवाल है, कमल जी करें कि खून को पतला करने के लिए हम सबको एसीटॉम 4MG या देसी घी और ब्लड को पतला करने के लिए लहसुन का सेवन चुपके से कर सकते हैं, वजन घटाने, ये कितना सहायक है इस तरह की चीज़ें? वजन घटाने के लिए हम क्या करें, और सीढ़ियाँ चढ़ने में इनको हाँफ जाते हैं, पहले इनको कार्डियक प्रॉब्लम्स रही है।
0: एसीट्रोम तो स्पेसिफिक कंडीशन में रिक्वायरमेंट है, हर किसी इंसान को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एसीट्रोम के अपने अलग नुकसान भी हैं,
1: अच्छा,
0: तो एसीट्रोम के तो स्पेसिफिक चीज़ें हैं
1: कहने
0: कि
1: कि
0: हाँ इसमें
1: रात को
0: एसीट्रोम
1: नींद खुल जाती है कभी कभी, देर रात नींद नहीं आती है
0: नहीं,
1: क्या?
0: वो तो इसमें वो तो इसका कोई नहीं होता हार्ट का,
1: अच्छा,
0: लेकिन ये वाली बात है कि उन्होंने क्या पूछा था बीच में ये,
1: लहसुन खाना
0: हाँ
1: और
0: वो
1: ये
0: तो
1: है?
0: इसका कोई प्रूवन हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास साइंस रिसर्च नहीं है, लेकिन
1: अच्छा
0: इसका वो नुकसान भी नहीं है।
1: हाँ, खा लो, काफी लोग खाते
0: हाँ
1: हैं
0: खाते,
1: कच्चा
0: काफ़ी लोग
1: लहसुन
0: खाते
1: खाते
0: हैं,
1: हैं सुबह सुबह, और अब उसके
0: अर्जुन
1: मेडिकल,
0: की छाल बहुत
1: हाँ
0: कॉमन है, पूरी दुनिया से लेती है अर्जुन की थाल
1: आपको
0: छाल
1: मालूम तो है।
0: हाँ
1: हैं
0: सज्जन बोलते हैं सर अर्जुन की छाल भी खा रहे हैं, दवाई कम कर दो हमारी
1: तो कुछ उससे आपको कभी कोई चेंज महसूस होता है या आपने कभी गौर नहीं किया इस बात पे?
0: सर हमारे पास इसकी क्या साइंस नहीं है इसको चेक करने के लिए, क्योंकि हम हमारी दवाएं भी दे रहे हैं तो वो उसका फ़र्क इनसे आ रहा है या उनसे आ रहा है उसको कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी दवाइयों के साथ तो क्लियर है कि आपने इतनी दवाई दी तो इतना कम हो गई।

0: दवाई दी इतना कम होगा, स्पेसिफिक लिखा हुआ है,
1: हम्म,
0: लेकिन ये कितनी खाओगे कितना कम होगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है।
1: ना हो
0: लेकिन इससे
1: सक
0: बुराई नहीं है तो आप यू कैन
1: खाते रहो।
0: कंज्यूम इट। हाँ, लेकिन हमारी दवाई बंद नहीं करें जो दवाई दे रखी।
1: कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें भी कंज्यूम कर लेते हो जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती।
0: प्रॉब्लम बढ़ती है सर। कितने कितनी बार, सबसे बड़ी बात हमारी आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रकार से चीज़ें ले लेते हैं जो अल्टीमेटली उनकी किडनीज में फ़र्क डालती हैं। तो प्रूवन जो चीज़ें हैं वही लें, और अनट्रेंड लोगों से और अनप्रूवन चीज़ों का इस्तेमाल करने से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मेरा मानना है।
1: एक सवाल हो रहा है, ये कह रही हैं कि सुनीता जांगिड़ हैं, कह रही कि सर नमस्ते, मेरी बेटी 20 साल की है, उसके खाना खाते ही बाई तरफ कंधे में दर्द होता है। 20 साल की उम्र है, ध्यान रखना। जब चेक करवाया तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी नसों में तकलीफ है। सर क्या इसका कोई इलाज है? बाई तरफ कंधे में दर्द होता है। अब ये पहली बात तो कार्डियक एंगल से आप
0: कार्डियक
1: डिफाइन कर
0: एंगल
1: सकते
0: से,
1: हैं।
0: हाँ तो कार्डियक एंगल से डिफाइन करना तो बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन 20 साल की बच्चियों में कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें नसों में अपने आप ही कुछ ब्लॉकेज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल से लेना देना नहीं है उसका, लेकिन बहुत रेयर है, लेकिन होती ज़रूर है।
1: और कई बार ओवर द पीरियड ठीक भी हो जाती है, ग्रोइंग एज के साथ साथ
0: ग्रोइंग के साथ चीज़ें ये वाली जो बीमारी
1: मस्कुलर स्ट्रेंथ
0: स्पेसिफिक
1: जैसे बढ़ेगी,
0: नहीं,
1: ऐसा
0: लेकिन ये
1: भी
0: जो
1: है।
0: स्पेसिफिक हम बीमारी बता रहे हैं जिसमें आर्टरीज में इन्फ्लामेशन होता है, वो तो बीमारी उम्र के साथ बढ़ती बढ़ती हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन ये तो आपकी बातें सुन के लग रहा है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक बात होनी नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल, मतलब एक तरफ
0: हाँ, एक
1: कंधे में
0: तरफ
1: ही
0: एक
1: दर्द
0: कंधे
1: है,
0: में
1: कोई
0: दर्द, तो इसका
1: मस्कुलर
0: कोई
1: प्रॉब्लम है।
0: रिलेशन लगता नहीं है कुछ ऐसा।
1: हाँ, एक सवाल है, ये मांगीलाल बैरवा हैं, 54 साल इनकी उम्र है, जोगीवाड़ा रहते हैं। कह रहे हैं कि सर मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच है और वजन 67 किलो है, 67 kg। मुझे चलने फिरने सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती, ना ही सांस फूलती है। नियमित वाक एवं शुद्ध शाकाहारी हूँ, आज तक कोई जांच नहीं करवाई है। कार्डियक या अन्य बीमारी से बचने हेतु क्या कोई जांच करवानी चाहिए? क्या प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, करें 67 ईयर एज है और चलने फिरने में सांस वांस नहीं फूलती इनकी।
0: तो सर बेसिकली हमको, हमने अभी जैसे स्टार्टिंग बात करी थी
1: चौवन
0: प्रिवेंशन,
1: साल की उम्र है।
0: हाँ जो प्रिवेंशन देखना है हमें, क्योंकि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो उनको TMT वगैरह की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो हमने जो 5 रिस्क फैक्टर्स बताए, कोलेस्ट्रॉल, इनकी एक बार जांच साल में एक बार इनकी होनी ही चाहिए जांच,
1: अच्छा।
0: जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायरॉयड, किडनीज, ये सब चीज़ें।
1: और एक और जो सवाल आया हमारे पास में, ये आया है अमृत जी का, और ये कह रहे हैं कि मेरे कितनी बार गैस्ट्रिक का दर्द और हार्ट का दर्द में क्या अंतर है, ये इनको बताएं। और हीमोग्लोबिन इनका 10.5 है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: जैसे सर अभी हमने डिस्कस किया था, जो हार्ट का पेन होगा वैसा पेन आपको पहले कभी महसूस नहीं हुआ होगा। आपने गैस्ट्राइटिस का पेन तो हर हर इंसान ने महसूस किया होगा, लेकिन इसका पेन बहुत एक्सेसिव होता है। प्लस हमारे शरीर के जो दूसरे सिम्पेथेटिक जो कहते हैं ना हॉर्मोन्स एक्टिवेशन की वजह से, जो पसीना, घबराहट, बेचैनी जो होती है, वो एसिडिटी में नहीं होती है, वो इसी में होती है। इसमें आपको ज़बरदस्त पसीना होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, वो इस प्रकार से एक पूरे तरीके के एक एक स्ट्रेस हार्मोन के एक्टिवेशन की वजह से जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे शुरू होंगे दर्द के साथ में। और वो एक बहुत तेज़ दर्द होगा आपको, आपको लगेगा कि नहीं, आमतौर पे जो मुझे एसिडिटी होती है वही दर्द अलग है, प्लस मुझे साथ में भयंकर तेज़ पसीना, बेचैनी, घबराहट हो रही है, तो इसका मतलब ये दर्द आपका हार्ट के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं।
1: अच्छा, दोनों में फर्क है
0: बहुत
1: और
0: फ़र्क है दोनों में, सिस्टम है कि अगर सिम्टम साथ में चल रहे हैं तो वो आपका हार्ट का ज़्यादा मानना चाहिए, जिसमें घबराहट, बेचैनी और पसीना होना।
1: इस तरह के एंटासिड वगैरह लेने से अगर मुझे रिलीफ मिल रहा है तो
0: नहीं, मेरा मानना है कि आपको एक बार जाके आप हॉस्पिटल में जाके आप ECG करा
1: एंजाइनिक
0: लें।
1: पेन में रिलीफ मिलता है क्या, एंटासिड वगैरह इस तरह की चीज़ें लेने से?
0: एंटासिड से सर रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि एंजाइना पेन कभी कभी अपना भी 10-15-20 मिनट में कभी कभी ठीक हो जाता है,
1: अच्छा।
0: तो आपको लगता है कि मुझे, जैसे अगर हार्ट अटैक नहीं है, एंजाइना है, तो वो 10-15-10 मिनट में ठीक हो गया, तो आपने दवाई ली, इधर से एसिडिटी की दवाई ली और वो ठीक हो गया, तो आपको लगता है कि मेरा हो सकता है इसी से ठीक हुआ हो।
1: अच्छा। एक सवाल है, मिनी माइक्रो आर्टिस्ट चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा हैं, ये कह रहे हैं कि सब इनकी बाईपास हुई है और अब क्या इनको खान पान में ध्यान रखना चाहिए? 58 साल, 58 किलो इनका वजन है और लगभग 60 के आसपास उम्र है सर।
0: तो जैसे हम डाइट का स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही रहे थे कि जो डाइट को हमको क्या नहीं करना है, क्या ज़्यादा करना है, तो डाइट का मैं छोटा सा बता दूं, तो डाइट में हम कुछ चीज़ें हमें जो कम करनी है उसमें ये मान के चलना है कि हमें चार चीज़ें हम लोग बेसिक बात मानते हैं कि कुछ ट्रांस फैट्स हैं, या पुराना जो डालडा आता था, जो ट्रांस फैट्स का मतलब ये होता है कि बार बार एक ही तेल में तली हुई चीज़ें हैं, बाहर के समोसे, कचौरी हैं, वो जो चीज़ हमको अवॉइड करनी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं मैदा है, जो रिफाइंड है बिल्कुल, जिसमें बहुत ज़्यादा इसका शुगर

0: कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैदे की चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें बहुत एक्सेसिव शुगर है, प्लस तेल, तेल हमको तो ये जो घी और तेल का, जो तेल हमारे हिसाब से ख़राब नहीं है, लेकिन तेल का मतलब ये होता है कि आप कम से कम खाएं और चेंज करते रहें।
1: तेल में कई तरह की चीज़ें राय दी जाती हैं हमको। कई बार कहते हैं कि साहब एक पर्टिकुलर तेल खाओ आप, और कई बार रिफाइंड ऑयल, कई बार अनरिफाइंड ऑयल, सब तरह के तर्क आते हैं। तेल को एक बार थोड़ा डिस्कस कर लें हम कि तेल में इतना ज़्यादा क्या है।
0: तेल में सर, तेल में करीब करीब बहुत ज़्यादा ज़्यादा परिवर्तन, क्योंकि सब में तेल में एक तो हम ये मान के चलें कि रिफाइंड जो तेल होता है उसको वो बॉईल करते हैं, तो उस बॉईल में उसकी कई सारी चीज़ें प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो हमेशा रिफाइंड तेल से जो अनरिफाइंड तेल है
1: वो ज़्यादा
0: वो
1: अच्छा
0: ज़्यादा
1: है।
0: अच्छा है, जो कि ज़्यादा जो कच्चे घाने का तेल बोलते हैं, जो अनरिफाइंड जो तेल है वो आपके रिफाइंड से थोड़ा बेटर है
1: विज्ञापन
0: हमेशा।
1: तो कहते हैं साहब रिफाइंड ही खाओ आप।
0: रिफाइंड में वो लोग कहते कहते हैं कि हमने इसमें एंटी एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स
1: हाँ,
0: मिला रखे हैं,
1: कुछ
0: लेकिन
1: ऐसे डाल सकते हैं क्या, इंजेक्शन वगैरह डाल देते होंगे
0: नहीं कुछ
1: अंदर,
0: मिला मिलाते हैं ऊपर से,
1: एंटीऑक्सीडेंट का।
0: लेकिन इन जनरल हाँ एंटीऑक्सीडेंट तो ये हमेशा प्रोसेस में आता है कि एंटीऑक्सीडेंट मिला रखा है उन्होंने, लेकिन रिफाइंड से हमेशा अनरिफाइंड तेल हमेशा बेटर होता है। दूसरी बात ये है कि हमको तेल आपको हमेशा चेंज करते करते खाइए, कम खाइए दिन भर में। प्रैक्टिकल बात यह कि आधा छोटा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच घी बहुत है, और जो अच्छे तेल हैं इसमें सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, राइस ब्रेन जिसको बोलते हैं आजकल, राइस के बाहर का जो छिलका होता है उसका जो तेल निकलता है, ओलिव ऑयल जो है, जैतून का तेल है, तो कुछ तेल अच्छे होते हैं, कुछ तेल टेस्ट में अच्छे नहीं होते, तो आप चेंज करते करते करते खाते रहिए, कभी ये कभी वो लिया, कम डोज में लीजिए।
1: कौन सा तेल ऐसा है जो आप रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे कि मत खाओ आप?
0: जो ऐसा तो सर तेल हम तो ये बोलते हैं कि आप चेंज करते करते खाइए, जो कुछ तेल ऐसे होते हैं
1: हमने सुना जैसे जो जम जाए जल्दी वो तेल, यूँ कहते हैं डॉक्टर साहब कि अवॉइड करो आप, जैसे नारियल का तेल है। अब नॉर्थ इंडिया में तो नहीं खाया जाता, लेकिन साउथ में काफ़ी खाया जाता है
0: ट्रांस
1: नारियल,
0: फैट्स बहुत ज़्यादा है उसमें, हाँ नारियल का तेल
1: तो
0: में
1: डिपॉजिट हो जाता हो लो
0: उसमें उसमें
1: टेम्परेचर पे।
0: हाँ उसमें जो जिसके हाई जो स्मोकिंग पॉइंट्स होते हैं उसका वो भी बहुत कम होता है, तो
1: हाँ
0: वो एक थोड़ा सा डिपोजिशन ज़्यादा होता है, लेकिन साउथ इंडिया में लोग खाते हैं। लेकिन हाँ जो हमारे रिकमेंडेशंस में उस तेल का थोड़ा सा उसको नीचे दिया हुआ है, जो अच्छे तेल दिए हैं वो आपको ये है सनफ्लावर वाला तेल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन है,
1: अपन तो ये माने कि सरसों का तेल सबसे अच्छा है और बहुत
0: सरसों का तेल
1: आसानी
0: अच्छा है,
1: से उपलब्ध है।
0: आसानी से उपलब्ध है, पर लोगों को टेस्ट नहीं पसंद आता, इसलिए हम कहते हैं आप चेंज करके कर, ऐसा नहीं है फिक्स मत रखिए, आप चेंज करते रहे, कभी ये राइस ब्रेन लिया, कभी आपने ओलिव लिया, कभी आपने मूंगफली का लिया, कभी सरसों का
1: सब
0: लिया,
1: टेस्ट बच्चों के अनुसार चलते हैं घरों में आजकल।
0: कम
1: खैर, एक गाना सुन लेते हैं डॉक्टर
0: जी
1: साहब।

0: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
1: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
0: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
1: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में डॉक्टर दीपक आमेटा हमारे साथ हैं। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और ये अंतिम सेगमेंट अब एक तरह से है इस प्रोग्राम का। और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है कार्डियक प्रॉब्लम्स पे तो हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9462697568। 9462697568। डॉक्टर आमेटा, हम तेल की बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक मिक्स बास्केट टाइप का बना लो और अलग अलग दिन अलग अलग तेल आप यूज करो तो बेहतर है। या फिर कुछ तेल आपने कहा कि सरसों का तेल जो हमारे यहाँ पैदाइशी हम लोग खाते भी हैं और पहले तो सर पे भी लगाते थे, अब भले ही कैसी भी स्मेल आए लेकिन पहले की जनरेशन में ये कॉमन था कि हम सर पे तेल लगा के प्राउड फील करते थे। और अब आजकल धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें ना तो खान पान में आ रही हैं, नई जनरेशन इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, उसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। ये जो चीज़ें हैं रॉ से हटना, रॉ मटेरियल से हटना, ये क्या कार्डियक प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है?
3: बिल्कुल सर, ये जो हम प्रोसेस फूड और ये बोलते हैं जो यंग जनरेशन का प्रोसेस और जंक फूड का है, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ट्रांस फैट्स और मतलब इसमें बेसिकली पूरा अनहेल्दी डाइट है। और हम आजकल की जनरेशन को ये कह भी नहीं सकते कि आप इसमें, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों को डिवाइस करना पड़ेगा जिसमें सरसों के तेल में इनके लायक चीज़ें बन रही है, इनके थोड़ा टेस्ट के हिसाब चीज़ें बन रही, ताकि वो एक्सेप्ट भी कर सकें, खा भी सकें। नए ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें,
2: थोड़ा सा बीच का सर
3: रास्ता निकालना पड़ेगा। सही बात है,
2: उसमें मिक्स कर दें कोई दूसरा ऑयल,
3: दूसरा ऑयल मिक्स कर दिया आपने, दूसरी चीज़ ऐसी मिला दी ताकि उनके चॉइस की चीज़ बन गई और उनको थोड़ा टेस्ट भी एक्सेप्ट हो गया, अच्छा भी लगा उनको।
2: कई बार अचार अचार में डाल के खाते हैं सरसों का तेल, नोटिस भी नहीं होता सर। एक डॉक्टर प्रफुल्ल माली हैं, ये कह रहे हैं कि IUC हैं, इन्होंने कहा कि नमस्कार सर, कई बार मैंने लोगों से सुना है कि BP और शुगर में सरकारी दवाइयाँ, ये आपके लिए सवाल है डॉक्टर साहब, आप सरकारी अस्पताल में हो, करें कि सरकारी दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये सिर्फ अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई है?
3: देखिए मैक्सिमम तो लोग वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से दवाएँ लेके ठीक हो ही रहे हैं, काम मतलब आप मान के चलिए कि हज़ारों पेशेंट रोज दवाई लेके जा रहे हैं एंड जब वो आते हैं तब उनका हार्ट के हम स्टेंट लगा रहे हैं, बाईपास हो रहा है, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, और शुगर के मरीज़ हैं जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है। तो यार डिपेंड कर रहा है, अगर वो सब चीज़ें ले रहे हैं उसके बाद भी सब चीज़ें कंट्रोल हैं तो दवाइयाँ, ऑल दो अभी कुछ टाइम में ये नमूना फेल हुआ, वो नमूना टेबलेट्स के फेल हुए, लेकिन आप मान के चलिए कि
2: मोर लेस भी तो आपके सरकारी उस पर ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा उसकी जो जाँच ज़्यादा होती है।
3: तो मैक्सिमम लोग, क्योंकि अगर चीज़ें अगर ख़राब होती हैं तो वो अगर सरकारी हॉस्पिटल खराब होगी लास्ट स्केल पे खराब होगी और जल्दी जल्दी पकड़ में आएगी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में हजारों का आउटडोर है, हजारों की दवाएं लोग लेके जा रहे हैं और अगर एक भी चीज गड़बड़ होती है तो वो जल्दी पकड़ में आती है, जैसे आपने देखा होगा।
2: एक चीज और है, सरकारी अस्पतालों को ब्लेम करना बहुत आसान है,
3: आसान तो बहुत है।
2: डॉक्टर आमेटा के खिलाफ अगर लंबी OPD की लाइन लगी हुई है तो उसको कोई नहीं देखता, बल्कि वे देखते हैं कि वहाँ कौन सी दवा दी जा रही है और उसका एनालिसिस ज़्यादा होता है।
3: हाँ, एनालिसिस हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का एनालिसिस ज़्यादा।
2: ये जो निःशुल्क दवा जो वितरण होता है, तो क्योंकि निःशुल्क मिल रहा है तो हमको कई बार

0: आउट होता है कि निःशुल्क भी कोई चीज़ मिल सकती है, लेकिन अप टू द मार्क मिलती हैं चीज़ें और रिजल्ट्स आ रहे हैं डॉक्टर साहब।
1: सर आप देखिए, पेशेंट आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आ रहे हैं, उनके दवाइयाँ लग रही है, उनके स्टैंड बाईपास हो रहे हैं, उनके पास उनको इन्वेस्टिगेशन फ्री में हो रही हैं, ऑन टेबल आ रही हैं, प्लस उनको जब जा रहे हैं दवाई मिल रही है,
0: चलिए ये बता
1: तो एक
0: दो
1: बहुत बड़ा
0: क्या
1: सिस्टम
0: क्या
1: है।
0: क्या है आपके यहाँ जो निःशुल्क है, या कुछ पैसा भी लगता है कहीं किसी लेवल पर?
1: राजस्थान के जो निवासी हैं उनके तो सर आपके इनकी जाँचें, इलाज, दवाइयाँ सब कुछ फ्री हैं,
0: अच्छा, बिल्कुल कुछ भी आपको,
1: कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है।
0: बस घर से खाने का इंतजाम करना आपको।
1: खाने का इंतजाम ही सर, दिन में 2 बार खाना आ रहा
0: लेकिन जो
1: है।
0: अटेंडेंट है उसको तो रखना
1: हाँ,
0: पड़ेगा,
1: अटेंडेंट को रखना
0: और
1: पड़ेगा,
0: ये छोटी सुविधा नहीं है अपने आप
1: बहुत
0: में।
1: बड़ी सुविधा सर।
0: आप
1: इसका बजट देखिए कितना बड़ा
0: कल्पना
1: बजट
0: करें
1: है।
0: कि आज से 20-25 साल पहले जो चीजें थी उससे कितनी अलग हो गई हैं चीजें।
1: इतना इतने मरीज का रोज रोल कॉल है, प्लस इतने लोगों का दवाइयाँ मैनेज, ये चीज़ें कभी कभी, जैसे कभी मुझे लगता है एक आध दिन के लिए चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो फट से किसी जगह आ जाता है कि इसमें ये नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि 365 दिन में से 350 दिन ठीक चल रहा था, 15 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी सप्लाई चेन है, कहीं के बीच में एक जगह भी कोई डिस्टर्ब हुआ तो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं।
0: आपको लगता है कोई सुधार किया जाना चाहिए? आपको अगर आपकी ही जो अस्पताल है उसमें, या ये इम्प्रेशन एक जनरेटेड है?
1: इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन तो ये हो ही गया है कि नहीं हमको, मेरा भी मानना ही है जो मुझे लोग पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मेरा मानना है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से अच्छी दवाई ले लें, मतलब आपको जैसे भी कंफर्टेबल जहाँ से भी ले लें, और बाकी दवाइयाँ जो गवर्नमेंट में आ रही है 8 पार हैं, दवाएँ चल
0: चलिए
1: रही
0: डॉक्टर
1: हैं।
0: साहब, अब प्रोग्राम को सम अप करेंगे, कुछ डू और डोंट्स कार्डियक एंगल से बता दें, और फिर क्योंकि आप खुद भी शायद साइकिलिंग वगैरह काफ़ी करते हैं, स्पोर्ट्स में लवर हैं आप।
1: तो बेसिक बातें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं, एक तो एक्सरसाइज,
0: खान पान
1: आप
0: भी थोड़ा बहुत।
1: हाँ एक्सरसाइज है वो आप, मैंने हमने बता ही दिया, आप आधा घंटा वॉक कर लें बहुत है, प्लस खान पान, खान पान में जो एक रिफाइंड चीज़ें हैं, जो रिफाइंड जो हमारे पास अनाज है उसको थोड़ा कम करें, जिसको कहते हैं हमारा मैदा है सिंपल है, उसके बदले में मल्टीग्रेन की तरफ, कभी कभी मल्टीग्रेन की तरफ
0: मोटा
1: जाया
0: अनाज
1: जाए,
0: खाना
1: मोटा
0: है।
1: अनाज जाया जाए, ट्रांस फैट्स हैं जिसको कहते हैं कि जो तेल में बनी हुई चीज़ें हैं, बार बार पकी हुई चीज़ें, उसको चेंज करके आप कम से कम की तरफ जाएँ, या तेल को एक ही बार इस्तेमाल करें, ये अच्छा तेल इस्तेमाल करें, क्वांटिटी कम करें, बंद नहीं करें। घी जैसे कि हमने अभी बात करी कि आधा चम्मच घी एक आदमी दिन भर में खाए तो भी उसके इतना नुकसान नहीं है, प्लस डाइट में आप ये मान के चलिए कि घी तेल हमने डिस्कस कर लिया, नमक, नमक आपको ये मान के चलिए कि आपको आधा चम्मच नमक दिन भर में अलाउड है, इतना आप खा सकते हैं,
0: आधा
1: आधा चम्मच नमक, इसको 2-2.5 ग्राम कह सकते हैं हम लोग पर डे।
0: कम है डॉक्टर साहब, थोड़ा तो बढ़ाओ।
1: इंडियंस में आप मान के चलिए कुछ कुछ
0: एवरेज
1: में
0: 8 है, 8 ग्राम
1: 8 ग्राम है, 10 ग्राम, 15 ग्राम तक था, जो अब 8-10 ग्राम हो गया, तो हम
0: वर्ल्ड
1: बहुत ज़्यादा
0: हेल्थ
1: गए हैं।
0: ऑर्गेनाइजेशन की
1: हाँ
0: रिपोर्ट है,
1: आठ
0: भारत में
1: ग्राम
0: महिलाओं में 8 ग्राम और पुरुषों में शायद 7 के आसपास
1: सात
0: का।
1: गया तो हम 3 ग्राम तो खा ही रहे हैं, और आधा चम्मच 2.5 ग्राम नमक अलाउड है। तो ये हमारी बात वही है कि एक जो नॉर्मल इंसान है और बीमारी के बीच का जो फेज़ है उसमें हमें नहीं नहीं पता होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल सा तरीका वो है कि हम रोकथाम की तरफ करें, हम ऐसा रहें अपने आप से शुरू से कि हम इसको नियम बना ले सको, कहते हैं ना योग हमारा एक जीवन का एक नियम होना चाहिए कि हम रोज़ कर रहे हैं, दूसरे खान पान का एक नियम होना चाहिए हम रोज़ कर रहे हैं,
0: स्ट्रेस,
1: दूसरी बात यह है कि हमको एक मानसिक तनाव जो आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो निकलते हैं वो भी बॉडी के सिस्टम एक डिजीज़ है वो भी एक प्रकार की, तो अनिद्रा और स्ट्रेस मैं मानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है युवा पीढ़ी के लिए, स्ट्रेस और युवा, क्योंकि ये जो हमारी जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो है, हमारी डाइट तो है ही, हमारा डाइट जो अनकंडीशनल ख़राब हो रहा है डाइट में, प्लस स्ट्रेस और चीज़ें बढ़ रही हैं, वो हमारी नई पीढ़ी के जो बीमारी बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है।
0: चलिए डॉक्टर दीपक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बातें अभी शायद शुरू ही हुई हैं और समय अब समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद इंद्रजीत, मीनाक्षी धन्यवाद।
2: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
3: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं, एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं, एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GBH जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल, भेड़वास, उदयपुर।

0: मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: तुम दिल की
5: FM रेडियो लेक सिटी पर अब समय है हिट परेड का और आप हैं एक बार फिर मीनाक्षी के साथ। और आज हिट परेड में अभिजीत भट्टाचार्य के गाए हिट गीत आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: ओ तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: तो मैंने इसे

उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चराग जलते हैं, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। उर्दू गजल के शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र अब नहीं रहे। त्याग और बलिदान के पर्व को उन्होंने फानी दुनिया को अलविदा कहा। उर्दू अदब की रूह में समाये डॉक्टर बशीर बद्र तकरीबन 14 बरस से डिमेंशिया की गिरफ्त में थे, जिससे उनकी याददाश्त कमजोर होती चली गई, मगर उनके शेर आज भी दिलों में धड़कते हैं।

श्रोताओं 10:45 हो गए हैं और लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम के लिए 9462697568 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फरमाइश भेजने का समय शुरू हो गया है। 11 बजे से आपकी पसंद के गीत पहुंचाएंगे आप तक इस कार्यक्रम में, पर ध्यान रहे व्हाट्सएप आप 11 बजे तक ही कर सकते हैं। एक अनुरोध जो हम हर बार करते हैं आज भी दोहराएंगे, प्लीज बहुत ज्यादा नाम एक साथ ना भेजें, मैसेज संक्षिप्त रूप में भेजने का प्रयास करें। कार्यक्रम की रोचकता और सुंदरता बनाए रखने में आपसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। फिलहाल हिट परेड में पहुंचाते हैं अगला गीत बागी फिल्म से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

प्रीतम के संगीत से सजा गैंगस्टर फिल्म का गीत। अभिजीत के साथ आवाज सुनिधि चौहान की।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: और हिट परेड का अंतिम गीत आवाज अभिजीत भट्टाचार्य की ही है और ये फिल्म है दस्तूर।

शब्बीर कुमार के गाए कुली फिल्म के इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, निदा इरम कलीम, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। इन्हीं के साथ हैं कुतुबपुरा से अशरफ खान।

लिसनर्स चॉइस में अगला गीत प्रतिज्ञा फिल्म से, जिसे सुनना चाहा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, परस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखे लाल।

अगले श्रोताओं के नाम शामिल करें सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक जी और शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, चंद्रपुर महाराष्ट्र से मधुकर येले, कंचन निलेश, बुद्ध विहार बावली से मंगेश पानबुड़े, भानुदास और टेकड़े, वाड़ी नागपुर से सुशील येले, मनीषा और धन्यवाद के साथ इनका

का संदेश हमने शामिल कर लिया है। और इसके बाद यह है बोरवाड़ी उदयपुर से बसंतलाल, चंदा, जागृति, सौम्या और सुदीक्षा का संदेश। अगला व्हाट्सएप है हनुमानगढ़ जंक्शन से जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शुभा नायक और इनका पूरा डागला परिवार। जी कृष्ण आर्ट देवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत, रजत और इनका नन्ना टप्पू गोपी, ये इन्होंने संदेश भेजा है। ये ब्रिज मोहन शर्मा, शारदा शर्मा, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य और श्री जी विहार खेड़ा सर्कल सेक्टर 14 के ये सदस्य हैं। ये है सोनू पिंकी और किसी भी गीत में नाम शामिल करने कर लिया गया है। और भोपाल राणा कॉलोनी से इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। इसके बाद अगला ये संदेश मिला है उदयपुर धानमंडी से परमानंद कुमावत, मंजू कुमावत, विकास, मोनिका, लक्ष का और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। हर संघ का नाम बार बार हर मैसेज के साथ। बैंगलोर से निखिलेश, दीपिका, रिधान कुमावत हैं और बैंगलोर से ही हैं वर्षा, सुरेंद्र, लावण्या कुमावत। अगला संदेश ये है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार का। और ये अगला संदेश रामपुरा से सुधा रानी और वैष्णव का है। बिल्कुल दो नाम इन्होंने लिख के भेजे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट संदेश भेजने के लिए आपका धन्यवाद। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब सामर राही, मेहराज जहां, ये आज़ाद नगर लक्सा हरिद्वार के श्रोता हैं। इसके बाद ये अगला संदेश है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का। लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी कोमल, खिरादीवाड़ा, रंगीला, भैरू चौक से व्हाट्सएप कर रहे हैं। विनोद जी कुमावत, नीलम, गजेंद्र जी, जया, कुशल, कोमल, हिरण मगरी सेक्टर 5 से। और इन्हीं के साथ हैं शिवलाल जी कुमावत, छगन देवी, राजकुमार, मोहित, चारभुजा मंदिर खिरादीवाड़ा से ही। किंजू कुमावत, शौर्य कार्तिक, इनके दादाजी दादी जी सेक्टर 5 उदय पार्क से। और परमानंद कुमावत, लाल सिंह जी, ये हैं लाल जी, इनके सभी साथी धानमंडी उदयपुर के ये श्रोता हैं।

अगली फरमाइश ये सुप्रभात के साथ गजल फिल्म का गीत सुनने की है, रंग और नूर की बारात। तरुणा झमक पूर्विया, सोहन देवी पूर्विया, पूरव और लक्ष्मी लक्ष्यराज हाथीपोल उदयपुर के श्रोता हैं।

चलिए अगले नामों की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं सलाम, अकीला, हिना, अर्श, पिंकी, असरार और भाविका, और इनका पूरा सलोदा परिवार है सरदारपुरा उदयपुर से। इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। सलमा अटारी, खोजिमा सुगरा अटारी, संजीदा तबस्सुम, अलीशा, ये खारोल कॉलोनी से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। अगला संदेश ये छत्तीसगढ़ से हमें मिला है, दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश का। और इसके बाद ये है रामचंद्र पवार, तुलसीराम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश माहेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया, मित्रगण हैं इनके, ये उदयपुर से ही हमें संदेश भेज रहे हैं। और ये गणेश नगर से हैं, महावीर जैन चित्तौड़ा। और अगला व्हाट्सएप पहुंचा है ब्रिजेश शर्मा, हीरा लाल शर्मा, मुकेश शर्मा का, साथ में है दिलमणि श्री कृष्णा, और ये सीमरी ज़िला बक्सर बिहार के श्रोता हैं। और अगला गीत सुनवा रहे हैं हम आपको रज़िया सुल्तान फिल्म से, सुनना चाहा है हज़ारेश्वर कॉलोनी से अमृत सेन, और इनके साथ लेक सिटी रेडियो सता संघ के सदस्य हैं।

ये प्रोग्राम है लिसनर्स चॉइस और आपके जो संदेश हम तक पहुंच रहे हैं हम शामिल कर रहे हैं। ये अगला व्हाट्सएप आया है हकीम भाई मोहनलाल जी, प्रदीपक टेलर, नीलेश गहलोत का और इनके दादा मालदा स्ट्रीट उदयपुर के ये श्रोता हैं। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ से कबीर रेडियो श्रोता संघ के सदस्यों ने संदेश भेजा है। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर इनके साथ में। इसके बाद ये संदेश हफीजा मिठाई नफीसा और ये है फक्रू यूनुस असगर, सकीना पटवा, जाकिया गोरिया, ये बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर के श्रोता हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह का पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से व्हाट्सएप आया है। छत्तीसगढ़ से ये संदेश है गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी का। इसके बाद ये है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, राजेंद्र, प्रहलाद, सूरज, कुशल वर्मा, छत्तीसगढ़ के श्रोता। अगला संदेश ये है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल का। नमस्ते के साथ इनका संदेश। चलिए दोस्ती फिल्म का गीत सुनवाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और इस गीत के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। चलिए नामों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये अगला व्हाट्सएप मिला है राजकुमारी और विपिन गोस्वामी का, चंदनबाड़ी प्रेमनगर से। मनीष टेलर, बाबूलाल धाबाई सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर से। अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर हिरण मगरी सेक्टर 5 के श्रोता हैं। इन्हीं के साथ है दुष्यंत जिज्ञासा 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता। और आगे बढ़ते हैं ये अगली फरमाइश के साथ। ये नाम है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुबिहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से। प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल का संदेश शामिल कर लिया है। और ये है विजय सिंह, दुल्हे सिंह, सागर सिंह, कला ममता, नेहा राठौड़, मेहता जी की खिड़की, मालदा स्ट्रीट उदयपुर के ये श्रोता हैं। इसके बाद ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, छिपा, कपिल, ईशान, पूजा, परिहार, और इनका संदेश हमने शामिल कर लिया है। इसके बाद ये हैं विजय व्यास, उषा, जयेश, विनीत, पूनम, आशीर्वाद नगर, यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर के श्रोता। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का संदेश भी हमने शामिल कर लिया है। और इसके बाद ये हैं अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। अगले ये व्हाट्सएप भेजने वाले संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव हैं। और अब कार्यक्रम में अगला गीत चलते चलते फिल्म से सुनना चाहते हैं अशोक प्रताप नगर उदयपुर से।

ये सकारात्मक गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, जो गीतकार योगेश की कलम से निकला, बिल्कुल आज उनकी याद का दिन है। और ये गीत बहुत ही ख़ास ज़िंदगी की लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। सादगी और भाषा की सरलता उनके गीतों में देखने को मिलती है। और अब लिसनर्स चॉइस में आगे के श्रोताओं के नाम लें तो भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, वनीता वर्मा, रुद्र का संदेश हमें मिल गया है, डॉक्टर रमेश कुमार जारोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुट्टू मलोट से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। अगला ये संदेश है अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति, रितु, संकल्प, कृषि और वेदा सिंह का, जबलपुर मध्य प्रदेश के ये श्रोता है। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा ये हैं दिल्ली के हमारे श्रोता। और इन्हीं के साथ में हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधाना खुराना, हरजिंदर छिंदा और ये जसवीर, जस्सी, सीता और गीता नथाना पंजाब से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। अगला संदेश ये शामिल कर रहे हैं हम तुलसी राम, गीता, डॉक्टर मनीषा, भुवनेश और इनका पूरा खत्री परिवार कल्लड़वास सांची ग्रुप से हमें संदेश भेज रहा है। जयपुर से ये हैं राजेंद्र, अरुणा वैद्य, मुंबई से विनोद, रंजना जी, राजावत, हरिगढ़ से मनोज, मनीषा, संभाजी नगर से संजय, सपना जैन, उदयपुर से राजकुमार, रेणु जैन। इन्होंने देखिए कई जगहों के नाम लिखे हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट और स्वीट संदेश बनाकर भेजा है, धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम में आगे

सकते हैं, कुछ और नाम ही शामिल कर लेते हैं। ये है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया का। अगला व्हाट्सएप ये मस्किन, वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता ये दिल्ली से हैं। और इसके बाद जो ये संदेश आया है, विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग, राहुल शर्मा, अक्षय, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता, वशिता, भवर, गौतम और ये राम द्वारा चौक, धौली बावड़ी, उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। किशन सोलंकी, कविता, हेमंत, ज्योति, कार्तिक, आनंद विहार, टेकरी, उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या भाई ये हैं, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयवाल यादव ये अनारकली बाजार जगराव से संदेश भेज रहे हैं। इसके बाद घम्मा खम्मा घणी मीनाक्षी जी मैडम, ये आप इस तरीके से संदेश भेज रहे हैं नमस्ते के साथ। ये

नाहटा उमंग, राहुल शर्मा, अक्षय, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वशिता, भवर गौतम और ये राम द्वारा चौक धौली बावड़ी उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। किशन सोलंकी, कविता, हेमंत, ज्योति, कार्तिक, आनंद विहार, टेकरी उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या भाई ये हैं, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयवाल यादव, ये अनारकली बाजार जगराव से संदेश भेज रहे हैं। इसके बाद घम्मा खम्मा घणी मीनाक्षी जी मैडम, ये आप इस तरीके से संदेश भेजे हैं नमस्ते के साथ। ये हैं उदयपुर रामदेव जी मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी, किरण ललित जी, अजय भावना, हेमलता, विनायक जी और ये हैं यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा। आप नामों के बीच में कॉमा लगाएं तो पढ़ने में आसानी रहेगी। और इसके बाद इन्हीं के साथ कुछ और नाम इन्होंने लिखे हैं, अमृतलाल जी, रेणु, रविशंकर, हनुमान जी मंदिर से, अशोक जी, सीता देवी, सूरज और तासु हेनू, ये सेक्टर 7 से हैं, शांति देवी, मनोज, सुनील जी और ये इनका पूरा परिवार है। और इसके अलावा ओल्ड सिटी उदयपुर से हैं मन्नू जी पेंटर और साहब, सुंदर देवी, किरण, अज्जू, हेमा, याची और सिद्धि, नीलू, छोटू, चलिए इनका संदेश शामिल कर लिया है।

नौ से हरीश जिंगर, मंजू जिंगर, जय, माधवी जिंगर छुट्टी छुटकी, और यह है किट्टू, और इन्हें कर्म फिल्म का गीत सुनना है। बिल्कुल अगला गीत हम वही सुनवाएंगे आपको, और इसके अलावा कुछ और नाम भी कार्यक्रम में जो आए हैं वो शामिल कर लेते हैं। यह है हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना काजल, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सरणी, कोलकाता पश्चिम बंगाल के श्रोता हैं। इसके बाद ये संदेश है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का। ये नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से व्हाट्सएप कर रहे हैं। बड़ी सादड़ी से ये संदेश मिला है इनकी टीम JRDP, जगदीश, पुष्पा चेलर, रामचंद्र, लीला देवी पवार, दिलीप कुमार, जमुना चौहान, प्रकाश चंद्र, विद्या कनेरिया का। और इसके बाद ये संदेश है मंजू सेन, अशोकजीत सेन का, मालदा स्ट्रीट से। चलिए पहले कर्म फिल्म का गीत आप तक पहुँचाते हैं।

ये प्रोग्राम है लिसनर्स चॉइस और आपके संदेश जो हम तक पहुंच चुके थे 11 बजे तक हम शामिल कर रहे हैं। और अगला व्हाट्सएप है रोशनलाल सालवी, राजकुमारी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हैथविक, इनका पूरा सालवी परिवार, ये इन्हें प्रोग्राम अच्छा भी लग रहा है। अगली ये फरमाइश सेक्टर

ले आई है और इसे सुनना चाहते हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती और लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से ये हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनका पूरा परिवार। और अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए, ये लिखा है सुरेंद्र सोलंकी ने। देखिए हमारे सभी श्रोता जो हैं उनकी फरमाइश इतनी बेहतरीन है कि हर गाना आपको पसंद आएगा। इसके बाद ये है संदीप मकड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर के श्रोता। और अगला ये संदेश मिला है नीरज द्वेश, प्रेम शंकर, दिव्यांश, खारोल कॉलोनी, फतेहपुरा से। और ये वही गीत जो हर लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम में शायद पूरी गर्मी तक आता रहेगा। जी हाँ, पति पत्नी वो का ठंडे ठंडे पानी से, इस गीत को हर लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम में श्रोता सुनना चाहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं ये किनका संदेश पहुंचा है। ये परमानंद जी, भूपेंद्र जी मल्लारा हैं, कमल कुमार सुहाल का, मोहन कुमार जी कुमावत, जेपी रेडियो संघ और उदयलाल जी ट्रेलर उदयपुर के श्रोता हैं। इसके अलावा मुमताज़, राजेश खन्ना पर फिल्माया गीत भी सुनना चाहते हैं। और हितेश सुहाल का उदयपुर आनंद विहार से, सेक्टर 4 से, इन्होंने हर गीत के, हर नामों के साथ जो है अलग गीत की फरमाइश की है। आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? आप उदयपुर के श्रोता हैं और आपको समझना चाहिए कि एक ही गीत की आप फरमाइश कीजिए। ये है इनके साथ में कमल सुहाल का, श्रीमती कौशल्या, श्याम जी मठपाल, चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा, माया जी और शारदा जी हैं, शांतिलाल जी, बाऊजी, धारावती बहना इनकी, और इस तरीके से रिलेशन भी ना लिखा करिए। मोहन लाल जी, कमल कुमार जी, सबके नाम ले लिए हैं शायद, और इतने सारे नाम और इस तरीके के मैसेज में यही कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद ये है अब्दुल समद, फिरदौस बानो, मोहम्मद असलम, मोहम्मद रजा, ये रहमान कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं। और इन्हीं के साथ हैं मोहम्मद दृश्य, रुखसाना बानो, मुस्तफ़ा राजा। तो ये अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम खिलौना।

लिसनर्स चॉइस में जो अगले दो गीत आप सुनेंगे, एक होगा तराना फिल्म से, एक तवायफ फिल्म से। तो पहले आपको पसंदकर्ताओं के नाम बता देते हैं जिन्होंने फरमाइश की है। भरत जायसवाल, सोनी गरासिया और गांव मंडवा डूंगरपुर राजस्थान के ये श्रोता हैं। और अगले ये श्रोता हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। और अब इस इन्हीं गीतों में कुछ और नाम शामिल कर लेते हैं। ये है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष, ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा के भी व्हाट्सएप हमने शामिल कर लिया है। और ये हैं श्रीनाथ मार्ग खेरादीवाड़ा से सत्यनारायण कुरिल, पुष्पलता कुरिल, मिताली मिनाली, रोहन कुरिल। और इसके बाद अगला व्हाट्सएप मुकेश बड़ारिया, मामाजी लालाराम जाटोलिया, दीप टेलर सेंटर एरिया उदयपुर के श्रोता हैं। रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान का बिलाड़ा राजस्थान से संदेश आया है। ये है सेक्टर 5 शांतिनगर से घनश्याम लाल बड़ारिया, नानी बड़ारिया, नंदनी, पल्लवी, कुसुम और बाबू भैया। इसके बाद ये रामचंद्र टेलर, लीला देवी, कल्पेश पवार, पिंकी, मनस्वी, चैतन्य, कार्तिकेय, प्रभात नगर, हिरणमगरी सेक्टर 5 के श्रोता हैं। साइमा नवाज, मोहम्मद यासीन, अनजान, हसन नवाज, बाबू अहमद, अहद, मिफ्रा नवाज और यह है बेबी चाहत का। शुक्रिया के साथ झारखंड से ये संदेश हम तक पहुंचा है। खमा घड़ी के साथ तुलसी रामजी चौहान, सूरजपोल से गजेंद्र सिंह, सारंग देवोद, भव्य राज सिंह, बुरकिया खुर्द, बोहेड़ा से भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह, बोहेड़ा चौहानों की हवेली से गोपाल चौहान, ठोकर चौराहा से मनोज बागड़ी, एडवोकेट महेश बागड़ी, आदर्श नगर पहाड़ा से और विकास सिंह जयपुर से। और इन्हीं के साथ हैं ये कुशाल बागड़ी, मन बागड़ी सेक्टर 14 से, ललित सिंह चौहान कांकरवा से हैं और हेमेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी गोकुलपुरा आयड़ से, उमेश दाहिमा, हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयड़ कलालबाटी से हैं और इंदर सिंह राजावत सज्जनगढ़ रोड से हैं, दीपेश चौहान हाथीपोल से। और भी नाम इन्होंने लिख दिए हैं, इतने सारे नाम कृपया करके ना भेजें। तराना फिल्म से ये गीत।

0: आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
9: RBI कहता है
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज। नाम शामिल करते रहते हैं, लाला भाई निमावत प्रतापनगर से, गोपाल भाई निमावत सुखेर से हैं, राजू भाई खींची, अंची निमावत, तनिष्क चौहान सूरजपुर

रति अग्नोत्री पर फिल्माया बेहतरीन गीत। और अब आगे श्रोताओं के नाम लें। देखिए 10:57 तक ही हम पहुंचे हैं। कई बार जो शॉर्ट मैसेज भेजते हैं उनके नाम नहीं हम ले पाते और बड़े बड़े मैसेजेस आ जाते हैं। ये है भीलू राणा कॉलोनी उदयपुर से सोनू और पिंकी। कितना शॉर्ट इन्होंने मैसेज लिखा है, धन्यवाद आपका। और ये है कुमारवाड़ा से ललित कुमार प्रजापत, अशोक कुमार और देव जाकिर हुसैन, इन्होंने भी बहुत ही छोटा मैसेज किया है। छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू का ये संदेश है। इसके अलावा ये है नागचुन रोड से संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक जावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर जावर, राजेंद्र कटारे। और ये है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का श्री गंगानगर से व्हाट्सएप। अगला ये देखिए एक लंबा सा मैसेज फिर आ गया है। और आप छोटा लिखने लग गए थे, फिर पता नहीं क्यों आपने चित्तौड़ा साहब लंबे लंबे मैसेज करने शुरू कर दिए हैं। गौतम प्रकाश गांधी, मंजू गांधी, रिदांश गांधी केशव नगर से, और ये हैं सुरेश मेघवाल, इसके बाद धन्य कुमार चित्तौड़ा, नवनीत कुमार, मनीष कुमार, डॉक्टर इकबाल शका, और ये हैं शैलेंद्र पालीवाल। हर नाम के साथ इन्होंने उनका व्यवसाय और डेजिग्नेशन लिखी, ऐसे मैसेज ना करें। ये हैं पांडर कड़वा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री और बला शाह से सूरज लोंडे, प्राची एकलव्य का। होटल फिल्म का गीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। सभी श्रोताओं का शुक्रिया, आभार कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए। दीजिए इजाजत मीनाक्षी को, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम रेडियो लेक सिटी के साथ। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को एफएम जुड़ेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण के साथ और यहां से आप सुनेंगे यादों की महफिल 12:05 पर। और अभी सुनिए हिंदी में समाचार।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा।

0: का। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं, और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कैसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: कुमार सानू अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है। ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं और आप सुनना चाहते हैं हमारे प्रसारण यानी कि वरॉन पे 9 FM के प्रसारण, तो मोबाइल ऐप के जरिए आप कहीं भी कभी भी हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर
3: बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूँ अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत ज़रूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना? हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाओ में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन से फिल्म से

किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है, तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें जिंदगी में, हर रोज, हर सुबह सबसे पहली चीज। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीजों का और गिनते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवर है और बहुत सारी शब्द जो इनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत ज़रूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाजार की बात की गई थी, है ना। मीना बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाजार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतजार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छांव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाज़ारों की, तो दिल्ली का लाल किला, मीना बाज़ार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला, मीना बाज़ार, दिल्ली का पहाड़गंज, पालिका बाज़ार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाज़ार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाजारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाजारों के नाम अगर आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा। और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मज़ा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीज़ें खरीदने का भी मज़ा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफ़ी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफ़ी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहाँ

दुपट्टे खरीदे हैं और वहाँ पर लकड़ी के भी काफ़ी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी पहले घूमी हूँ तो काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा, मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूं इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए। जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो

बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए. जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके ये जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं. बिल्कुल. और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है. भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है. और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है. जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें. हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ. शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे. और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर. बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है. साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है. हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं. जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर. बिल्कुल बिल्कुल. और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने, और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं. साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिग्गी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है, सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार. जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ. तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें. हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं. बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं. महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं. भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं. यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं. और यहां पर काफ़ी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है. जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे. चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ.

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और खरीदारी का मज़ा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने गोल्डन टेंपल में और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान

उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं, दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहाँ पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफ़ी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीज़ें हैं वो मिलती है, कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया हमारे श्रोता लिखे कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में और आप सब ने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाज़ार है। और साथ ही साथ बाज़ारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाज़ार माया बाज़ार है लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाज़ार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाज़ार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या कम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में मजनू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप
2: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: अब तक है मेरे पास, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाज़त चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफ़र। आप बने रहें विविध भारती के संग।
6: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया, अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं। परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
0: सात अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का

0: बहिष्कार करने का आह्वान किया।
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और न ची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
0: 1905 के अंतिम चार महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वागबाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल,

0: के अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना

के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा

0: यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से एक गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, तो रेडीमेड सॉफ्ट उनकी कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं से दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हुए कारीगर हम बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे हमें?
1: जी, मेरा तो गिराक के काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मेरा दूसरे, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपको
1: मैं
0: पसंद
1: का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े से मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन नरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छी करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगे?
1: कौन से भी पेशेंट आए मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं इन्हें ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती है या?
1: नहीं दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। आप

0: की कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही। मैम
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला और हरिद्वार यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना ये सब वो जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है
1: मसूरी हो गया केदारनाथ हो गया बद्रीनाथ हो गया हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है और रेडियो सुनना।
0: अच्छा रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ।
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा, दो बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम

0: शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का बोल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
1: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है
3: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
1: आई नो ना
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: हेलो सहेली
4: सहेली अपना नाम बताइए आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें
5: मेरा नाम मोनिका साहू है मैं बोरिया खुद रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ
4: मोनिका साहू जी अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं
5: मैं BSc फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं
4: अच्छा आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे
5: हाँ कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती
4: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं
5: नहीं मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे जैसे सखी सहेली हेलो फरमाइश ये सब मैं सुनती हूँ
4: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती है या लाइव सुनती है यूट्यूब पर आप
5: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं
4: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं
5: हाँ
4: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी
5: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं
4: अच्छा और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं
5: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ समझाती हूँ
4: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं
5: नहीं मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना
4: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं
5: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है
4: क्या बात है आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी ये हमें बड़ा अच्छा लगा सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं।
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े।
0: जी
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है।
0: अच्छा।
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम?
1: हेलो सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीत की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में

0: रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
1: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
0: जी।
1: खुशी, आप क्या करती हैं?
0: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
1: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
0: हाँ।
1: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
0: जी मैम।
1: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
0: जी।
1: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है, इसमें बहुत मदद मिलती है।
0: जी मैम।
1: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
0: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
1: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
0: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से ये बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
1: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साई राम।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: मा, मा,

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा
1: जी,
0: था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी।
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी, पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से
0: जी,
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से
0: जी,
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाल दीवाना,
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी,
0: हर्षिता आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02224062 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास

करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

जमीन है, लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती। जमीन तो रहती ही है, पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा? हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है, और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम, अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए। दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था? शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में सात खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की

आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया, तुम लोग जमीन

काटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था। कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं। और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन अंगुलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: आंखें बिछा दूं, करूं क्या।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण

0: में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। दोस्तों कुछ ही पलों में आप हमारे मीडियम वेव चैनल से युवा साथी सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के बज गए हैं 5 और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मैं हूं आपकी आज की होस्ट वंदना और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतांजलि। आज बात होगी भारत के युवाओं और औद्योगिकरण की, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की, जो देश के भविष्य को नई दिशा दे रहा है। शौर्य गाथा में याद करेंगे परमवीर योद्धा लांस नायक एल्बर्ट इक्का के अदम्य साहस को।
1: मनोरंजन जगत से जानेंगे ताज़ा न्यू रिलीज और अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका से जुड़ी दिलचस्प बातें। साथ ही करेंगे चर्चा सिनेमा के दो शानदार कलाकारों पंकज कपूर और एनेट बेनिंग की।
0: इतिहास और संस्कृति के सफर में याद करेंगे पृथ्वीराज कपूर, सुनीति कुमार चटर्जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के योगदान को।
1: इसके अलावा रहेगा आज के इतिहास में खेल जगत की ताज़ा हलचल के साथ स्पोर्ट्स अपडेट और निवेशकों के लिए शेयर मार्केट की अपडेट भी।
0: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन का ये सफर अब शुरू होता है।

0: एक आइडिया जो दुनिया बदल दे, एक एक्सपेरिमेंट जो इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड करे, और एक यंग माइंड जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंडिया के फ्यूचर से, यूथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में रोल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की। दोस्तों, आज का यूथ सिर्फ जॉब्स ढूंढने वाला नहीं है, बल्कि नए आइडियाज़ क्रिएट करने वाला जनरेशन है। AI हो, रोबोटिक्स हो, ग्रीन एनर्जी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हर जगह यूथ और R&D का कंट्रीब्यूशन रैपिडली बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव सफ़र।
1: तो गीतांजलि, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है?
0: वंदना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, मतलब फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्शन सिस्टम्स की ग्रोथ। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ मशीन्स तक लिमिटेड नहीं है। आज इंडस्ट्रीज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है, जैसे AI, IoT, डेटा साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है नए आइडियाज़ बनाना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करना। सिंपल वर्ड्स में देखें तो रिसर्च पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कवर करता है और डेवलपमेंट उन्हें रियलिटी में बदलता है।

0: यानी कि गीतांजलि आज का जो यूथ है वो इनोवेटिव बन चुका है, क्योंकि उनके पास टैलेंट भी है और क्रिएटिविटी भी। आज के यूथ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स नए ऐप्स भी डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी बना रहे हैं, साथ में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज का इंडस्ट्रियल सेक्टर डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को इम्पोर्टेंस देता है।
1: आज यंग इनोवेटर्स फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर, स्मार्ट सिटीज़, हेल्थ केयर इनोवेशन पर। मतलब यूथ सिर्फ फ्यूचर का वेट नहीं कर रहा है, यूथ फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। लेकिन वंदना, हर जर्नी में चैलेंजेस भी होते हैं।
0: सही कहा, बहुत से यंग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर या फिर लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज़, पैसों की भी कमी होती है और साथ ही गाइडेंस भी नहीं मिल पाता, और वहीं एक डर रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। कभी कभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम स्मॉल टाउन से हैं, हम छोटे शहर से हैं, तो क्या हम रिसर्च या इनोवेशन में सक्सेसफुल हो भी सकते हैं? और जवाब है बिल्कुल, हो सकते हैं।
1: आज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स और इनोवेशन स्कीम्स ने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेसिबल बना दिया है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ से हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सीखने और इनोवेट करने के लिए कितने पैशनेट हो।
0: गीतांजलि, आज कंपनीज उनको प्रेफर करती है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते बल्कि नए सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप करिए, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाइए, हैकेथन्स में पार्टिसिपेट करिए, रिसर्च पेपर्स एक्सप्लोर करिए, स्टार्टअप्स कल्चर को समझिए। हर स्मॉल एफर्ट आपको फ्यूचर रेडी बनाता है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स यूथ को एनकरेज कर रहे हैं कि वो इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी स्ट्रांग होता है जब यूथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में एक्टिव रोल प्ले करें। और याद रखिए साथियों, हर सक्सेसफुल इंडस्ट्री कभी एक स्मॉल आइडिया ही थी।
1: दोस्तों याद रखिए, मशीन इंडस्ट्रीज़ को पावरफुल बनाती है, लेकिन यंग आइडियाज़ इंडस्ट्रीज़ को मीनिंगफुल बनाते हैं। आज का यूथ सिर्फ फ्यूचर का हिस्सा नहीं है, यूथ ही फ्यूचर का क्रिएटर है। हो सकता है आपका एक प्रोजेक्ट कल एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन जाए। मिलते हैं फिर एक नए इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिएटिव एंड कीप बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो गीतांजलि, आज का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं है बल्कि इनोवेशन, रिसर्च और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का चेहरा बन चुका है। चाहे बात AI टेक्नोलॉजी की हो, मैन्युफैक्चरिंग हब्स की या फिर स्टार्टअप्स की, भारत का यूथ आज हर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
3: बिल्कुल वंदना, और किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी नहीं होती बल्कि वो लोग होते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। एक तरफ युवा देश को इनोवेशन से आगे बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हमारे सैनिक अपने साहस से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
2: और जब भी वीरता, बलिदान और देशभक्ति की बात होती है तो भारतीय सेना का एक नाम, एक अमर योद्धा का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, लांस नायक एल्बर्ट इक्का। एक ऐसा जवान जिसने 1971 के युद्ध में अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के सामने डटकर मुकाबला किया और अपने अद्भुत साहस से भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए।
3: बिल्कुल वंदना, एल्बर्ट एक्का सिर्फ एक सैनिक नहीं थे बल्कि साहस, त्याग और देशभक्ति की जीवित मिसाल थे। उनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के जरी गांव में हुआ था। वे उरांव आदिवासी समुदाय से थे। बचपन से ही उन्हें जंगलों में शिकार और कठिन परिस्थितियों में रहने का अनुभव था जिसने आगे चलकर उन्हें एक बेहतरीन योद्धा बनाया।
2: कहते हैं ना, कुछ लोग जन्म से ही वीर होते हैं। एल्बर्ट इक्का जी भी उन्हीं में से थे। बचपन में हॉकी खेलने के शौकीन और बेहद फुर्तीले एल्बर्ट ने कम उम्र में ही सेना में जाने का सपना देख लिया था। 27 दिसंबर 1962 को वे भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए और बाद में उन्हें ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की 14th गार्ड्स बटालियन में भेजा गया।
3: अब कहानी पहुंचती है 1971 के भारत पाक युग तक, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में युद्ध चल रहा था। भारतीय सेना को गंगा सागर क्षेत्र पर कब्जा करना था जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। अगर यह मिशन सफल नहीं होता तो दुश्मन अगरतला और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था।
2: 3 दिसंबर 1971 की रात, चारों तरफ गोलियों की आवाज़, बारूदी सुरंगें और दुश्मन की मशीन गन से लगातार हो रही फायरिंग। भारतीय सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दुश्मन का LMG बंकर भारी नुकसान पहुंचा रहा था। तभी एल्बर्ट इक्का जी ने बिना अपनी जान की परवाह किए अकेले ही दुश्मनों की ओर दौड़ लगा दी। भारी गोलाबारी के बीच उन्होंने दुश्मन के बंकर तक पहुंचकर दो पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और मशीन गन को शांत कर दिया।
3: लेकिन दोस्तों, असली वीरता भी बाकी थी। एल्बर्ट इक्का जी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, पेट और शरीर में गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तभी एक दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट भारतीय सैनिकों पर हमला करने लगी। इतनी चोटों के बावजूद एल्बर्ट इक्का रेंगते हुए उस बंकर तक पहुंचे, ग्रेनेड फेंका और फिर अंदर घुसकर दुश्मन सैनिक को खत्म कर दिया। उस एक कदम ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया।
2: सोचिए गीतांजलि, एक जवान जो खुद जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हो फिर भी अपने साथियों की सुरक्षा के लिए लड़ता रहे, यही तो भारतीय सेना की असली पहचान है।
3: वंदना, और इसी अद्भुत वीरता और बलिदान के लिए एल्बर्ट इक्का जी को मरणोपरांत

0: का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। यह सम्मान केवल उन सैनिकों को दिया जाता है जो दुश्मन के सामने सर्वोच्च साहस और आत्म बलिदान का परिचय देते हैं। अब तक यह सम्मान बहुत कम सैनिकों को मिला है और उनमें अल्बर्ट एका का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
1: और दोस्तों, उनके सम्मान में सिर्फ मेडल ही नहीं बल्कि देश भर में कई स्मारक भी बनाए गए हैं। रांची का प्रसिद्ध अल्बर्ट एका चौक, त्रिपुरा का अल्बर्ट एका पार्क और भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट, ये सब उनकी वीरता की याद दिलाते हैं।
0: एक और खास बात, 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र पाने वाले वे पहले सैनिकों में से एक थे और पूर्वी मोर्चे के सबसे बड़े नायकों में गिने जाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ सेना की कहानी नहीं बल्कि हर भारतीय के गर्व की कहानी है।
1: और आज जब हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं तो याद रखिए, इस आज़ादी के पीछे ऐसे ही वीर जवानों का बलिदान छुपा है। अल्बर्ट एका ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि देश सबसे ऊपर होता है।
0: और शायद इसीलिए कुछ लोग दुनिया छोड़कर भी कभी नहीं जाते हैं, वे इतिहास बन जाते हैं।

0: तो गीतांजलि, आज है फ्राइडे और आज का दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का खास दिन होता है। तो चलिए जानते हैं इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या एक्साइटिंग लेकर आई है।
1: वंदना, तेलुगु फिल्म मरीचि का मिस्ट्री और ड्रामा का मिक्स लग रही है, स्टारिंग विराज अश्विन और अनुपमा परमेश्वरम। बॉलीवुड में भी द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो स्टाइल एंटरटेनमेंट लेकर आ रही है विद जैकी श्रॉफ। थ्रिलर लवर्स के लिए भी ऑप्सीज भी रिलीज हो रही है, जिसका डार्क पोस्टर ऑलरेडी बस क्रिएट कर रहा है।
0: और मलयालम सिनेमा फैंस के लिए है कोलम कोटा कंपनी। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए।

0: तो दोस्तों, भारतीय इतिहास, राजनीति, साहित्य और सिनेमा, हर क्षेत्र में कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने अपने काम से सिर्फ पहचान नहीं बनाई बल्कि एक युग रच दिया। आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही महान हस्तियों की।
1: शुरुआत करते हैं अनुप्रिया गोयनका से। अनुप्रिया गोयनका का जन्म 29 मई 1987 को कानपुर में हुआ। एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग का ड्रीम चूज किया। एक सेफ करियर ऑप्शन छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना इजी नहीं है, लेकिन यही बात उनकी जर्नी को इंस्पायरिंग बनाती है।
0: उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और एडवर्टाइजमेंट से करी। बहुत लोग डायरेक्टली फिल्म्स में आना चाहते हैं, लेकिन अनुप्रिया ने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पर बिलीव किया। उन्हें हमने कई टीवी कमर्शियल्स में भी देखा है। साथ ही उन्होंने शॉप सीजे नामक होम शॉपिंग चैनल में एंकर के रूप में काम किया।
1: उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं बॉबी जासूस, पाठशाला, ढिशुम, पद्मावत। उन्होंने अपना वेब डेब्यू स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर से किया था। उनकी कुछ फेमस वेब सीरीज हैं सेक्रेड गेम्स, क्रिमिनल जस्टिस, असुर। 2020 में टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन की सूची में गोयनका 8वें स्थान पर थी।
0: उनकी जर्नी के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस रोल्स नहीं चूज़ किए बल्कि उन्होंने मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को प्रेफरेंस दिया। और आज के यूथ के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि डोंट जस्ट चेज पॉपुलैरिटी, चेज इक्वालिटी।
1: तो दोस्तों, अगर आप एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन या मीडिया फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो याद रखिए, टैलेंट मैटर करता है, बैकग्राउंड नहीं। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब कॉन्टेंट, पॉडकास्ट, थिएटर, शॉर्ट फिल्म, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं।
0: तो दोस्तों, अनुप्रिया की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहना।

0: चाहिए और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
1: शुरुआत करते हैं भारतीय अभिनय की उस आवाज़ से जिसे लोग एक्टिंग स्कूल कहते हैं, पंकज कपूर। थिएटर से लेकर फिल्मों और टीवी तक उन्होंने हर किरदार को इतनी गहराई दी कि वो हमेशा याद रहेगा। ऑफिस ऑफिस के मुसद्दी लाल हो, मकबूल के जहांगीर खान हो, या जेबान संभाल के मोहन भारती, या एक डॉक्टर की मौत का संघर्ष करता डॉक्टर, हर किरदार में उनका अभिनय अलग दिखता है।
0: बिल्कुल, पंकज कपूर जी के अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं, राख के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक डॉक्टर की मौत के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड और मकबूल के लिए फिर से नेशनल अवार्ड। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला है।
1: उनकी खासियत यही रही कि उन्होंने कभी लाउड एक्टिंग नहीं की, बल्कि छोटी छोटी एक्सप्रेशन से डायलॉग डिलीवरी से किरदार में जान डाल दी। आज भी एक्टिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स उनके परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं।
0: और अब बात करते हैं एक ऐसी हॉलीवुड अभिनेत्री की जिन्हें एलिगेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, एनेट बेनिंग।
1: अमेरिकन सिनेमा में एनेट बेनिंग का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अमेरिकन ब्यूटी, बीइंग जूलिया, द किड्स आर ऑल राइट और न्याट जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत है इमोशनल डेप्थ। वो किरदार को सिर्फ निभाती नहीं है, जीती हैं।
0: और अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें कई बार एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा उन्हें बाफ्टा नॉमिनेशंस और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी जीते। हॉलीवुड में उन्हें वर्सेटाइल और ग्रेसफुल एक्ट्रेस में गिना जाता है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब बात करते हैं उस नेता की जिन्हें भारत के किसानों की आवाज कहा गया, चौधरी चरण सिंह।
4: दोस्तों, चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो उस भारत की सोच थे जो खेतों में बसता है। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो गांव और किसान मजबूत होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई।
3: उनकी राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत की समस्याओं के समाधान के लिए जानी गई। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करने में अहम भूमिका निभाई और किसानों के अधिकारों के लिए कई बड़े फैसले लिए। इसी वजह से उन्हें चैंपियन ऑफ इंडिया पीसेंट्री भी कहा जाता है।
4: साल 1979 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी सादगी, ईमानदारी और ग्रामीण विकास को लेकर उनकी सोच आज भी याद की जाती है। चौधरी चरण सिंह जी एक शानदार लेखक भी थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और ग्रामीण व्यवस्था पर कई किताबें लिखी जिनमें किसान केंद्रित विकास मॉडल की बात की गई।
3: वंदना, और अब एक बड़ी बात, भारत सरकार ने वर्ष 2024 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि भारत के किसान वर्ग की उस आवाज़ को दिया गया जिसने दशकों तक गांव की बात देश के सामने रखी।
4: तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हमें ये सिखाते हैं कि असली नेतृत्व वही है जो देश के सबसे आम इंसान की तकलीफ को समझे।
3: अब चलते भारतीय सिनेमा की जड़ों की तरफ। एक ऐसा नाम जिसके बिना बॉलीवुड का इतिहास अधूरा, पृथ्वीराज कपूर।
4: पृथ्वीराज कपूर सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे भारतीय थिएटर और हिंदी सिनेमा के फाउंडेशन पिलर्स में से थे। उन्होंने 1944 में पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की जिसने पूरे देश में थिएटर संस्कृति की नई पहचान बनाई।
3: फिल्म मुगले आजम में अकबर का उनका किरदार आज भी लेजेंडरी माना जाता है। उनकी भारी आवाज़, शाही पर्सनैलिटी और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें अलग पहचान दी।
4: देश ने भी उनके योगदान को बड़ा सम्मान दिया। उन्हें 1969 में पद्म भूषण मिला और 1971 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
3: और शायद यही वजह है कि कपूर फैमिली आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फैमिलीज में गिनी जाती है।
4: तो चलिए उनकी याद में एक गीत को सुनते हैं।

0: दोस्तों, भारत की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति या इतिहास से नहीं बनती, बल्कि उन भाषाओं से बनती है जिनमें इस देश की आत्मा बसती है। अब बात ज्ञान और भाषा के क्षेत्र की ओर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान विद्वान की जिन्होंने भारतीय भाषाओं को नई पहचान दी।
1: जी हाँ वंदना, हम बात कर रहे हैं महान भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी की, एक ऐसे स्कॉलर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति को समझने और दुनिया तक पहुँचाने में लगा दी।
0: 1890 में पश्चिम बंगाल में जन्मे सुनीति कुमार चटर्जी, वे बचपन से ही बेहद मेधावी थे। उन्हें भाषाओं से इतना प्रेम था कि उन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, ग्रीक और कई विदेशी भाषाओं का गहरा अध्ययन किया,
1: और यही कारण था कि आगे चलकर वे भारत के सबसे बड़े लिंग्विस्ट यानी भाषाविदों में गिने जाने लगे। उन्होंने भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति, उनके विकास और आपसी संबंधों पर ऐतिहासिक शोध किया।
0: दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज आज भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में लैंडमार्क मानी जाती है। उनका मानना था कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि किसी सभ्यता की आत्मा होती है,
1: और यही सोच उन्हें बाकी विद्वानों से अलग बनाती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की एकता को भाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। वो मानते थे कि भारत की विविध भाषाएं अलग अलग होते हुए भी एक साझा संस्कृति धारा से जुड़ी हुई है।
0: उनकी विद्वता का सम्मान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ। कई इंटरनेशनल विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने उनके शोध को बेहद महत्वपूर्ण माना,
1: और उनकी महान सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण और बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
0: इतना ही नहीं, वे साहित्य अकादमी से भी जुड़े रहे और भारतीय साहित्य तथा भाषाओं के विकास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
1: तो दोस्तों, सुनीति कुमार चटर्जी हमें ये सिखाते हैं कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो इतिहास भी होती है, संस्कृति भी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित विरासत भी है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। IPL 2026 का दूसरा क्वालिफायर आज शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल गुजरात टाइटंस के बीच महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल खेलेगी।
4: उसी के साथ ले चलते हैं आपको आज के इतिहास के पन्नों की ओर। आज ही के दिन सन 1865 में रामानंद चटर्जी का जन्म हुआ था। उन्हें इंडियन जर्नलिज्म का फादर माना जाता है।
3: आज के दिन 1906 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ, एक प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार जिन्होंने ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किया।
4: 1892 में आज के दिन अल्फोंसिना स्टोनी अर्जेंटीना के

0: एक पोएट इनका जन्म हुआ था।
1: 1933 में अब्दुल रहमान सऊदी अरेबियन नॉवलिस्ट का जन्म हुआ।
0: साथ ही 1937 को हिबारी मिसोरा जो कि एक जापानीज सिंगर है उनका भी जन्म हुआ था।
1: आज के दिन 1953 में एडमंड हिलेरी एंड तेंजिन नॉर्वे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने।
0: वहीं 1970 को यूनाइटेड रशिया ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था।
1: 2010 में भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के लुआंग में स्थित फर्स्ट सेंचुरी के श्वेतावश व्हाइट हॉर्स मंदिर का इनॉग्रेशन किया।
0: और अब जानकारी लेते हैं शेयर मार्केट की, तो निफ्टी 50 आज 23,547.75 पॉइंट्स पर बंद हुआ -1.50% की घटत के साथ। वहीं बीएसई आज 74,775.74 पॉइंट्स पर बंद हुआ -1.44% की घटत के साथ। साथ ही एक डॉलर की कीमत आज 94.90 रुपए देखने को मिली। तो साथियों ये थी आज की जानकारी, और इसी के साथ आज की जानकारी, आज की प्रेरणा और आज के शो को एंड करने का वक्त आ गया है। मैं थी वंदना और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थी गीतांजलि।

0: युवाणी, ये कार्यक्रम अभी आप सभी श्रोताओं ने सुना हमारे मीडियम वेव चैनल से FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार। थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा

0: दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.9 MHz पर यह विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब हम आपकी शाम को सजाते हैं कार्यक्रम रूबरू के साथ। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डाक विभाग के आधुनिकीकरण और नवाचार विषय पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस अक्षय भानुदास गाड़ीकर से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम रूबरू और रूबरू में आज हमारे साथ हैं अक्षय भानुदास गाड़ीकर। आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस उदयपुर डिवीजन से हैं। तो सबसे पहले सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार मेरी तरफ से।
2: बात की जाए जो वर्तमान समय में हमारा जो डाक विभाग है, क्योंकि डाक विभाग का एक लंबा एक ऐसा विभाग है जो सालों से या यूं कहें दशकों से हमारी जनसंख्या के बीच में सेवाएं दे रहा है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी पत्री मनी ऑर्डर से लेकर एक बेसिक चीज़ें, जब ये तकनीक का ज़माना नहीं था तब से लेके अब तक अनवरत वो सेवारत है। और अगर आप वर्तमान संदर्भ में उसकी बात करें तो डाक विभाग इस प्रकार तकनीकी रूप में किस तरह से आधुनिक हो रहा है, या यूं कहें किस तरह से इसमें डिजिटल क्रांति आई है।
3: डाक विभाग को अक्सर लोग एक लेगेसी डिपार्टमेंट के तौर पर देखते हैं, जो पुराने समय से चिट्ठियाँ बांटने के काम करता था। तो एक जो आइडिया है लोगों की वो है कि ये एक ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि डाक विभाग तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पे इसकी हर सेवाएं में आधुनिकीकरण आप देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बुकिंग करने के बाद आपका ट्रैकिंग वाला ऑप्शन आप ऑनलाइन देख सकते हैं। जो पोस्टमैन आपकी चिट्ठी आप तक ला रहा है उसकी लाइव लोकेशन भी आप एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के जो आर्टिकल्स जो आप खरीदते हैं, ई कॉमर्स का आप उपयोग करते हैं, तो Tier 2 और Tier 3 क्षेत्रों में डाक विभाग ही इन पार्सल्स को आप तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, जैसे कि सुकन्या सेविंग, RD बचत योजनाएं, इसमें भी ऑप्शन है आपका ऐप के माध्यम से जमा और निकासी करने का। इसमें ई बैंकिंग की भी सेवाएं उपलब्ध है। तो इसी यही कुछ उदाहरण है जिसमें आधुनिकीकरण इस विभाग में हो रहा है।
2: अच्छा सर, आपने जितनी भी सुविधाएं और जो आपने सेवाएं बताई उस पर बारी बारी से एक बार हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है वर्तमान समय में, हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी जोर दिया गया है और डिजिटल इंडिया जैसी मुहिम को सभी विभागों में और एक आम नागरिकों के लिए बढ़ावा दिया है। तो डिजिटल इंडिया अभियान में डाक विभाग की अगर हम भूमिका देखें तो विगत कई वर्षों में कितनी बड़ी है भूमिका।
3: हाल फिलहाल में

0: में डिजिटल इंडिया का काफ़ी बड़ा एक शेयर डाक विभाग में आया है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब भी आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाते थे तो चेंज का बड़ा प्रॉब्लम होता था, छुट्टे पैसों का बड़ा प्रॉब्लम होता था, जिसमें ग्राहकों को बड़ी असुविधा होती थी। अभी QR कोड के माध्यम से पेमेंट्स लिए जा रहे हैं और हमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आपको हर काउंटर में पेमेंट्स का एक्सेप्टेंस 100% डिजिटल करना है। यही नहीं, जो कैश ऑन डिलीवरी माध्यम से जो पार्सल वितरित होता है उसका भी पेमेंट अब पोस्टमैन QR कोड के माध्यम से डिजिटल पेमेंट के स्वरूप में अब लेते हैं। ये तो हुई पेमेंट्स की बात। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डिजिटल माध्यम से आप अपने पार्सल की या आर्टिकल की बुकिंग भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके सेल्फ बुकिंग ऑप्शन का उपयोग करके आप अपने एड्रेस दे के अगर बुकिंग करेंगे तो पोस्टमैन खुद आपके घर पे वो आर्टिकल पिकअप करने आएगा। इसके अलावा सेल्फ बुकिंग कायोस्क नाम की एक चीज़ भी आ चुकी है, जिसका मतलब एक ATM मशीन की तरह आप वहाँ पे जाके आपका डेस्टिनेशन एड्रेस डाल के पिन कोड वगैरह दे के उस पार्सल का वेट वो वही मशीन वहाँ से ले लेगा और वहीं से आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से डिजिटल इंडिया को अपनाया जा रहा है।
1: सर, जब भी डिजिटल सर्विसेज की बात की जाती है तो ये डिजिटल सर्विसेज शहरों में काफ़ी प्रभावी दिखाई देती है। लोग पढ़े लिखे हैं, यूथ इन चीज़ों से काफ़ी कनेक्ट महसूस करता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत भी नहीं आती और इजी सर्विसेबल भी होती है। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो डिजिटल सेवाएँ हैं उसको अंतिम व्यक्ति या गाँव ढाणी तक पहुँचाने में डाक विभाग कितना सफल हो पाया है?
0: डाक विभाग की एक खास बात यह है कि गांव के लेवल पे एक ब्रांच ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस नाम की चीज़ है, जहां हमारे ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत होते हैं, जिनको ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। इनकी खास बात यह है कि वो अपना सारा काम एक मोबाइल फ़ोन से करते हैं। सारे एप्लीकेशन, सारी सेवाएं उस मोबाइल के माध्यम से वितरित की जाती है। लगभग एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस 4 गांवों को कवर करता है। तो यही वो ग्रामीण डाक सेवक एक तरीके से एक डिजिटल अवेयरनेस उससे अपेक्षित है कि वो गांव वालों को उसकी सूचना दे और वितरित सारी सेवाएं वितरित तो करे ही, लेकिन उनको एजुकेट भी करे कि डिजिटल माध्यम से कैसे सेवाओं का वो फायदा ले सके।
1: डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं और उन आधुनिकीकरण पर और भी बातें जारी रहेगी। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम है रूबरू और आज रूबरू में हमारे साथ हैं अक्षय भानुदास गाडेकर। आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस उदयपुर डिवीजन से हैं और ब्रेक में जाने से पहले डाक सेवाओं में हुए आधुनिकीकरण डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे थे। सर, अगर हम बात की जाए डिजिटलाइजेशन की, हमने बात की लेकिन शुरुआत में आपने बात की कि सिर्फ डाक सेवा तक ही पोस्ट ऑफिस निर्भर नहीं है। हाल ही कुछ वर्षों पूर्व हमने देखा था कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक बैंकिंग लाइसेंस भी पोस्ट ऑफिस को मिला है, तो इसमें क्या क्या सेवाएं हैं और किस तरह से इन्होंने जो पोस्ट ऑफिस का जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
1: जी, IPBP का अर्थ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये एक पेमेंट बैंक है, अर्थात कि पेमेंट से संबंधित जो लेन देन है वो यह बैंक फैसिलिटेट करता है। IPBP जब से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ जुड़ा है तो एक तरीके का तकनीकी आधुनिकरण हुआ है। जो हम IPBP के साथ काम करते हैं उसका एक मॉडल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि जो एक्चुअली फिजिकल प्रेजेंस जो रखते हैं, वास्तविक रूप में जो व्यक्ति गाँव में होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के व्यक्ति होते हैं, किंतु जो वो IPBP से संबंधित जो सेवाएँ लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं वो जो तकनीकी एप्लीकेशंस हो गए या टेक्नोलॉजी है वो वाला पार्ट IPBP के थ्रू होता है। इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और सबसे ज़्यादा फायदा मैं आपको कहूँगा AEPS जो है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका अर्थ ये होता है कि अगर लाभार्थी किसी भी क्षेत्र में हो और उनको अगर जमा या निकासी करना हो, कैश उनको अगर चाहिए हो, तो हमारे ग्रामीण डाक सेवक IPBP इनेबल्ड ऐप से डोर स्टेप मतलब उनके घर के द्वार पे जाके उनका आधार नंबर, जो भी उनका मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आए OTP के माध्यम से और उनके IPBP में अकाउंट या किसी और बैंक में अकाउंट के माध्यम से उनको जो भी कैश रिक्वायरमेंट है वो उनके बिल्कुल डोर स्टेप तक वितरित कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से IPBP का ये सबसे बड़ा योगदान रहा है और IPBP के अलग अलग खाते भी है, जैसे प्रीमियम नॉन प्रीमियम, उसका भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है उन आंकड़ों में भी।
0: अगर सर हम बात की जाए कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं हैं भी मौजूद हैं, IPBP जो बैंक है हमारा, पोस्टल बैंक है, इसके आने से जो चेंजेस हुए हैं और अगर उसके डिफरेंस को हम ट्रेडिशनल बैंकिंग से देखें तो इससे कितना लाभ

0: लोगों को हुआ है?
1: मैं ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात करूं तो जो इनका पेनेट्रेशन है, मतलब इनकी जो प्रेजेंस है, मौजूदगी है, वो गांव गांव तक नहीं है। वो आप देखिएगा कि कई इम्पोर्टेंट या तो तहसील के स्थान पे होंगे, कुछ कुछ बैंक्स है भी कई दूर दराज एरिया में, लेकिन उनकी पहुंच उतनी नहीं है जितनी डाक विभाग की है। डाक विभाग की पहुंच इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर चार गांवों में लगभग एक पोस्ट ऑफिस मौजूद है। तो सबसे पहले IPBP के आने के वजह से आधुनिकीकरण और तकनीक का जो एक मैसेज है वो गाँव गाँव तक गया है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल में संभव नहीं था। तो डाक विभाग का जो एक विश्वास है और जो एक ट्रस्ट है जो गांव वालों के बीच अभी भी मौजूद है, उसका उपयोग करते हुए तकनीक और आधुनिकीकरण आखिरी लाभार्थी तक पहुंचा है।
0: अक्षय सर, अगर हम डाक विभाग के जो ट्रेडिशनल काम है या जो पारंपरिक रूप से जो सेवाएं डाक विभाग दे रहा है उस पर आते हैं, तो एक जो ऑनलाइन ट्रैकिंग और जो हम बुकिंग की जो हम बात करते थे, जिसमें हम स्पीड पोस्ट कर दिया या रजिस्टर्ड पोस्ट, जो चीज़ें होती थी जिसमें हम पहले जाते थे, ठप्पा लगाते थे और उनके सेंडर और रिसीवर एंड की जो ट्रैकिंग हम होती थी, उनमें कितना बदला हुआ और कितना उसको ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें।
1: जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्ष के जुलाई महीने में इंटरनल पोस्टल सॉफ्टवेयर में आधुनिकीकरण हुआ है, जिसका IT 2.0 जिसको कहा है। ये एक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है जिसका दूसरा वर्जन लॉन्च हो चुका है। इसको 1 साल लगभग पूरा होने आ चुका है और इससे कई फायदे हुए। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आई है, जो हमारी डिलीवरी एप्स है उनके एप्लीकेशंस में भी चेंजेस आए हैं और ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाए गए हैं, ना सिर्फ ग्राहकों के लिए लेकिन जो डिपार्टमेंटल के लोग जो उसको चलाते हैं उनमें भी काफ़ी सुधार आया है। इससे सॉफ्टवेयर के लैग टाइम में काफ़ी कमी आई है, इसको यूज़ करने में काफ़ी फास्ट चीज़ें हुई है। तो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुई है। हर पड़ाव में अब आपका आर्टिकल कहाँ पहुँचा ये आप देख सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐप से कैसे आप लाइव ट्रैकिंग पोस्टमैन की कर सकते हैं, उसकी लाइव लोकेशन के साथ साथ किस जगह वो आर्टिकल वितरित हुआ है, उसके GPS कोऑर्डिनेट्स, और अगर आप अपने घर पे उपलब्ध नहीं हैं तो उस टाइप के रिमार्क्स भी आपके डिलीवरी स्लिप पे मौजूद रहेंगे, जैसे कि डोर क्लोज्ड या फिर कस्टमर नॉट अवेलेबल एट लोकेशन, इस प्रकार के रिमार्क्स भी अब उपलब्ध हैं।
0: आजकल स्पीड पोस्ट के साथ साथ एक मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज भी आने लगा है आपकी बुकिंग को लेकर, ये नवाचार क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
1: जब भी आप आर्टिकल बुक करते हैं संबंधित पोस्ट ऑफिस में जाके, तो एक मोबाइल नंबर आपको आपसे मांगा जाता है। वो मोबाइल नंबर हमारे सिस्टम पे एंटर करते ही उसमें सेंडर्स मोबाइल नंबर और रिसीविंग जो व्यक्ति है उनका भी मोबाइल नंबर की सुविधा उपलब्ध है। जैसे ही आपने ये डिटेल्स बता दिए तो जो भी कंसर्न पार्टीज़ है उनको समय समय पे बताया जाता है कि आपका आर्टिकल कहाँ पहुँचा है। उदाहरण के तौर पे आपका आर्टिकल बुक हो चुका है, आपका आर्टिकल इस स्थान से निकल चुका है, और आखिर में एक आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज आता है जिससे जो रिसीवर है वो एक तरीके से तैयार हो जाता है कि आज उनको अपना आर्टिकल मिल जाएगा।
0: सर, इस पूरे प्रोसेस में जो मोबाइल नंबर वाला जो आप बता रहे हो, रिसीवर और सेंडर का हमको नंबर डालना होता है, क्या ये कंपलसरी है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी एक प्राइवेसी वाला मुद्दा भी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सूचना के अधिकार के तहत भी कई सूचनाएं मांगी जाती हैं, और अगर पोस्ट ऑफिस में इस तरह के नंबर दिए जाते हैं तो क्या ये पूर्ण रूप से गोपनीय रखे जाते हैं, क्या इस ये सुविधा उपलब्ध होती है, या फिर ये पब्लिकली आपके पोर्टल पर ओपन होता है ये?
1: ये पब्लिकली हमारे पोर्टल पे ओपन नहीं होता, ये सारे जो डेटा है वो गोपनीय रखे जाते हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं। और ये मोबाइल नंबर देना एक तरीके से कंपलसरी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कई जगह कई व्यक्तियों के पास मोबाइल आज भी नहीं है, लेकिन यह एक तरीके से एक सिक्योरिटी लेयर है। क्योंकि मैं ऐसे कई उदाहरण मैं देख चुका हूँ जिसमें अज्ञात व्यक्ति लोगों को डाक बुक करके अलग अलग किस्म के चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो एक तरीके से एक सिक्योरिटी रहती है कि जो रिसीवर होता है उनको पहले से ही पता होता है कि मेरा आर्टिकल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा फ्रॉडुलेंट चीज़ें कम हो जाती है। तो यह एक तरीके का इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है।
0: डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं और उनसे संबंधित जानकारी हम और भी लेंगे। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम है रूबरू और आज है कार्यक्रम में रूबरू हमारे साथ अक्षय भानुदास गाडेकर, आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। और सबसे पहले हमने डाक विभाग के आधुनिकरण की बात की, उसके बाद हमने उनके सेवाओं के विस्तार के बारे में बात की। इसी क्रम में सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न सर्विसेज डाक सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण सर्विस जो ई कॉमर्स के साथ साथ कोरियर सर्विसेज और आज के समय में एक एक्सपोर्ट सेंटर के बारे में काफ़ी सुना जा रहा है, तो ये तीनों सर्विसेज क्या है और किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
1: ई कॉमर्स सर्विस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई कॉमर्स इज मेनली डिलीवरी ऑफ पार्सल्स, जो आप अपने पसंद की वेबसाइट से जो आप ऑर्डर करते हैं, डाक विभाग भी उस ऑर्डर को आप तक पहुंचाने में शामिल है। डाक विभाग उन दूरदराज एरियाज में डिलीवरी करता है जहां पे अक्सर ये वेबसाइट्स का खुद की डिलीवरी सर्विसेज नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे अंडमान निकोबार आइलैंड या हिमाचल में विभिन्न दुर्गम जो क्षेत्र है, तो भारत सरकार ये चाहती है कि हर व्यक्ति को ई कॉमर्स का एक मौका मिले, ना सिर्फ शहर के लेकिन जो गाँव में और दो दुर्गम क्षेत्रों के, उनको भी उसका लाभ मिले। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा डाक निर्यात केंद्र की। डाक निर्यात केंद्र का अर्थ होता है एक तरीके का एक्सपोर्ट हब, जिसकी आप बात कर रहे थे। एक्सपोर्ट का अर्थ होता है निर्यात, जिसका अर्थ होता है कि आप जो भी सामान, हैंडीक्राफ्ट या जो भी प्रोडक्ट है, वो आप बाहर के देशों में बेचना चाहते हैं, बाहर के देशों में आपका मार्केट है, तो इसमें डाक विभाग आपकी सहायता करेगा। सहायता कैसे करेगा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक MOU हुआ है डाक विभाग का कस्टम्स विभाग के साथ, जिससे डाक निर्यात केंद्र की स्थापना हुई।

0: है। तो ये हर जिला में एक डाक निर्यात केंद्र होगा, जैसे उदयपुर में भी चेतक सर्कल पे ये मौजूद है। इसमें जो भी छोटे उत्पादक हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि पहले जैसे फिजिकली आपको कस्टम्स विभाग में जाना पड़ता था, अपने सारे दस्तावेज महत्वपूर्ण देने पड़ते थे, कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको चक्कर काटने पड़ते थे, तो अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें इस DNK के माध्यम से ऑनलाइन की जा चुकी है। तो भी इस सेटअप में आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन dnk.cpt.gov.in पे मौजूद है, ग्राहक खुद से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसमें संबंधित दस्तावेज जैसे कि एक्सपोर्टर लाइसेंस, PBE हो गया और KYC हो गया, ये सारा ऑनलाइन होगा। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करने के बाद आपको फ्री पिकअप फैसिलिटी भी देंगे, इसका मतलब डाक विभाग आपके पास आएगा आपका प्रोडक्ट शिप करने के लिए। फिर डाक विभाग की ये जिम्मेदारी होगी कि आपका प्रोडक्ट फॉरेन पोस्ट ऑफिस तक वो डायरेक्टली पहुंचवा दे। फॉरेन पोस्ट ऑफिस पे कस्टम क्लियरेंस की प्रोसेस की जाएगी। मान लेते हैं कि कस्टम क्लियरेंस में कुछ इश्यूज आ गए, वो इश्यूज क्या है वो भी इस ऑनलाइन पोर्टल पे जो एक्सपोर्टर है उनको सीधे दिख जाएगा। उसको वो ऑनलाइन माध्यम से ही क्लियर भी करवा सकते हैं, या कोई दस्तावेज रह गया हो तो उसको अपलोड भी कर सकते हैं। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सीधा आपका जो माल है वो बाहर के देशों में शिप हो जाएगा और निर्यात की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि भारत का और इस जिले का भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा और हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी।
1: सर, अगर बात की जाए जो डाक विभाग के निर्यात केंद्र की आप बात करो, अगर इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में अगर हम हमारे श्रोताओं को समझाना चाहें कि कोई व्यक्ति कोई अपना होममेड प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर उदयपुर जिला जो है हमारा आदिवासी संभाग के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और कोई अगर हथकरघा उद्योग या फिर लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है या ऐसा उत्पाद बना रहा है, अगर कोई वो व्यक्ति इसे, हालांकि एग्जीबिशन तक तो पहुंचा जा सकता है क्योंकि वो फिजिकल आपका उसमें मूवमेंट होता है, लेकिन वो यूरोप, US, ऑस्ट्रेलिया या विदेश किसी भी विदेशी सरजमी पे अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता है, तो क्या उन्हें कुछ एसेंशियल लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और अगर वो होगी तो क्या उसमें डाक विभाग किस तरह से उनका सहायता करेगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा समझाएं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो छोटे उत्पादक हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनको जानकारी नहीं होती कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो मैं इस आपके माध्यम से इन सबको ये बताना चाहूँगा कि डाक विभाग से अगर आप संपर्क करते हैं और आपका मकसद है एक्सपोर्ट करना, दूसरे देशों में अपना प्रोडक्ट भेजना, तो आपके एंड पे सिर्फ आपको यह देखना है कि आपका वहाँ पे मार्केट हो, मतलब खरीदने के लिए कोई एक मार्केट पहले से ही मौजूद हो। उसके बाद से जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी दस्तावेज़ है, उसके कई चरण होते हैं, डिपेंड करता है आप किस श्रेणी के एक्सपोर्टर हैं, लेकिन ये सारी गाइडेंस और एक तरीके से हैंड होल्डिंग, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक जो भी एक काउंसिलिंग प्रोसेस होती है वो डाक विभाग प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप नियरेस्ट डाक घर को आप संपर्क कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को शिप कैसे करना है, किस प्रकार के आपको दस्तावेज़ों की ज़रूरत है, प्रोडक्ट कैसे भेजा जाएगा, कितने दिनों में भेजा जाएगा, उसकी पैकिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, ये सारे संबंधित जो कार्य है उसमें डाक विभाग आपकी सहायता करेगा।
1: सर, आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे जो बड़ी क्रांति आज के समय में है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की है, क्या डाक विभाग इस पर भी कोई कार्य कर रहा है, उसके बारे में आप बताएं।
0: जी बिल्कुल, डाक विभाग इस संबंध में भी आगे बढ़ रहा है। हमारे जो इंटरनल जो सॉफ्टवेयर्स है, हमारे इंटरनल जो पोर्टल्स है, उसमें ऑलरेडी AI संबंधित कार्य होना शुरू हो चुके हैं। इसको अभी पूर्ण रूप से कस्टमर्स के लिए अभी नहीं किया, खोला नहीं गया है, लेकिन बहुत ही जल्द कस्टमर्स इसका लाभ उठा पाएंगे। चाहे वो ग्रीवेंस रिड्रेसल हो कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो उसके लिए आपकी सहायता हो, या फिर आपकी जो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में मिलने वाले जो सूचना है उससे संबंधित हो, तो ये बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डाक विभाग एक बहुत ही टेक्नोलॉजी हैवी विभाग है, जिसमें हर रोज़ ही एक नए तकनीक संबंधित एडिशन किए जा रहे हैं। हमारा विभाग बहुत ही डेटा ओरिएंटेड विभाग है, हर चीज़ को डेटा उसको एनालाइज करके ही

0: डिसीजन मेकिंग की जाती है और नए प्रोडक्ट्स भी उसी हिसाब से रोल आउट किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी जो नागरिक है वो इसका भी लाभ उठा पाएंगे।
1: टेक्निकल एडवांसमेंट में हमें मशीनरी और टेक्निकल इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि आपने जिक्र किया, जो डाक सेवक हैं और ख़ासतौर से ग्रामीण डाक सेवक हैं, इन्हें तकनीकी रूप से किस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि इन सारी सर्विसेज, सेवाओं और जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें उनको वो आसानी से अडॉप्ट कर सकें।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक है वो एक यंग वर्कफोर्स है। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 10वीं कक्षा के मार्क्स। तो ये बड़ी ही टेक सेवी जनरेशन से पहले से ही है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये मोबाइल से और एप्लीकेशन से अपनी सेवाएं वितरित करते हैं तो इनकी ट्रेनिंग को डाक विभाग बड़ा सीरियसली लेता है। जैसे ही उनको इंडक्शन किया जाता है तो उनको एक 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको समझाया जाता है कि किस तरीके से विभागीय सॉफ्टवेयर और ऐप का इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आईगॉट कर्मयोगी जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद डाक कर्मयोगी प्लेटफॉर्म करके हमारा विभाग का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंडेटरी कोर्सेस जो वीडियोस के माध्यम से और जो वीडियोस देखने के पश्चात टेस्ट और एग्ज़ाम्स के बाद जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है उसके माध्यम से इन पे निगरानी रखी रहती है। और ऐसे मैंडेटरी कोर्सेस का एक टारगेट होता है और हर ग्रामीण डाक सेवक हो या कोई पोस्टल असिस्टेंट हो या कोई पोस्टमैन भी हो, हर एक को यह मैंडेटरी तौर से इन कोर्सेस को कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आपके फाइनेंशियल ईयर में आपका असेसमेंट आगे बढ़ पाता है।
1: डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर और भी बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में रूबरू और कार्यक्रम में हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं अक्षय भानुदास गाडेकर, आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस उदयपुर डिवीजन से हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और इसी क्रम में और बात करते हैं कि सर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एक पहचान जो है वो है सेविंग्स के साथ है या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ है, साथ साथ पोस्ट ऑफिस में एक इंश्योरेंस स्कीम्स भी चलती है जिनका शायद कई लोगों को नहीं पता, तो इस बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दें कि किस किस तरह के इंश्योरेंस और डिपॉजिट की स्कीम्स अवेलेबल है जो वरिष्ठ जनों के लिए या किसी भी आम नागरिक के लिए आकर्षक हैं।
1: फाइनेंशियल सर्विस या वित्तीय सेवाएं डाक विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हम स्मॉल सेविंग्स को बढ़ावा देते हैं। स्मॉल सेविंग्स का मतलब है छोटी बचत योजनाएं हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि नागरिकों को बचत की एक आदत हम उसको बढ़ावा दे सके। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर प्रकार की छोटी बचत योजना डाक विभाग में उपलब्ध है। सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये भी डाक विभाग में उपलब्ध है। इसके अलावा जो एक पोस्टल सेविंग बैंक का जो एक खाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी एक अच्छे सेविंग्स रेट पे आप खाता खोल सकते हैं जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और अधिक से अधिक बैंक से ये अच्छी सेविंग्स दर आपको उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितना भी पैसा आपका डाक विभाग के पास है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है क्योंकि इसके पीछे 100% सोवरेन गारंटी है जो बाकी कमर्शियल बैंक्स में उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ एक रिकरिंग डिपॉजिट खाता भी आप खोल सकते हैं जिसका मतलब है आप हर महीने में छोटी छोटी सेविंग्स उस खाते में जमा कर सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम भी उपलब्ध है जिसका अर्थ है कि अगर आपके पास बड़ी पूंजी एकदम से आ जाती है जैसे कि रिटायरमेंट या अन्य कोई इवेंट के बाद तो वह आप MIS खाता में खोल के उसको जमा कर सकते हैं जिससे आपको हर मंथ कुछ ना कुछ एक राशि आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए आपको मिलती रहेगी। तो ये रही हमारी कुछ खाते सेविंग्स स्मॉल सेविंग्स से रिलेटेड। इसके साथ साथ एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करके जो आप इंश्योरेंस की बात कर रहे थे तो इसके दो भाग है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो PLI इस देश की सबसे पुराने इंश्योरेंस योजनाओं में से एक है लेकिन ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी, अभी भी कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है लेकिन भारत सरकार इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में इंश्योरेंस के प्रति थोड़ी अवेयरनेस बढ़े इसलिए RPLI जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या ग्रामीण डाक बीमा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें हर वो व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से है वो इसका लाभ उठा सकता है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छे बोनस और सबसे अच्छी स्कीम उपलब्ध है जिसको एक बचत का जरिया भी आप बना सकते हैं और उसके साथ साथ आपके लाइफ को भी आप इंश्योर करा सकते हैं, मतलब कल कोई हादसा हो जाए कोई हानि हो जाए तो इसमें भी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा।
0: अक्षय सर, अगर बात की जाए क्योंकि जितनी भी सुविधाएं हैं डाक विभाग की या किसी भी विभाग की कोई सुविधाएं अगर दी जा रही तो उनके साथ साथ आजकल क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है आधुनिकीकरण में और एक सबसे बड़ी जो समस्या या यूँ कहें विकट रूप हमारे सामने है वो साइबर सुरक्षा को लेकर, और कई बार हमने जो ग्राहकों का डेटा है वो उसका अगर हमको ध्यान रखने की बात करें क्योंकि हमने कई बार देखा है जैसे हम रोड साइड किनारे फूड स्टॉल्स पर कचौरी समोसा या पोहा खाते हुए लोगों को देखा है उनके हाथों में किसी के बैंक के अकाउंट्स होते हैं और उस पर वो रहकर कचौरी समोसा खा रहे हैं, तो प्राइवेसी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रहे इस पर विभाग किस तरह से

0: कार्य कर रहा है।
1: जो हमारे, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो आधुनिकीकरण के जो मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स जो विभाग ले रहा है, इंटरनली अगर मैं बात करूँ तो हर विभागीय सॉफ्टवेयर और हर विभागीय प्लेटफॉर्म के लिए एक स्पेशल यूनिट हमारी मैसूर में है, CEPT मैसूर, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर। ये डेली बेसिस पे आपके डेटा की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी पैचेस रिलीज करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो सिस्टम्स है वो वन ऑफ द बेस्ट इन दी मार्केट जो हम कहेंगे वो है, और आपका डेटा हमारे साथ सुरक्षित है। लेकिन साथ साथ ग्राहकों को थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। जैसे कई लोग डाक विभाग के नाम पे स्कैम्स भी चलाते हैं, आपका पार्सल आ चुका है, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो इस चीज़ से आपको बचना है। मेरे ख्याल से उन जरियों से आपके डेटा लिंक होने की ज़्यादा चांसेस है गवर्नमेंट चैनल से ज़्यादा।
0: जाते जाते कार्यक्रम में जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको आप अब खास तौर से भविष्य में जो डाक विभाग की जो सेवाएं हैं और जो डाक विभाग के विस्तार हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आप एक आम लोगों के बीच में जागरूकता संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं आपके माध्यम से नागरिकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि डाक विभाग काफ़ी रेलेवेंट विभाग है आज के ज़माने में। भले ही हमारी हमारे मन में एक छवि हो कि डाक, क्योंकि नाम डाक है तो, क्योंकि चिट्ठियाँ हम एक दूसरे को अब लिखते नहीं है, पर्सनल मेल अभी जा चुका है, तो डाक विभाग का रेलेवेंस पे कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये वाकई में ऐसा कुछ इस विभाग में हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक विभाग है जिसने अभी भी अपनी मौजूदगी लोगों के बीच वैसी की वैसी रखी है, वित्तीय सेवाओं से ले कर आधार तक, पासपोर्ट से ले कर जेनजी पोस्ट ऑफिसेस तक। अभी आपने देखा होगा कि कई इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो कॉलेजेस में है, वहाँ पे जेनजी पोस्ट ऑफिसेस करके कैफ़े के तौर पे एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है। तो यह नहीं है कि डाक विभाग पुराना हो गया, पुराना विभाग ज़रूर है, लेकिन वो नई पीढ़ी के साथ साथ अपने आप को भी चेंज कर रहा है। तो मैं नागरिकों से अपील करूँगा कि डाक विभाग के बारे में जाने, उसको समझे, और आप बड़े सरप्राइज होंगे कि कई लाभधारी स्कीम्स आपको डाक विभाग में मिलेंगी। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाक विभाग के साथ जुड़े और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लें।
0: आज कार्यक्रम रूबरू में आप थे अक्षय भानुदास गाडेकर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस उदयपुर डिवीज़न, और आज आपने कार्यक्रम में डाक सेवाओं की विभिन्न सुविधाएँ और उसके विस्तारीकरण पर बात की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम में अभी बातचीत का जो विषय था डाक विभाग के आधुनिकीकरण और नवाचार पर, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस अक्षय भानुदास गाडेकर से बातचीत कर रहे थे श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। चलिए आगे चलते हैं और प्रोग्राम में फिल्म संगीत के नगमों को आप तक पहुँचाते हैं। सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सा पहला नगमा।

इस अंतिम गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं तक। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट डॉक्टर आरती को। नमस्कार। FM 101.9 MHz पर आप विविध भारती के उदयपुर केंद्र के साथ हैं। अब हमारे आगे के सभी कार्यक्रम रिले होंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण के साथ। देर में

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। सभी सुनने वालों को प्रीति शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति से भरे इस गाने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म योद्धा से। इसे गाया है बी प्राग ने, गीतकार मनोज मुंतशिर है, संगीत तनिष्क बागची का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत. गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर. कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में जिंदगी और मौत फिल्म का गाना. गीत शकील बदायूनी ने लिखा है, संगीत सी रामचंद्र का है.

0: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में खामोशी फिल्म का गाना, गीत लिखा गुलजार ने, संगीत से सवारा हेमंत कुमार ने।
1: वो शाम कुछ

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कुछ
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष

0: सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: आइए अब सुनते हैं छैला बाबू फिल्म का गाना, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने रॉकी फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का। कार्यक्रम जयमाला का शेष भाग अंतराल के उस पार।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में खुशबू फिल्म का गाना, गीत गुलजार का है संगीत, आदि बर्मन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत राजेंद्र मेहता की गाई इस गजल के साथ कर रहे हैं। कलाम बशीर भट्ट का है, संगीत जाहिद हुसैन भूरे का।

0: अभी आपने रीता गंगोली की आवाज़ में ये गज़ल सुनी। कलाम मुमताज़ मिर्ज़ा का था, संगीत जयदेव का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: आइए अब सुनते हैं प्रद्युमन शर्मा की आवाज में ये गजल। कलाम राजेश जौहरी का है, संगीत प्रद्युमन शर्मा का।

0: लीजिए, सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, अब तो ये बोतल ही है।
1: हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई?
0: अरे कौन सी मुसीबत?
1: हाय, अब मैं तुम्हें स्टैंप पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत? अजी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर टोली में डालकर इस घर में लाए थे।
0: क्यों, अब क्या हुआ?
1: अजी वही जो रोज होता है, मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही है, मैंने क्या किया है?
0: अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या अर्ज है?
1: अजी तुमने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। अजी हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोचकर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने, याद है ना तुम्हें?
0: हाँ याद है, अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था। और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं, मेरी माता जी के थे।
1: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में, पहचानना मुश्किल हो जाता था।
0: यानी कि तू ना रहे, मैं ना रहा। अरे मां कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो, तो तुमने क्या जवाब दिया?
1: जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? है हाय हाय, 6 महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए, इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
0: अरे इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
1: कि क्या, यानी कि मैं बहू को जला दूं?
0: अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही है और बहू से छुटकारा पा रही है।
1: हाय हरीश के डैडी, मैं सदके जाऊं तुम पर, तुम्हारे मुंह में घी चक्कर, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी।
0: अरे तो फिर सोच क्या रही है, नेक काम में देर किस बात की? अरे उठ, मट्टी के तेल की बोतल यानी कि सास का आजमाया हुआ हथियार उठाओ और बहू पर हल्ला बोल दो, पका।
1: नहीं नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, पुलिस केस बन जाएगा जी, पकड़ी जाऊंगी, फांसी हो जाएगी।
0: अरे इसका मतलब है हरीश की मम्मी तुम्हें उस नए केरोसिन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता जो मार्केट में आया है। ये देखो
1: क्या है, बहुओं को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल। क्या मतलब?
0: अरे यही वो केरोसिन है जो सास छुपकर पीछे से बहू पर उस वक्त छिड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। अच्छा। उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा। तो फिर ये बताओ माचिस कब जलानी पड़ेगी?
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन।

0: अच्छा। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक।
1: हाँ,
0: केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप जल जाएगी।
1: अपने आप जल जाएगी? अरे हरीश के डैडी, फिर तो मैं एक दो घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी। मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी।
0: अरे ठहरो तो सही, हरीश की मम्मी।
1: हाँ बोलो,
0: बात तो सुनती जाओ। हाँ, हर एक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो।
1: हाँ ये तो सभी को पता है।
0: जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा।
1: हाँ, तो फिर?
0: अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो। अच्छा? दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार। हाँ, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं, उससे प्यार करती हो। जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं जाएगा।
1: क्या तरकीब है। आए हाय पिताजी, पिताजी।
0: अरे लो, अब बहू जी आ रही है।
1: हाय पिताजी।
0: क्यों बहू, अब क्या हुआ?
1: क्या नहीं हुआ, जो इस घर में हर रोज होता है आपको नहीं मालूम?
0: अरे बेटी, रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी?
1: आज फिर माताजी ने मुझे बिना बात के डांटना फटकारना शुरू कर दिया। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है माताजी, क्यों नाराज हो रही हो, तो कहने लगी सत्यानाश हो तेरा, बहू होकर तुम्हारी ये मत, ये मजाल, मुझसे पूछती है क्या बात है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप ही तो कुछ नहीं करते।
0: अरे हाँ। मैं क्या करूं बेटा, तुम तो उससे 6 महीने में ही परेशान हो गई हो। मेरी हालत देख, 25 साल से उसे झेल रहा हूं, ये ढोल ऐसा गले में पड़ा है कि उतरता ही नहीं, और मैं तो ठहरा एक बेबस और बदकिस्मत पति। लेकिन तुम एक बहू होकर सास को ठिकाने नहीं लगा सकती।
1: लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं?
0: अरे बेटी, तुम ही तो हो जो इस घर में कुछ कर सकती हो।
1: आपका मतलब?
0: अरे ठीक समझ रही हो, बिल्कुल ठीक समझ रही हो।
1: अब नहीं, ये कैसे हो सकता है पिताजी? एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को कैसे जला सकती है?
0: क्यों नहीं जला सकती, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है।
1: पिताजी, जैसे घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आता है, दुल्हन नहीं आती, जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है, दूल्हा नहीं, उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को नहीं जला सकती।
0: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा।
1: नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है, मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे फांसी हो जाएगी।
0: अरे इसका मतलब है बहू, तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया। ये देखो,
1: सास को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल, क्या मतलब?
0: ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है।
1: अच्छा?
0: उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा।
0: हाँ?
1: तो फिर माचिस कब जलानी पड़ेगी?
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक। पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने लगेंगे। हाँ, उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सास अपने आप जल जाएगी।
1: अच्छा, ओह माय गॉड, फिर तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर किटी पार्टी रखा देती हूँ। मैं एक घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी और जिस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी अटेंड कर रही होंगी, उस वक्त पूजनीय सासू जी घर में जल रही होंगी।
0: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: क्या हुआ पिताजी?
0: हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
1: हाँ, ये तो सभी को पता है।
0: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी, पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
1: हाँ पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती, उससे प्यार करना शुरू कर दो।
1: प्यार?
0: हाँ, सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार।
1: प्यार और सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
0: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
1: अच्छा ठीक है पिताजी।
2: राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम।
1: तो यहाँ बैठी है सासू जी, जी चाहता है इसे मलाई में संख्या मिलाकर खिला दूँ।
2: राधे श्याम। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू रानी,
3: आई माता जी।
1: जी माता जी।
2: बहू कहाँ थी तू?
1: मैं यही तो थी माता जी।
2: बेटी, तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है।
1: अब यही हाल मेरा भी है माता जी, जी चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने ही खड़ी रहे और मैं आपको निहारती रहूं।
2: बहू, तू ठीक तो है ना?
1: जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
4: वो अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या? इसे अभी चक्कर नहीं आया क्या?
1: क्या कहा माता जी?

0: कुछ नहीं बेटी कुछ नहीं, बैठ जा बैठ जा।
1: चक्कर तो नहीं आ रहे ना?
2: चक्कर मुझे चक्कर क्यों आएंगे?
1: आएंगे बेटी आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे, मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे? 6 महीने हो गए शादी को।
2: 6 महीने शादी को हो गए तो क्या हुआ माता जी? वो अच्छा चलिए छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना?
1: मैं मुझे क्या हुआ है?
2: आपके घुटने तो नहीं कांप रहे?
1: मेरे घुटने? घुटने क्यों कांपेंगे?
2: कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है ना? लाइए माता जी मैं आपके घुटने दबा।
1: नहीं नहीं बहू रहने दो रहने दो।
2: लाइए ना माता जी लाइए।
3: अच्छा बहू रानी, तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू।
2: मेरा बस चले तो घुटनों की बजाय इसकी गर्दन दबा दो।
3: क्या कहा बेटी?
2: कुछ नहीं माता जी, मैं टांगे दबा रही हूँ।
3: भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, मैं इसे जीने दूंगी तब ना।
2: माता जी आपने कुछ कहा?
3: नहीं नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहू आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ।
2: कथा?
3: जब कोई प्राणी संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
2: ये आप क्या कह रही हैं माता जी? अरे इस बुढ़िया को कहीं पता तो नहीं चल गया किसकी घंटी बजने वाली है?
3: क्या कहा बहू तुमने? कुछ क्यों?
2: मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई हैं फिर भी आप अच्छी बनी हैं, हट्टी कट्टी। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मनों का।
3: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का।
1: बहू जी एक बात बताओ
2: जी,
1: तुम तो फिल्में देखती हो ना?
2: जी हाँ।
1: अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है?
2: जब उनका दिल धक धक करने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है।
1: अच्छा?
2: वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती
1: है। हाथ पकड़ लेती है? हाय मेरा दिल भी तो धक धक कर रहा है।
2: माता जी मेरा भी।
1: बहू मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है?
2: चल
1: ठहरो जरा बहू, न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है।
2: माता जी
1: ये लो बहू, पहन लो इसे। हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू।
2: ये क्या किया आपने माता जी?
1: क्यों?
2: ये हार आपने मुझे दे दिया? इतना कीमती हार बहू को दे दिया?
1: मुझे खुद पता नहीं बेटी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है, लगता है शायद
2: शायद क्या माता जी,
1: शायद शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बहू।
2: ये क्या हो गया है आपको, एक सांस होकर बहू से प्यार करने लगी है?
1: हाँ बहू, ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे।
2: माता जी मुझे भी होता जा रहा है।
1: क्या हो रहा है बेटी?
2: लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी।
1: अच्छा आओ बेटी मेरे गले लग जाओ बेटी।
2: माता जी
1: मुझे माफ कर दो बेटी,
2: माता जी
1: मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें जलाने के लिए तुम पर केरोसिन छिड़क दिया है बहू।
2: आए आए माता जी मुझे भी माफ कर दीजिए माता जी, मैंने भी आपको धोखा दिया है, मैंने भी आपको जलाने के लिए आप पर केरोसिन छिड़क दिया है।
1: यानी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें भी केरोसिन दिया है?
2: माता जी वो हम दोनों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
1: नहीं नहीं बहू मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगी।
2: माता जी मैं भी आपको नहीं जलने दूंगी।
1: मैंने फोन कर दिया है उन लोगों को बेटी, अब हमें इस दुनिया में कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम जिएंगे तो एक साथ, हम मरेंगे तो एक साथ। दुनिया की सासों एक हो जाओ, अपनी बहुओं को गले से लगाओ।
2: दुनिया की बहुओं एक हो जाओ, अपनी सासू जी से प्यार बढ़ाओ और अपने ससुर जी से खबरदार हो जाओ।
4: बताइए बताइए एक बार क्या बात हुई, कौन बीमार है?
1: मेरे घुटने कांप रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है बेटी?
2: आपके घुटने कांप रहे हैं, यानी आपको केरोसिन का असर हो रहा है।
1: मैं जा रही हूँ बहू, मैं जा रही हूँ, मैं बने नहीं सकती।
2: आपको कुछ नहीं होगा माता जी। माता जी मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ।
1: नहीं बहू नहीं, डॉक्टर साहब मेरी बहू को बचाइए।
4: बचाता हूँ,
2: मेरी सासू जी को बचाइए।
4: सासू जी को? बताइए आपको क्या तकलीफ है?
1: मेरी बहू को बचाइए,
4: बहू को,
2: मेरी सासू जी को बचाइए।
4: ये क्या हो रहा है, कितने किसको जलाया ये बताइए।
1: इंस्पेक्टर साहब मेरा बयान लीजिए।
2: नहीं नहीं
1: मैं जून का एक बात करना चाहती
2: हूं। इंस्पेक्टर साहब माता जी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैंने इन्हें जलाने की कोशिश की है,
1: धोखा दिया, इसे जलाने की कोशिश की है।
5: इंस्पेक्टर साहब किसी ने किसी को नहीं जलाया। हाँ इन बोतलों में केरोसिन नहीं, गुलाब जल है, गुलाब जल।
1: क्या?
5: सारे घर में

तो ये थी झलकी एक दिन का प्यार। इसके लेखक V.M. आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।

चित्रलोक कार्यक्रम में मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म राज 2 से। गीत संजय मासूम का है, संगीत जीत गांगुली का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप। बधाई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: दीदी नौकरी लग गई।
8: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
7: हाँ दी, नया मोबाइल।
8: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
7: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
8: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
7: पर दीप,
8: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
7: हाँ दी, पार्टी मेरी,

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म ब्रेक के बाद का ये गाना, मोनिका डोगरा विशाल दादलानी की आवाज में, गीत प्रसून जोशी ने लिखा है, संगीत विशाल शेखर का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के

व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की

बात नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे

0: हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए हमजोली फिल्म का ये गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर हैं आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए, मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ, उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था, लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे के बाद। और शौक़ लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफ़र थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए।

एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज़्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज़ के ज़रिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम ज़रूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगेई राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़े मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में। ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है आहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तरनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय

0: अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे दो फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें 6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहाँ हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे, और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। और जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहाँ लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है जो जिंदगी भर याद रहे।
1: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को, याद होगा। इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की तीन फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म मौसम।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

बिना गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

तुम्हारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबा रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का,

हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का। हमेशा आंख में

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काली घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी कलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी क्षमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

ये अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

ये दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने

के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: डर मरे नहीं कॉस्मेटिक।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: इश्क सखी 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष

0: श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से पहले सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। थोड़ी सी प्रतीक्षा
1: कर जाना, चले जाना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान

0: एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari Srivastav. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
0: Hey. BSF ki sima suraksha.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
0: Hazaron crore rupiya ka investment.